0: ये छोटे मतदाता भी शामिल होंगे। राज्यों में विशेष अभियान चलेगा, बीएलओ घर घर जाकर करेंगे सत्यापन। हिंदुस्तान का शीर्षक, यूक्रेन युद्ध खत्म करने को भारत के पास सही समझ। व्लादिमीर पुतिन बोले, हर बार युद्ध खत्म करने का मुद्दा उठाते हैं मोदी। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ट्रेड डील पर मोदी ट्रंप फिर करेंगे बात। अमरीकी प्रतिनिधि जेमिसन ग्रेयर बोले, डील के मुद्दे पहचाने, समाधान पर काम जारी। जनसत्ता के अनुसार यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रे सिबिहा ने कहा कि युद्ध खत्म करने को भारत का प्रस्ताव सबसे बढ़िया। दैनिक भास्कर ने एक्सक्लूसिव खबर में दिया है, अफगान बॉर्डर पर 30 पोस्ट से भागी पाकिस्तान की सेना, अब वहां तालिबानी राज। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में अफगान में हमले में और तेज। पत्र के अनुसार पाकिस्तान सैनिक खौफ के कारण अफगान बॉर्डर पोस्टिंग से बच रहे हैं। राजस्थान पत्रिका के अनुसार एनसीईआरटी पढ़ेगी सत्यमेव जयते और सेंगोल का इतिहास। सामाजिक विज्ञान पुस्तक का दूसरा भाग जारी, महात्मा गांधी के रामराज का जिक्र। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, एशियाई खेलों में गोल्डन सिक्स के साथ पदक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंचा भारत। स्वर्णिम शुक्रवार, हरियाणवी खिलाड़ी फिर दमदार।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की। अमेरिका ने तेल की कीमत में रिकॉर्ड बढ़त के बाद G7 देशों का 10 करोड़ बैरल डीजल और कच्चा तेल जारी करने का फैसला। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण का स्वागत किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। और जापानी एशियाई खेलों में भारत की कुमकुम मोहत ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. India calls for WTO-compliant measures to address trade distortions, dumping and predatory pricing. G7 countries agreed to release 100 million barrels of diesel and crude oil as prices climbed record high in the United States. United Nations welcomes India's Green Energy Corridor Phase 3, says it will strengthen India's position as global leader in solar energy. Union Cooperation Minister Amit Shah to lay foundation stone for 255 crore rupees dairy plant in Ujjain today with processing capacity of 3 lakh litres of milk per day. And in Asian Games, Indian archer Kumkum Mohor clinches gold in recurve event. Indian men's hockey team to clash for gold against Malaysia. And now the news in detail. India has called for WTO-compliant approach to correcting global trade distortions at the concluding day of G20 trade ministers' meeting in Milwaukee, U.S. Speaking on structural excess capacity and production, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said India shares the concerns of many members that trade-distorting support in some economies can lead to dumping and predatory pricing. He said such concerns are addressed through WTO-consistent measures, including anti-dumping and countervailing duties based on evidence and subject to judicial review. He emphasized that industrial capacity in itself is not the issue, while distortions can arise where geographical concentration of production is driven by hidden subsidies and support. We have a report.
3: Commerce Minister Piyush Goyal highlighted that India's trade with G20 members depends on a transparent, non-discriminatory and rules-based trading system. He said most favored nation treatment is a key guarantee of this system, ensuring that the same terms apply to the smallest trader and the largest trader. Speaking on ending forced labor in global supply chains, Mr. Goyal said India's commitment to the elimination of forced labor is absolute and unconditional. The minister reaffirmed India's commitment to a rules-based, equitable, non-discriminatory, transparent, open, inclusive and multilateral trading system with the WTO at its core. Suparna Sethia, Akashvani News, Delhi.
2: The group of seven G7 nations have agreed to release 100 million barrels of diesel and crude oil over 4 months in an effort to ease soaring fuel prices with a substantial

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो सकता है। इससे दूसरे देशों के बाजारों में सामान बहुत कम कीमत पर बेचने के कारण डंपिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए WTO के नियमों के तहत एंटी डंपिंग शुल्क और अन्य जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस डेयरी संयंत्र की प्रसंस्करण की क्षमता प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध है। हमारे संवाददाता ने बताया कि दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गौपालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।
1: सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पशुपालन के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली गोपालक दीदियों को सम्मानित करेंगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे। सम्मेलन में 35,000 से ज्यादा गोपालक और दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े सदस्य शामिल होंगे। भोपाल के अलावा सीहोर, बैतूल, राजगढ़, हरदा, गुना, अशोकनगर, शाजापुर, विदिशा समेत कई जिलों से गोपालक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में भोपाल और इंदौर दुग्ध संघ से जुड़े दूध उत्पादकों को बोनस राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट और भोपाल में मिल्क प्रोडक्ट से जुड़ी सुविधा समेत कई परियोजनाओं की शुरुआत भी होगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 साल पूरे कर लिए हैं। मन की बात का पहला कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को विजयदशमी के दिन प्रसारित हुआ था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री देश के लोगों से सीधे संवाद करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमैया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण GEC-3 को मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 1,86,405 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें 54,082 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीनों में 10 करोड़ बैरल तेल बाजार में जारी करने का निर्णय

0: खास सारे कार्यक्रम आपके लिए खास पेश किए जाएंगे। तो चित्रलोक कार्यक्रम से संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत, लेकिन रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने की इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना बताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार, तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में पल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई, डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती

ज्योति प्रकाश दत्ता यानी जेपी दत्ता का जन्म 3 अक्टूबर 1949 को एक पंजाबी परिवार में हुआ। आपके पिता श्री ओपी दत्ता फिल्म निर्देशक और कहानीकार थे, यानी जेपी दत्ता को फिल्मी माहौल विरासत में मिला। तो ये तो शायद उनके बचपन में ही तय हो गया होगा कि उन्हें फिल्मों में ही अपना करियर

निर्माता निर्देशक जेपी दत्ता फिल्मी दुनिया और दर्शकों के बीच जाने जाते हैं युद्ध की पृष्ठभूमि पर फिल्म बनाने वाले के रूप में।

जेपी दत्ता को वॉर फिल्में बनाने में महारत हासिल है और इसीलिए उन्हें 1998 में नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम प्रेसिडेंट फिल्म बॉर्डर के लिए सम्मानित किया गया।

बॉर्डर फिल्म का ये गीत संदेश आते हैं, ये आज भी फौजी भाइयों के बीच ही नहीं, उनके परिवारजनों और तमाम देशवासियों के बीच ये गीत बहुत लोकप्रिय है। जेपी दत्ता द्वारा बनाई गई, निर्देशित की गई वॉर फिल्में हैं बॉर्डर, LOC और बॉर्डर 2। जेपी दत्ता ने बंटवारा, यतीम और गुलामी जैसी जो फिल्में बनाई वो भी लीक से हटकर फिल्में रही हैं। जेपी दत्ता द्वारा बनाई फिल्म रेफ्यूजी, इस फिल्म से अभिषेक बच्चन और करीना कपूर ने अपना करियर शुरू किया। रेफ्यूजी में सीमा विवाद को जेपी दत्ता ने बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी फिल्म रिफ्यूजी में पिरो दिया और दर्शकों के सामने एक अलग तरह की फिल्म के रूप में पेश किया।

0: निर्माता और निर्देशक जेपी दत्ता पर केंद्रित रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत आज के इस कार्यक्रम में आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो सकता है। इससे दूसरे देशों के बाजारों में सामान बहुत कम कीमत पर बेचने के कारण डंपिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए WTO के नियमों के तहत एंटी डंपिंग शुल्क और अन्य जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस डेयरी संयंत्र की प्रसंस्करण की क्षमता प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध है। हमारे संवाददाता ने बताया कि दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गौ पालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमैया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। इस परियोजना को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा और इस पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 साल पूरे कर लिए हैं। मन की बात का पहला कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के दिन प्रसारित हुआ था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री देश के लोगों से सीधे संवाद करते हैं। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल और डीजल बाजार में जारी करने का निर्णय लिया है। अमेरिका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण को मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 1,86,405 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें 54,082 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है।
1: हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण का उद्देश्य बिजली के ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करना और बैटरी स्टोरेज की सुविधा बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने कहा कि इस योजना से भारत अपनी बढ़ती अक्षय ऊर्जा क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा। इससे देश की बढ़ती बिजली जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी। श्री साइमन ने कहा कि मजबूत बिजली नेटवर्क और बैटरी स्टोरेज से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी तथा रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण के अंतर्गत राज्यों के भीतर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: जापान के आईचिन आयोगो में एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। तीरंदाजी में आज सुबह कुमकुम मोहद ने महिला सिंगल्स रिकर्व में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी को शूट ऑफ में पराजित किया। इस समय स्वर्ण पदक के लिए पुरुष क्रिकेट में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से हो रहा है। टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इसके अलावा आज दोपहर पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक के लिए भारत और मलेशिया आमने सामने होंगे। इससे पहले कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें मुक्केबाजी में 3, महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण पदक शामिल है। पदक तालिका में भारत 17 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 77 पदक के साथ 5वें स्थान पर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Renu Kataria. India has called for WTO compliant approach to correcting global trade distortions at the concluding day of G20 trade ministers meeting in Milwaukee, US. Speaking on structural excess capacity and production, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said, India shares the concerns of many members that trade distorting support in some economies can lead to dumping and predatory pricing. We have a report.
3: Commerce Minister Piyush Goyal highlighted that India's trade with G20 members depends on a transparent, non-discriminatory and rules-based trading system. He said most favored nation treatment is a key guarantee of this system, ensuring that the same terms apply to the smallest trader and the largest trader. Speaking on ending forced labor in global supply chains, Mr. Goyal said India's commitment to the elimination of forced labor is absolute and unconditional. The minister reaffirmed India's commitment to a rules-based, equitable, non-discriminatory, transparent, open, inclusive and multilateral trading system with the WTO at its core. Suparna Sekia, Akashwani News, Delhi.
2: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today met Chair of the Board and CEO of Archer Daniels Midland, ADM, Juan Ricardo Luciano in Chicago. In a social media post, Mr. Goyal said that the discussed avenues to expand ADM's presence and investment opportunities in India. The minister highlighted India's rapidly expanding food processing sector, modernizing agricultural value chains and large consumer base as key areas offering significant potential for growth and collaboration. United Nations has welcomed India's approval of the 1.86 lakh crore rupees Green Energy Corridor Phase 3, describing the grid strengthening and battery storage system as a major step that will deliver big dividends for the country's people and economy. In a statement to a news agency, UN Climate Change Security Executive Secretary Simon Steel said, the initiative would help India harness its growing renewable energy capacity, meet rising electricity needs and further strengthen its position as a global leader in solar energy. He said the scheme would help integrate renewable energy into India's power system while supporting economic growth. Madhya Pradesh is holding a major event today to promote milk production and the dairy sector. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah and Chief Minister Dr. Mohan Yadav will attend the Gaur Palak Sammelan in Bhopal. Mr. Shah will honour women cattle farmers who have done good work in the field of animal husbandry. He will also distribute approval letters to beneficiaries of the Dr. Bhim Rao Ambedkar Kamdhenu Yojana. More than 35,000 cattle farmers and members of dairy cooperatives are expected to attend the event. Several dairy projects will also be launched, including a dairy plant worth 255 crore rupees in Ujjain and a facility related to milk products in Bhopal. The 8th edition of e-auction of gifts presented to the Prime Minister has been extended until 31st of this month. Culture Ministry said this edition features 30 different mementos showcasing the diverse dimensions of Delhi. The auction gives these memories a larger public purpose, with the proceeds going to the Namami Gange project. The ministry further noted that for auction dates, participation details and the complete catalogue, visit the official PM Mementos e-auction portal pmmementos.gov.in. India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Arunachal Pradesh today. The weather agency has predicted thunderstorm accompanied with lightning over Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura. According to IMD, Konkan and Goa may experience hot and humid weather today. In the Asian Games 2026, India began day 14 with a historic gold in archery as teenager Kumkum Mohod defeated South Korea's Oh Ye-jin in a dramatic shoot-off in Aichi, Nagoya, Japan. After the final was tied 5-5, Kumkum shot a perfect 10 while Oh managed an 8, securing the gold for India. With the victory, Kumkum became the first Indian woman to win an Asian Games medal in the individual recurve event. And that is the end of this news bulletin.
4: Yara Kashwani Tura, Chansa Takinatum Swing Pasa Antin and Prungnam, Natsimadel Station, or Takapa, Paperatory Program Rakoknason Baksa, Absent Station, or Tapa, Hindi or English Coverang Koknason Akamanaha, Dalso Moy Prunit, Kumbazimitskin, or Somoyan Siman, Tasum Taki Janko Gamatanikok, Nason Akaman again. Yasomoyan Siman, Rakan Samara Broni Maraknagi Janko, Knason Akaman again. Skampa Hanting, Rakan Samani Gidranko, Knantina, Gidrangia, Pamben Saranko. Balgawachim, aro o mitchel. Yegi drankoid awan chink nang na.

यादों का भूचाल सा आया हुआ है। हॉस्टल में आए 3 साल हो गए हैं। घर वालों को लेकर वो कभी भी इतनी व्यग्र नहीं हुई, पर आज मम्मी जैसे सामने हैं। समाधि की नसीहतें सामने हैं। दिव्या स्मृतियों की रेतीली आंधी और तपिश से झुलस गई है। उड़ती हुई रेत से दिव्या अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन रेत की किरकिरी मुंह में भी भरी जा रही है और जैसे उसका पूरा बदन और मन रूखा हुआ जा रहा है। तपिश और दंश को छोड़ आई है घर पर वो, लेकिन हॉस्टल की जद्दोजहद भी कहां कम है। आर्थिक तंगी, पढ़ाई का प्रेशर, प्रोजेक्ट पूरा करने का तनाव और दबाव, रिश्तों के समीकरण, इस सब में निपट अकेले तालमेल बिठाना कितना कठिन हो गया है। एक समय था जब अपनी सारी जिम्मेदारी घर वालों पर थी, सारा दोष घर वालों पर मढ़क देती थी, पर अब अपनी गलतियों की सजा खुद को ही देनी है, खुद को अपनी पीड़ा से भी निकालना है।

विद्या खुद को तब के रेगिस्तान में पाती है जहां दूर तक वीराना है। मालूम है नियत दूरी तय करने पर उसे लोग मिलेंगे, शहर मिलेगा, पर उस दूरी तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत और बहुत लंबा संघर्ष है। हॉस्टल के कलीग्स, दोस्तों और टीचर्स के साथ के बावजूद वो खुद को मरुस्थल में जैसे अकेला पाती है। कामयाबी मिल जाना भी कई बार बेहद एकाकी बना देता है। कामयाबी कई बार अपनों से भी दूर कर देती है। What happened, दिव्या? क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? अरे अब तो डॉक्यूमेंट्री से भी पैसे आ जाएंगे ना? तुम्हारी कड़की के दिन भी अब खत्म होने वाले हैं। रिलैक्स, अब सिर्फ स्कॉलरशिप के भरोसे नहीं जीना होगा तुम्हें। नहीं यार, खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। आज पता है, आज मुझे घर वालों की बहुत तलब लगी है। मम्मी की बहुत याद आ रही है। खैर छोड़ो। अरे तो तू उन्हें फोन करके बता दे कि तू बहुत खुश है, तुझे कितनी बड़ी कामयाबी मिली है, वो लोग भी खुश होंगे ना। नहीं नहीं इरफान, उनकी नाराजगी और बढ़ जाएगी। उन्हें पता नहीं है कि हम यहाँ रात रात भर बॉयज और गर्ल्स साथ साथ काम करते हैं, एक दूसरे को हग करते हैं, एक दूसरे से हाई फाई करते हैं, लेकिन हम सब सिर्फ एक दोस्त हैं, रियल फ्रेंड्स। मैं कभी नहीं समझेंगे, मेरी प्रॉब्लम कभी नहीं समझेंगे। पता है फाइनल एडिटिंग वाले दिन मैं, रायमा और प्रणव सर ने एक ही रूम शेयर किया था, बस थोड़ी देर के लिए झपकी ली थी बारी बारी से। उन्हें इन सब की भनक भी लग जाए ना तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी मैं कौन सा उनके लिए जिंदा हूं, कहां जिंदा हूं मैं उनके लिए। उस दिन मम्मी ने मुझे कह दिया था, तू हम सबके लिए मर चुकी है तू हम सबके लिए। छोड़ ना यार, अब आगे की सोच। 2 महीने बाद फंक्शन है, ड्रामा का थीम तैयार हो गया है। इस बार एक ड्रामा और साथ में एक कोरस सॉन्ग भी तैयार कर लेते हैं, ठीक है? हाँ यार, इट्स गुड आइडिया। पिछले साल का फंक्शन अप टू द मार्क नहीं था, इस बार हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं तो बस 2 साल और बिताकर यहाँ से सीधा मुंबई वापस लौटूंगी। मम्मी पापा से दूर आई हूँ उन्हें नाराज करके, तो कुछ बनकर ही उनके पास जाऊंगी। मुझे तो टेलीविजन चैनल में काम करना है, बस इतना सा ख्वाब है। हाँ पर तुझे प्रॉब्लम क्या है? मैंने तो सुना है तेरी बनाई वो साइबर क्राइम वाली डॉक्यूमेंट्री चैनल के लिए अप्रूव हो गई है, वो भी एंटरटेनमेंट चैनल के लिए। हाँ यार, अभी तो सिर्फ अप्रूव हुई है ना, टेलीकास्ट नहीं हुई है। मेरी सीरियल्स जब कई चैनल पर टेलीकास्ट होंगे तब वो मेरी कामयाबी की पहली सीढ़ी होगी। वैसे एक चैनल ने हम सब की डॉक्यूमेंट्री का एक मोन्टाज दिखाया था, रायमा बता रही थी मुझे।

इरफान ने घड़ी देखी, उसके लेक्चर का टाइम हो रहा था। वो वहां से चला गया। इरफान के जाते ही दिव्या फिर स्मृतियों की कटीली सघन झाड़ियों में उलझ गई। गोया कोई ऐसी मखमली याद नहीं है जिसके दामन में वो सिर रखकर सुकून पाए, वो नरम स्पर्श से सहलाए। उसकी हर याद कसैली है। 12वीं की पढ़ाई के दौरान दिव्या ने कभी इंडिपेंडेंट होकर कुछ नहीं किया। बड़ा मन होता था डांस में नाटक में हिस्सा लेने का, पर सब कुछ प्रतिबंधित था। तीन भाई बहनों में सौम्या दी सबसे बड़ी, उसके बाद दिव्या और सोनू छोटा।

दिव्या के सामने सौम्या दी एक प्रतिमान की तरह थी। हर बात में सौम्या दी का उदाहरण दिया जाता था, सौम्या की तरह बनो, उसे देखो, उसने भी तो पढ़ाई की है, वगैरह वगैरह। दिव्या के घर वालों के मुताबिक सौम्या की अच्छाई के कुछ पैमाने निर्धारित थे जो दिव्या को कतई गवारा नहीं थे। दिव्या ने जब भी पढ़ाई के अलावा अपने देखे सपनों का जिक्र किया तो सौम्या का उदाहरण सामने पेश कर दिया जाता था। एक बार जब दिव्या ने ऊंची आवाज में कह दिया, सौम्या दी को आखिर क्या मिला, हाँ आधी अधूरी पढ़ाई कर ली, क्या मिला, अब वो अपने घर में ही नौकर से भी बदतर हालत में जी रही है, क्या फायदा हुआ जिंदगी का, मुझे नहीं बनना है सौम्या, सौम्या सौम्या सौम्या, मुझे टीवी चैनल और फिल्मों में काम करना है, मुझे सौम्या दी नहीं बनना है। वाक्य पूरा होता इससे पहले ही मम्मी का जोरदार चाटा गाल पर लगा था। उस दिन दिव्या कमरा बंद करके खूब रोई थी। सौम्या दी को फोन लगाकर बोला था, दी ये क्या किया तूने, तूने कभी घर में किसी बात का विरोध ही नहीं किया, गऊ की तरह तो सहती रही अभी भी सह रही है, सब चाहते हैं मैं भी सौम्या बनूं, पर मैं नहीं बन सकती दी, तू अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, फिर भी दिखाती है कि सब कुछ ठीक है, तो बहुत खुश है, तुझे क्या मिलता है सौम्या दी ये नाटक करने में, दी सब ठीक और अच्छे जीवन में फर्क है, जो दीवार तू नहीं तोड़ सके ना, मैं उसे तोड़कर बाहर निकलकर दिखाऊंगी, मैं उस

बारिश का मौसम था। वनडे पिकनिक पर कॉलेज की टीम माल्चस घाट जा रही थी। कई दिनों की सिफारिश के बाद दिव्या को परमिशन तो मिल गई, पर उससे पहले उसे घर की अदालत के मुकदमे में तमाम जिरा पर खरा उतरना पड़ा था। कितने लोग, कौन कौन जा रहे हैं माँ? वो लड़के संस्कारी और कुलीन तो है ना? लड़कों से जरा डिस्टेंस मेंटेन रखना। वे हाथ मिलाने के बहाने लड़कियों के करीब आते हैं और फिर दोस्ती की कड़ी जोड़ लेते हैं। समझ में आ रही बात ना? पर हमारे यहाँ लड़कों से

लड़कियों की दोस्ती नहीं चलती, हम खानदानी लोग हैं। वैसे भी तुम्हें मजबूरी में को एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना। समझाइश की ये पुड़िया चाचा ने थमाई थी। चाची ने कपड़ों पर सवाल उठाया था। झरने में भीग जाओगी, पारदर्शी कपड़ों पर लड़कों की नजर फिसलती है, मोटे कपड़े का कॉटन सूट पहनना, समझ गई बच्ची? बाइक पर तुम्हारे चाचा के साथ बैठकर हम भी इतना घूमे हैं, लेकिन मजाल क्या कि सिर का पल्लू कभी उतर गया हो। चाची ने ज्ञान की घुट्टी कुछ यूं पिलाई थी। दिव्या ये कहने से नहीं चूकी, चाची जब विनोद भैया घर से इतनी दूर मनाली 4 दिन की ट्रिप पर गए थे तो गप में लड़कियां ज्यादा थी, पता है आपको, लेकिन विनोद भैया से इतनी जिरह किसी ने नहीं की थी, क्योंकि वो इस घर के सुपुत्र हैं, है ना चाची? जिस घर में सवाल पूछने की मनाही हो वहां इस जरूरत की सजा के तौर पर दिव्या को सबके सामने थप्पड़ खाना पड़ा था। जन्म देने वाली मम्मी का तो सबसे बड़ा हक बनता था। वो हाथ पकड़कर बेडरूम में खींचती हुई ले गई थी, लेकिन अंदर जाकर उन्हें जाने क्या हुआ कि वो पुचकारने लगी, बेटी कुदरत ने जो लड़की और लड़के में फासला बनाया है ना, उसे कोई नहीं पाट सकता है। हम संस्कारी लोग इतना आगे नहीं बढ़े हैं बेटा, हम कितनी भी सभ्यता सीख लें, हमारी सोच तुम्हारी पीढ़ी की तरह मॉडर्न और खुली नहीं हो सकती है ना। हमें पता है तू दोहरी जिंदगी जीती है, घर में अलग और कॉलेज में अलग। घर की दहलीज पार करते ही पूरी संस्कृति तेरी बदल जाती है। पर बेटी हम क्या करें, हम तो मजबूर है ना, हम भी तो हिंदी में एमए किए हैं, फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा भी किए थे, लेकिन क्या मिला, वही खाना बनाना खिलाना, घर वालों के काम करना। हम लड़कियों को अपनी राय या सिद्धांत बनाने की आजादी हमारे समाज ने अभी भी हमको नहीं दी है। तेरे पापा और तेरे चाचा की सोच हम नहीं बदल पाएंगे ना बेटी। बस मैं सोच बदलती रहूं, आप लोगों की दकियानूसी रास्तों पर चलती रहो मम्मी, है ना, यही चाहती हैं आप? क्यों पढ़ाया मुझे इंटरनेशनल स्कूल में, सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया होता तो बेहतर होता। दिव्या आंसू और गुस्से को जज्ब करते हुए बोली, आपको पता है मम्मी, पूरी क्लास में मेरा पहनावा, टिफिन, बोलचाल का तरीका सब कुछ एकदम अलग है, एकदम अलग। मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की टांग खींचते हैं, फिर कहते हैं मैं हिंदी में इंग्लिश बोलती हूँ, पर अब नहीं, मुझे अपने दकियानूसी थोपे गए फिसे पिटे संस्कारों से बाहर आना होगा। आप लोगों की थोपी गई परंपराओं से मुझे अब चिढ़ होने लगी है, उबने लगी हूँ मैं। एक तो इतने छोटे से घर में इतने सारे लोग भरे हैं, कोई प्राइवेसी नहीं है यहाँ। मैं सारे दोस्तों के घर जाती हूँ पर मैं अपने फ्रेंड्स को घर नहीं बुला सकती, क्योंकि उनमें लड़के भी हैं, है ना? इस घर में मेरे स्वस्थ और आधुनिक विचारों का आखिर गला क्यों घोटा जाता है, इसमें बुराई क्या है, लड़के लड़के सब बराबर है आजकल, ऐसा लगता है कि हम किसी गांव या टापू में रह रहे हैं। आखिर जब आप इतना आगे बढ़ गए हैं तो अपने विचारों में भी तब्दीलियां ले आएंगे ना। बहरहाल तमाम पूछताछ के बाद आखिर में दिव्या को मॉरीशस घाट पर वनडे पिकनिक जाने की अनुमति मिल ही गई। कैसा सुखद था वो सफर, पहाड़ों से उतरती पगडंडी सरीखी पानी की दूधिया पतली धारा, कुदरत के तराशे पत्थरों को स्पर्श करती हुई नीचे आकर एक सुरीला संगीत पैदा कर रही थी। नीचे तक आते आते झरने का वेग इतना तेज हो जाता कि उसके नीचे नहाते हुए बदन चोटिल हो जाए। झरने के सफेद फेनिल पानी को जब दिव्या ने छुआ तो रोमांच से भर गई। झरने में दिव्या ने पूरे ग्रुप के साथ जी खोलकर मौज मस्ती की। मॉरीशस घाट की गगन छूती ऊंची पहाड़ियों के खूबसूरत दृश्यों को दिव्या अपने मन में खूब गहराई तक बसा लेना चाहती थी। पहाड़ियों और घाटियों की अनगिनत तस्वीरें उसने अपने मोबाइल में कैद की। बाकी दोस्त जब पहाड़ों के और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे उस समय पेड़ों के झुरमुट की ढलान पर बैठकर दिव्या फटाफट कुछ वीडियोज ले रही थी और अपने मोबाइल में वर्ड फाइल खोलकर इस खूबसूरत नजारे का ब्यौरा टाइप कर रही थी। पत्तियों की सरसराहट जुगलबंदी करती कूकती कोयल की तान रिकॉर्ड कर रही थी।

दूर दिखते कचनार गुलमोहर के पेड़ों को जूम मोड पर अपने कैमरे में जीवंत कर रही थी। फूलों की वादियों से आती चंपा चमेली की खुशबू को अपने भीतर वो समो लेना चाहती थी। उस वक्त दिव्या की आंखें गुलाब से खिली थी, टी टी करती टिटहरी का गान भी रिकॉर्ड कर रही थी। दिव्या इन वादियों में एक पंछी की तरह उड़ना

गीतों भरी कहानी में आज आप सुन रहे थे ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का पहला भाग। स्वर था ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत में व्यापारिक बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की सहायता से जरूरत से अधिक उत्पादन हो सकता है। इससे दूसरे देशों के बाजारों में सामान बहुत कम कीमत पर बेचने के कारण डंपिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए WTO के नियमों के अंतर्गत एंटी डंपिंग शुल्क और अन्य आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस संयंत्र की प्रसंस्करण क्षमता प्रतिदिन 3 लाख लीटर की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गौपालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से भारत वापस लाकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब ब्रिक के नाम से तुर्की की नागरिकता लेकर अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। श्री शाह ने कहा कि एजेंसियों ने उसकी असली पहचान उजागर करने के लिए हर संभव प्रयास किए और उसे निर्वासित करवाया। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर नशीले पदार्थों के गिरोहों को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। इस परियोजना को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा और इस पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल और डीजल बाजार में जारी करने का निर्णय लिया है। अमेरिका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे। ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया है। जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच लिया है। प्रणवी ने देश के लिए गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली वे भारतीय महिला भी बन गई हैं। तीरंदाजी में आज सुबह कुमकुम मोहोद ने महिला सिंगल्स रिकर्व में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी को शूट ऑफ में पराजित किया। इसके अलावा आज दोपहर पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक के लिए भारत और मलेशिया आमने सामने होंगे। इससे पहले कल महिला हॉकी में भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया और वर्ष 2028 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी किया। उधर कुश्ती में सुजीत कलकल ने पुरुषों के 65 किलो फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। बॉक्सिंग में परवीन हुड्डा, अंकुश पंघाल और लवलीना बोरगोहेन ने भी स्वर्ण पदक जीते। तीरंदाजी में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने पहली बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। वहीं क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13वें ओवर में 3 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। भारत पदक तालिका में 17 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित कुल 77 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Union Home Minister Amit Shah has said that the government has achieved a historic milestone by securing the deportation of hardened narco-trafficking kingpin Navpreet Singh from Turkey. In a social media post, Mr. Shah said that Navpreet Singh continued to smuggle heroin and methamphetamine to India from Afghanistan by obtaining Turkish citizenship under the fake identity of Nawab Virk. Congratulating all the agencies for the success, he said that Prime Minister Narendra Modi's government is committed to destroying every narco cartel before December 2029. Vice President C.P. Radhakrishnan today stressed the need for policymakers to understand the ground realities while framing policies for economic and social development. The Vice President was addressing the fifth Kautilya Economic Conclave 2026 in New Delhi. Mr. Radhakrishnan said that policies should be flexible enough to adapt to changing situations and ensure their implementation. The Vice President said that economic resilience cannot be separated from social resilience and development must benefit all sections of society and every region of the country.
2: Once we were the underdeveloped economy, from there we moved on to the developing economy. From there we are moving towards the developed economy. We can call ourselves a developed economy if it is an inclusive development of everyone. That is where the real development benefits should reach the local corner of the country.
1: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that chartered accountants have a pivotal role in strengthening India-US economic partnership by helping businesses navigate cross-border taxation, regulatory compliance and financial governance while making Indian enterprises investment-ready for global capital. He said this during an interaction with the leadership and members of the Institute of Chartered Accountants of India from Chicago, Michigan and Ohio chapters. In a social media post, Mr. Goyal said that during the meeting, expanding opportunities in the India-US economic partnership were deliberated. The United Nations has welcomed India's approval of the 1.86 lakh crore rupees Green Energy Corridor Phase 3, describing the grid strengthening and battery storage scheme as a major step that will deliver big dividends for the country's people and economy. In a statement to a news agency, UN Climate Change Executive Secretary Simon Steele said the initiative would help India harness its growing renewable energy capacity, meet rising electricity needs, and further strengthen its position as a global leader in solar energy. Madhya Pradesh is holding a major event today to promote milk production in the dairy sector. A state-level Gopalak Sammelan is being held today at the BHEL Dashera Maidan in Bhopal. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah will address the gathering. The group of seven G7 nations have agreed to release 100 million barrels of diesel and crude oil over 4 months in an effort to ease soaring fuel prices, with a substantial release of diesel planned in the first 20 days. The decision came as diesel prices in the United States climbed to record levels, adding pressure on President Donald Trump and his administration ahead of November's midterm elections. The announcement followed an overnight conversation between Trump and French President Emmanuel Macron. According to a statement issued by France after the meeting, the International Energy Agency will coordinate the release. India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Arunachal Pradesh today. The weather agency has predicted thunderstorm accompanied with lightning over Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura. Similar conditions may prevail over Andhra Pradesh, Kerala, Mahe, Lakshadweep, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim. According to IMD, Konkan and Goa may experience hot and humid weather today. And in the men's cricket gold medal match of the Asian Games, India were 133-4-4 in 14 overs against Pakistan when reports last came in. Earlier, India won the toss and opted to bat first. And that is the end of this news bulletin.
3: Yara Kashwani Tura, Nasimandali Station, Atatpa, Vidparatini Program Rakhakna Swan Maksa. Absent station or tap by Hindi.

0: यह विटामिन को वांटियो निको दानी दो रंगो दोचे आरो दु रंगो मना अम्मा या विटामिन दोंजादे बिसारंग जादो सानाबा दोंगा आरो दागमनियांबा सुसुजेंजें आरो नर्वस ओनाबा दोंगा विटामिन बी यन गेसा विटामिन ओंगा या विटामिन एरा अंची गचाखनि सेरंगो थारियानियो नंचुमुतबा विटामिन ओंगा या विटामिन दोंजादे मंदे अंची ग्रीसागेन जेकोन एनीमिया ने मुंगाचम दाके उन मंदेनी जासी जक्सी रंग चमते साना मना या विटामिन को मुंसों बते दूध ने दो रंगों मना अम्मा बा ना नमा चानी को ठीक ठाक चाउबा उन्होंने को बा मना अम्मा विटामिन सी जेकोन एस्कोबिक एसिड ने आगान के चम या विटामिन को रा मिसिंग उपा बीते रंगों ने को जेके अंबारे सेगन कक्ची कुमला बारिंग बलाती रंगों ने को मना अम्मा मिशुरंग जीवन विटामिन सी दुआ चम वारंगरा सोजना बिजाकरा बारंग बेलाती आरो आलू रंगो ओंगा या विटामिन एरा मंदेनी बेन फारी रंगो को नामरो रुवातना गता दक्षका या विटामिन दंजोदे मंदे स्कर्वी मुंगबा सानी को मतना जीवन वाजरंग फारी रके अंचिरंग गेचम वोसन ओंगा जा ब्रेन रंगना बा सानी को ओंखाता आरो बिगो अंची खामे गचके दुंगाता विटामिन डी या विटामिन कोरा दोची रमत नाटोकनी बिखाउनी को थारीगमन थोनी को आरो दुतोनी को मना अम्मा वासन आजा सानी थे सुनी को बा मना अम्मा या विटामिन दोंजोदे मंदेनी ग्रेन रंग मंगरक चो आरो गोम ओंसियातनी को मना दकी ओन इसारंगो या मुसा रिकेट मंगबा सानी को ओंखाता विटामिन ई या विटामिन एरा मेचिकनी बिसा मनानी बिदंगो कम का वासन उजा बेन बिगंगनी निचोनी को बा राखिए दोंनागदा दक्षका आरो बोंथों पारा विटामिन के यान आंची तंखातानी बिदिंगो मोसु बा विटामिन ओंगा या दोंजाव दे जेंसलो मंदे आंची ओंगा छिम आरो मंदे आंची पक्का छिम उनन तपचाना बा दोंगा या विटामिन को तंसे कबा मिसु समजाखरांगो मन्नामा उनी गमन या प्ला विटामिन वाला आंचिंगनि जंगि थांगानियो नंगछो मोटकबा बोसुरांग ओंगा
1: Pasiman Dr. J. Dida and Marakni, Vitamini Mandena Mandini Bienna Gam Satani, Aru Warandon John Mandinia, My Sani Ranko Ata Yanig Managarani Kokna Sonata Manaha. The Ozozon at Simana, Christopher Aro, Jamie Marakni Gidranko, Gamatang Skagen. Skampa Hanchen, Christopher Samani Gidranko, Nantina Gidrank Inga, Chitlao Dungia. Kasimbe Chimek, Aru Rangirani Balwa, Yagidranko, I had that one Tinknang now.

0: मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से भारत लाने पर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क के नाम से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। श्री शाह ने कहा कि एजेंसियों ने उसकी असली पहचान उजागर करने के लिए हर संभव प्रयास किए और उसे निर्वासित कराया। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर मादक पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने व्यापारिक बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। श्री गोयल ने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि G20 देशों के साथ भारत का व्यापार पारदर्शी, भेदभाव रहित और नियम आधारित व्यवस्था पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। स्वामी शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: श्री गोयल ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंट्स सीमा पार कराधान नियामक अनुपालन और वित्तीय प्रबंधन में व्यवसायों की सहायता करके भारतीय उद्यमों को वैश्विक पूंजी निवेश के लिए तैयार करके भारत अमेरिका आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने शिकागो, मिशिगन और ओहियो शाखाओं के भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नेतृत्व और सदस्यों के साथ एक वार्ता के दौरान ये बात कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। इस परियोजना को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा और इस पर 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल और डीजल बाजार में जारी करने का निर्णय लिया है। अमरीका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे। ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में आज सुबह 9:43 पर 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। हिंगोली जिला प्रशासन ने निवासियों से शांत रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। उधर जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। प्रणवी देश के लिए गोल्फ का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। इससे पहले वर्ष 2002 में शिव कपूर ने पुरुष स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में धीरज बोम्मा देवरा को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। कल महिला हॉकी में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था और क्रिकेट के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 212 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान दूसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 13 रन पर खेल रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Yang nak khaswani cura, nak simang dari stesen atau tapa helikopteran kok kena sunak tamat nha. Tahu semua salni cik di majmuk pun, ya semua nak simang na. Salna atau tamat dan semua program kok susu.

0: क्या कमाल, क्या कमाल जी, कहिए।
1: ये जो आप पीस सुना रहे हैं ना
0: जी, इसी की बात हो रही थी,
1: इसी की मैं बात कर रहा था कि जब मैं बना रहा था ना ये पीस,
0: हाँ,
1: उस वक्त रफी साहब फेमस नार्डो
0: जी जी बिल्कुल
1: स्टूडियो में,
0: हाँ,
1: क्यूबिकल के सामने खड़े थे,
0: हाँ,
1: और मुझे सुन रहे थे बनाते हुए।
0: बताइए।
1: तो इतने खुश हो गए थे वो कि तुझे शौक है इंक्लोज बनाने का, मेरा जी बहुत शौक है
0: जी जी जी।
1: तो उसके बाद ही उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा।
0: बताइए।
1: और फिर डैडी को फोन किया था। मैं ऐसे इंसान को भूल नहीं सकता, ऐसे इंसान थे, इतने इनकरेजिंग थे मोहम्मद रफी साहब, इतना प्यार करते थे कि चंद शब्दों में उनके बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल होगा।
0: अब मैं एक और गायिका की तरफ आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ भी जो बात है ना, वो गाने के

0: विविध भारती की सालगिरह का जश्न, जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक के संग। अन्नू जी, बातें रफी साहब से चल के और आशा भोसले तक आ गई। शुरुआती दौर था उमेश मेहरा की फिल्म, और ये जो म्यूजिक है ये पूनम से बिल्कुल अलग है। इसमें पूरा एक पंजाबी फ्लेवर है, सोहनी महिवाल, और क्या तो गाना। यहाँ सब लोग उस गाने की मस्ती में डूब गए।
1: तो आपने जो अभी बात कही कि ये बिल्कुल अलग है उस गाने से,
0: हाँ जी,
1: तो इसकी इंस्पिरेशन कि मैंने कसम खाई थी कि मैं वो संगीतकार बनना चाहता हूँ जो हर किसी के गाने बनाए। हाँ। उसके पीछे थे आर डी बर्मन साहब
0: जी।
1: मैं जब छोटा था मैंने एक गाना सुना था, डंग डंग डंग डंग डंग डंग डंग डंग डंग, ये दम मारो दम, ये सुना था।
0: हाँ,
1: उम्र थी 10 साल।
0: हाँ।
1: वो इंसान बनाता है चिंगारी कोई भड़के, अभी वही इंसान। इतना बड़ा कंट्रास्ट। मैं बोला कि मैं आगे चलकर ऐसा संगीतकार बनना चाहता हूँ कि मैं सिचुएशन में अपने आप को ढाल लूंगा। अगर रोमांटिक गाना है तो मैं वो बनाऊंगा, अगर पंजाब पर बेस्ड है सोनी मेवाल लव स्टोरी पर मैं वैसे गाने बनाऊंगा, अगर जुड़वा है जिसमें मस्ती वाले गाने चाहिए जैसे कि ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है मैं वो करता हूँ, तो आर डी बर्मन साहब ओ हसीना जुल्फों वाली भी कर देते, आर डी बर्मन साहब चिंगारी कोई भड़के भी बनाते थे, और मैंने अपने आप को कसम दी कि आई कैन कंपोज ऑन एनी सिचुएशन एनी टाइम एनी वेयर एज लॉन्ग एज माई डायरेक्टर इज विद मी।
0: और ये आपने किया है
1: एक बार नहीं हजारों बार, और अभी भी कर रहा हूं।
0: बिल्कुल, मैं ये सोच के बड़ा हैरान हूं कि एक पूरा 80s का दौर था जहां बहुत अलग तरह का म्यूजिक बन रहा था, और कमाल की बात ये है कि उस पूरी धारा में भी आप 80s के हिंदुस्तान के सबसे बड़े हीरो के लिए ये गाना बनाते हैं। और देश के गली गली शहर शहर चौराहे चौराहे पर गूंजता है ये गाना।
2: मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, ए मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन का मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला मारेगा।
0: बच्चन साहब के लिए गाने बनाना कोई छोटा काम नहीं था,
1: बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरे साथ एक महान निर्माता निर्देशक साहब थे मनमोहन देसाई, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि अन्नू मलिक आप सोचिए नसीब भूली अमर अकबर एंथनी जैसे एक आउटस्टैंडिंग म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और एक नए लड़के को चांस देना
0: जी
1: अमिताभ बच्चन साहब के साथ
0: इतनी बड़ी फिल्म,
1: तो ही हैड फुल कॉन्फिडेंस। और मैं बताना चाहता हूँ संगीत बनता है कॉन्फिडेंस से।
0: हाँ हाँ।
1: संगीत अगर आपका निर्देशक आप पर भरोसा करता है कि दिस मैन कैन डिलीवर, तो हजारों चीजें होती है। और मनमोहन देसाई साहब से जब मैं मिला भी था तो उन्होंने बहुत से मुखड़े सुने मुझसे, बहुत से मुखड़े, लेकिन मुझे मुखड़े लिखने की भी आदत है, मैं मुखड़े की जो फ्रंट पहली जो चार लेने होती है मैं लिख देता हूँ। तो मैं बोला सर कैरेक्टर का नाम क्या है, बोले सोच रहा हूँ मैं पिक्चर का नाम सोच रहा हूँ मर्द। तो मुझे टाइटल बड़ा अट्रैक्टिव लगा मर्द, बोला वेरी गुड टाइटल। तो मैं बोला सर एक मुखड़ा दिमाग में आ रहा है, कैच करता है यार, वो टांगा चलाता है। तो बोलता हुआ मुखड़ा ये मर्द टांगे वाला, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त है ऊपर वाला, और वहीं से वो मेरे गले लग गए। और फिर मैंने कुछ 200 300 400 500 कितनी ट्यून सुनाई उनके दना दन, और एक दिन उनने कहा चल आज सिटिंग करते हैं, और बच्चन साहब के साथ सिटिंग हुई।
0: हाँ।
1: बच्चन साहब ने रिएक्शन तो कुछ दिया नहीं, वो कम बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, बस चुपके सुनते जा रहे थे।

0: जी
1: एफ सी मेहरा साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा मेरी जिंदगी में, जैसे हरमेश बल्होत्रा, उससे पहले सलीम अख्तर साहब,
0: बिल्कुल
1: ये सब लोग बड़े
0: डिक्सियस। मुझे याद आ गई, वर्ग में कुछ बड़े म्यूजिक बड़े लिरिसिस्ट थे, जैसे राजेंद्र कृष्ण।
1: बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया, वो थे ज्यादातर एक्चुअली वो तूफान में थे, अल्लाह रखा तूफान में।
0: हाँ,
1: लेकिन इसमें प्रयागराज जी थे, के शुक्ला साहब थे, मिलजुल कर मैं जब ट्यून सुना रहा था सब अपने कंट्रीब्यूट करते जा रहे थे कि अनु की ट्यून इतनी अच्छी, हम कैची वर्ड लिखेंगे। मनमोहन देसाई वाज अ फैबुलस डायरेक्टर, ऐसा डायरेक्टर दुनिया में नहीं आएगा।
0: कभी कोई खींचतान हुई किसी ट्यून को लेके किसी?
1: बहुत बहुत बहुत, मैंने तो बैकग्राउंड भी किया था इस फिल्म का। खींचतान इसलिए हुई क्योंकि मेरे अंदर तो ये था ना कि मैं जिस बैनर में काम कर रहा हूँ एमकेडी फिल्म्स है, और जिसका संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, हमारी गुरु। और अगर अच्छा संगीत होता तो अलग बात होती, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने तो लाजवाब संगीत दिया था, लाजवाब। अमर अकबर एंथनी देख लो, नसीब देख लो, कूली देख लो, कोई भी फिल्म उठा लो उनकी, मतलब सुपर ड्यूपर हिट गाने। अब मनमोहन देसाई साहब अनु मलिक को ले रहे हैं, एक्सपेक्टेशन तो बहुत
0: हाई हो गया था।
1: अब मैं गाने क्या बनाऊं, तो मैंने बड़ा अतरंगी उल्टे स्टाइल के गाने बनाए।
0: हाँ,
1: अगर आप मर्द के गाने सुनोगे, मैं बोला हट के बनाना पड़ेगा।
0: और वो
1: दिमाग में ये बात थी कि व्हेन यू आर जस्ट 22-23 इयर्स ओल्ड, सामने मनमोहन देसाई बैठा है, इट इज नॉट इजी, क्योंकि मनमोहन जी के कानों में कल्याण जी आनंद जी के सुर थे,
0: बिल्कुल
1: मनमोहन जी के कानों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के सुर थे, मनमोहन जी के कानों में रफी साहब की आवाज थी। अनफॉर्चुनेटली रफी साहब चले गए थे उस वक्त
0: जी,
1: हमारे पास वो सिंगर नहीं था जो, और उन्हें रफी साहब की आवाज से ज्यादा किसी की आवाज पसंद नहीं थी
0: बाकायदा।
1: तो उस वक्त मैं मुखड़े सुनाता था जो मैंने अपने मुखड़े लिखे हुए थे, कैची मुखड़े, लाइक सुन रूबिया तुमसे प्यार हो गया क्या करे, सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से शादी करे, मैं तेरी टांगे वाली। मन मुझे उछल गए, बोला तू मेरी, तू गाना नहीं बना रहा है सिर्फ, तू मेरे सीन लिख रहा है। That was a great compliment from Manmohan Desai, कि मेरा सीन है कि टांगा वाला कौन है, अमिताभ बच्चन इश्क करता है इस लड़की से, तो उसका आपने ये नहीं कहता कि तू मेरी जान है या मेरी जानम है, तूने कहा सुन रूबिया, लड़की का नाम रूबिया, तुमसे प्यार हो गया, डायरेक्ट है, प्यार हो गया क्या करी, सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से शादी करे, या छोड़ दिया। मन मुझे सोचा आगे क्या आएगा, सर ये लाइन डालता हूं, मैं तेरा टांगे तू मेरी टांगे वाली, मैं तेरा टांगे वाला, मतलब टांगे वाले की शादी टांगे वाले से हो रही है, मैं टांगा चलाता हूं तो मुझे इश्क करती है, एंड वो उछल गए। या फिर उगाना था, कहने की तो बात नहीं है फिर भी रहा न जाए, विल यू मैरी मी। उस जमाने में टू गेट अ न्यू इंग्लिश वर्ड, अभी ट्रेंड हो गया है, उस जमाने में बड़ी नई बात थी।
0: बिल्कुल
1: यार, वाइज सिंग बिल्कुल, अच्छा सर क्या मुझसे शादी करो, मेरा नहीं सर ऐसा मत करेंगे। सर कहने की तो बात नहीं है फिर भी रहा चाहे, विल यू मैरी मी, ओल्डगी आती है, नो नो सॉरी जी। सो एवरी सॉन्ग बिकेम अ चार्ट बस्टर बिकॉज ऑफ इट्स फ्रेशनेस,
0: बिल्कुल
1: न्यूनेस। और बच्चन साहब ने कैरिड इट टू अ डिफरेंट लेवल, अमृता जी थी उसके अंदर, उसमें दारा सिंह साहब थे, उसमें क्या क्या गाने पिक्चराइज किए गए, माहौल क्या था वो।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अब जो है बातचीत को फिर से बदलते हैं, और अब मैं एक ऐसे गाने के साथ बात को आगे बढ़ा रहा हूं जिस गाने में एक नशा है, इस गाने में एक तरंग है, फिल्म में अलग गायक की आवाज में आकर रिकॉर्ड पर अलग, लेकिन इस फिल्म के तमाम गानों के बीच इस गाने ने अपना जादू बनाया है। के दशक से 90 के दशक में आ गए विविध भारती लाइव, 70वें वर्ष में प्रवेश और प्यार का इजहार।

0: संस्कृति की सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अनमोल मलिक के संग। अनुजी, बाजीगर फिल्म का ये गाना, मैंने बाकी तमाम गानों को छोड़कर इस गाने की बात की है, कोई तो बात होगी।
1: मैं समझता हूँ इसलिए बात होगी, मैं देखिए ये जो फिल्म का गाना आपने बजाया है
0: जी,
1: पंकज उदास जी की आवाज में बजाया है आपने, और इसको बाद में गाया था विनोद राठौड़ ने।
0: हाँ,
1: सो क्या हुआ, महान रतन जैन, मैं उनको महान रतन जैन बोलता हूँ, वीनस के जो मालिक हैं
0: जी जी जी,
1: और महान गणेश जैन, दो भाई, इनकी वीनस टेप्स एंड रिकॉर्ड्स
0: जी,
1: सात भाई, उनमें से अनफॉर्चुनेटली एक चले गए, हमारे प्यारे चंपक जी,
0: जी जी,
1: भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उस वक्त जब मैं 80s में से निकलकर 90s की तरफ जा रहा था, 80s का दौर बदलता जा रहा था, आप समझ गए, नए नए संगीतकार फिर अपना अपने कदम जमा रहे थे
0: जी,
1: उस वक्त धीरे धीरे मेरा काम जाने लगा
0: जी,
1: एंड मेरी जिंदगी में इस गाने से पहले एक इंसान आए जिनके बारे में हम जरूर बात करेंगे, जिनका नाम है महेश भट्ट साहब
0: जी जी जी।
1: उसके बाद ये पिक्चर आई, मैंने एक एल्बम किया रतन जैन साहब के लिए
0: जी जी,
1: उसमें ये गाना था
0: जी।
1: तो एक दिन रतन जी कहते हैं, यार मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूं।
0: हाँ,
1: फिल्म का नाम है बाजीगर।
0: वाह,
1: इसमें एक नया लड़का है शाहरुख खान।
0: हाँ,
1: नई हीरोइन है काजोल, और डायरेक्टर भी वर्चुअली न्यू है, एक फिल्म इनकी हिट हो चुकी है। तुम आओगे? मैं बस डूबते हो गया, तिनके का सहारा वाली बात है, मेरे पास तो काम ही नहीं है, नई नई शादी हो चुकी थी मेरी। उन्होंने कहा काम करते हैं। मैंने जब ये मुखड़ा सुनाया, इतने खुश हुए। फिर हमने ये गाना विनोद राठौड़ से गवाया था
0: जी।
1: जिस दिन ये गाना रिकॉर्ड हुआ है, महबूब स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ था, तालियां बज रही थी।
0: क्या बात है,
1: क्योंकि 90s की एंट्री
0: हाँ
1: का ब्यूगल बज चुका था, सिर्फ अनु मलिक का नहीं।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: जितने भी संगीतकार 90s में थे
0: जी,
1: वो अपना नया रंग लेके आ रहे थे
0: जी जी जी,
1: और उनमें से एक था अनु मलिक।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: सभी ने बहुत अच्छा काम किया। जितने भी अगर 90s का म्यूजिक सुनोगे तो लोग कहते हैं दैट्स अ रेनेसांस ऑफ, जैसे 60s का म्यूजिक था, 90s के म्यूजिक के बारे में बात करते हैं।
0: हाँ,
1: उसके बाद ऐसा म्यूजिक बना ही नहीं है
0: जी।
1: एवरी कंपोजर, एवरी लिरिसिस्ट, एवरी प्रोड्यूसर, एवरी डायरेक्टर
0: जी,
1: एवरी म्यूजिशियन, एवरी बडी, सिंगर्स हो, लिरिसिस्ट हो, संगीतकार हो, म्यूजिशियंस अपने उस जमाने के क्या थे, लाइव म्यूजिक चल रहा था
0: जी जी,
1: एंड उसका नतीजा है 90s का म्यूजिक। जब ये बाजीगर के गाने बने थे तो लोग दीवाने हो गए थे, बोलते कैसेट्स वर फ्लाइंग लाइक हॉट केक्स।
0: हाँ,
1: ये लोग आके बोलते हैं कैसेट्स बिकते थे, हर दुकान के कैसेट बिक रहे थे, मतलब अगर बगल में चार कैसेट बेचने वाले बाजीगर के हो तो चारों दुकान से बिक रहे थे, ये देखिए एक दुकान में।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो उसका नतीजा ये निकला कि आज टुडे जब ये गाने लोग सुनते हैं तो मुझे मैसेजेस लाके देते हैं, कहते हैं अनु जी ये गाने ऐसा लगता कल रिकॉर्ड किया आपने।
0: हाँ,
1: इतनी फ्रेशनेस कैसे है। तो आई वुड से उस वक्त ऐसा एक सर पे एक जुनून सवार था कि कुछ अच्छा करना है।

0: वासे घर में तो आपने वो रैप भी किया था।
1: नहीं मैं वो काली काली आंखें में, उसकी भी स्टोरी है, अब गाना बजाए तो बताऊंगा।
0: अच्छा गाना बजाना पड़ेगा। ठीक है गाना बिल्कुल बजाएंगे और बाजीगर का वो गाना भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं ये चाहता हूँ अनु जी कि हम इसके बाद वो बात करेंगे बॉर्डर की, लेकिन बाजीगर का गाना अभी आ रहा है।

0: विविध भारती की सालगिरह का जश्न, जाने माने संगीतकार अनु मलिक के संग। ये सुनो जी, ये काली काली आंखें,
1: ये जो काली काली आंखें का गाना है, इसमें जो आज इतना ट्रेंडी हो गया रैप
0: जी,
1: उस वक्त ये सब नहीं था
0: जी।
1: हुआ यू कि गाना रिकॉर्ड हो रहा था, मुखड़ा बन चुका था, सेट पर सब थे, अचानक 16 बार का एक फर्स्ट म्यूजिक में टेम्पो बज रहा था, तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक। बहुत कुछ ट्राई किया, उसमें कुछ हो रहा नहीं था। मैं बोले ये खाली जा रहा है, ये खाली जा रहा है पूरा जगह, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो मैंने एक दिमाग में आइडिया आया, मैं चला गया सेट के ऊपर, मैं बोला यार एक काम करते हैं, माइक पर जाके मैं खड़ा हो जाता हूँ, ये खाली जगह को मैं कवर करना है। अभी मुखड़ा खत्म हो चुका है, अंतरा आने वाला है, अंतरा आने से पहले की म्यूजिक पीस है, लेकिन ये 16 बार मैं करूं तो क्या करूं, बहुत सोच रहा था। अचानक मुझे ऐसा लगा मैं ये वर्ड डालता हूं
0: जी,
1: मैं मिला तू मिली, तू मिली मैं मिला, मैं मिला तू मिली, तू मिली मैं मिला, दुनिया चले तो चले, प्यार करेंगे तुझ पे मरेंगे, धक धक दिल ये करे राम बाम बाम बारा बाम बाम। अब पूरा ब्रास आता है वहां से।
0: हाँ।
1: तो पूरा मैंने टाइमिंग कवर किया उसके अंदर।
0: हाँ।
1: एंड वहां अब्बास मस्तान, रतन जैन और जंप टॉप, ये बहुत अलग चीज की तूने। और इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग इट, उन्होंने कहा मुझे लगता है बहुत अलग चीज हो गया। मैं मिला, और जो तेरा अंदाज है ना तू मिली, तुम्हारा देव खोली साहब भी थे लिरिक राइटर, मैं बोला देव जी पहला हाफ तो मैंने लिख लिया है, दूसरा हाफ को लिखे देते हैं, सेकंड अंतर में भी डालते हैं। मैं तो कहे झटपट।
0: हाँ।

0: पर खटपट मेरे अच्छा तो निकट वो देव जी ने वही लिख दिया, वो भी कमाल के इंसान थे देव कोहली साहब,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: महान राइटर थे वो,
1: महान राइटर।
0: तो वो उन्होंने मैंने बोला सर ये जो मैंने तैथू लिखा है फर्स्ट, मैं बोला तो मेरा आपको बुरा तो नहीं लग रहा, बोला अनु जी गो हेड रिकॉर्डेड बहुत अच्छा लग रहा है, देव जी की परमिशन मिली मुझे और मैंने कर दिया। बट जो नेक्स्ट उन्होंने लिखा वो भी मैंने बोल दिया न तू कर खटपट, तू आजा तो निकट तेरे प्यार झटपट, न तू सुल्फ झटक, न तू पैर पटक, ये सब किया था मैंने। आज वो गाना लोग बोलते हैं वो था ट्रेंड सेटिंग सॉन्ग, वन फॉर इट साउंड,
1: बिल्कुल
0: द म्यूजिक प्रोडक्शन वॉज वेरी न्यू।
1: यस यस,
0: डेढ़ महीना लगा था उस गाने को बनाने के लिए, डेढ़ महीना टू गेट द म्यूजिक राइट, पाम पाम पा पा पाम पाम, तो करते ही करते बहुत टाइम लगा, आई वांटेड टू सेट अ ट्रेंड। और आज लगता है लोग मुझे बोलते हैं कि यार इतना टेक्नोलॉजी आ चुका है, एआई आ चुका है, लेकिन लगता है ये गाना कल रिकॉर्ड हुआ है। मैं तीन बार ये लव्स यूज कर चुका हूँ, बिकॉज आई बिलीव अ सॉन्ग शुड साउंड एज फ्रेश एज इट वाज रिकॉर्डेड यस्टरडे इवन टुडे।
1: वाजीगर के टाइटल सॉन्ग में आपने वायलिंस बड़े प्यारे इस्तेमाल किए हैं, वो क्या था मामला?
0: कहानियां बहुत है इसके बारे में, लोग बोलते हैं अनु जी आप ये बताइए कि गाना बना कैसे। बाजीगर इज अ वेरी टफ वर्ड, बाजीगर, अगर इस पर आपको बोला जाए गाना बनाओ हाउ डू मेक अ सॉन्ग,
1: जी जी।
0: तो मेरे जवाब में एक दिन मैंने रतन जी को फोन किया सर एक मुखड़ा है दिमाग में, बाजीगर वो बाजीगर तू है बड़ा जादूगर, थोड़ा सुना तो मैंने ऐसे सुना है, बाजीगर ओ बाजीगर तू है बड़ा जादूगर, ऐसे सुना लो, बोला कैसी मुखड़ा त्रिडुन तर तो रक्तम पड़ा, अप्रूव हो गया, लेट्स रिकॉर्ड द सॉन्ग।
1: जी जी जी,
0: मेरा अब ये जो लाइन आती है ये सुनने वाले सेट पर हम पहुंचे, सिंगर्स आर ऑन द माइक, सिंगर ऑन द माइक अब्बास मस्तान खड़े हुए, पूरा लाइव ऑर्केस्ट्रा 60 वॉयलेंस वियोलास चालोस एवरीवन रिदम फॉर्मेशंस एवरीथिंग इज रेडी। अब सब बोल रहे कि अनु मलिक इज रिकॉर्डिंग फॉर अ न्यू हीरो, अ न्यू हीरोइन, सबके फैमिलीज आए हुए हैं
1: जी,
0: सब सुन रहे हैं और मैं सेट पर हूं। अचानक जब गाना रिकॉर्ड करो, जो आपने पूछा कि वॉयलेंस आए कैसे, ये मैंने यार 1 2 3 4 गाना शुरू होता है, बाजीगर ओ बाजीगर तू है बड़ा जादूगर, तरन टन टन टन, सिर्फ फर्स्ट म्यूजिक आ रहा था, तरम पम पुम बम बम तरम पम तम दम दम दर, मैं बोला कुछ कमी है यार गाने में, दम नहीं है। लोग हैरान हो गए, बोले सेट पर हो आप, गाना हमने अप्रूव कर लिया है, अब्बास मस्तान कह रहे हैं सर ये गाना उठ रहा नहीं है,
1: कुछ करना पड़ेगा।
0: मैं बोला एक इंट्रोडक्शन बनाते हैं,
1: हाँ।
0: वही सेट पर इंट्रोडक्शन बनाया तो मैं चाह रहा था ब्रास शुड बी कमिंग डाउन, ये सब वॉल्यूम चल रहे हैं, अभी भी कुछ कमी है, मुखड़ा क्यों नहीं उठ रहा है। तो वहां मेरे एक सोलोस्ट थे हमारे, उनको मैंने बोला यार एक काम करते हम लोग स्ट्रिंग्स लेके आएंगे या रोक देंगे,
1: ओ बाबा भाई,
0: और वही मेरा मुखड़ा बजाओ,
1: ओके
0: मेरा ही मुखड़ा बजाओ, तारी रारी रारी रम ता, तो ऑल वे लुकिंग एट मी ये क्यों किया, फिर बोला इसके आगे मुखड़ा नहीं उठ रहा है। सडनली आई गॉट एन आइडिया, मैंने गाना यहां से शुरू करते हैं, वही लिखा गया है।
1: अच्छा,
0: मेरा दिल था अकेला तूने खेल ऐसा खेला, तेरी याद में जागू रात भर, ब्रेक बाजीगर ओ बाजीगर। तो गाने किस तरह बनते हैं, गाने का चेहरा बदल जाता है सेट के ऊपर,
1: क्या बात।
0: एंड आई बिलीव इन इंस्टिंक्टिव क्रिएशन। उस वक्त अब्बास मस्तान रतन जैन मेरे पास आए, बोला तुमने चेहरा बदल दिया गाने का, मुखड़ा उठ गया, एंड बाजीगर वॉज बॉर्न विद दैट सोलो वॉयलिन पीस एंड द सिंगिंग एंड द राइटिंग। क्या मतलब उसका अंतरा भी क्या बना था, धक धक धड़कता है ये दिल बोलो ना क्या कह रहा है, मेलोडी थी तो सिंगर सैंग विद अ लॉट ऑफ लव, सॉन्ग वॉज रिकॉर्डेड विद अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड द रिजल्ट कि आज भी गाना बजता है. और पिक्चराई भी शाहरुख पर और काजल पर इतना ब्यूटीफुल किया था सरोज जी ने कि लोग याद करते हैं उस पिक्चराइजेशन. और क्या शाहरुख लगा और काजल लगी उस गाने के अंदर, लाजवाब पिक्चराइजेशन.
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा और मुझे लगता है कि दिस इज द राइट प्लेस टू प्ले दिस इंट्रोडक्शन म्यूजिक, जिसके बनने की कहानी अभी आपने सुनाई. विविध भारती पर फेसबुक लाइव भी है ये कार्यक्रम. और हाँ, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसमें से कुछ चुनिंदा सवाल हम अनु मलिक से पूछेंगे. ये है वो म्यूजिक जिसके बनने की कहानी अभी सुनाई अनु मलिक ने.

0: मुझे यहाँ यादों की महफिल जम गई है।
1: क्या बात है, क्या क्या गाने आप सुना रहे हैं, मुझे घबराहट भी हो रही, कैसे गाने
0: जी।
1: उसकी मेहनत याद आती है मुझे।
0: मुझे याद है कि मैं जेपी दत्ता साहब से बात कर रहा था और उन्होंने बताया था कि इस गाने के बनने की जो कहानी है, उनको भी विविध भारती से बड़ा प्यार है और काफी काफी दिलचस्प कहानियां उन्होंने बताई थी बॉर्डर की। आप बताइए इसकी सिटिंग की बेमिसाल कहानी।
1: ये जो कहानी है इसकी, ये जो ट्यून है
0: जी,
1: ये जो जगह है, ये मैंने एक जगह, मैं जावेद साहब के साथ बैठा था एक सिटी में एक डायरेक्टर के साथ।
0: हाँ,
1: नथिंग टू डू विद बॉर्डर।
0: ओके,
1: मैंने बैठा था एक सिटी में, जावेद अख्तर साहब थे वहां।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: और मैंने ट्यून सुना, जावेद साहब को बहुत अच्छी लगी ट्यून। इतने अनफॉर्चुनेट वो जो डायरेक्टर था उसे समझ नहीं आई
0: ओके
1: ये जगह
0: जी।
1: बोला नहीं यार मुझे नहीं जब रही, ठीक है हम भूल गए, हम निकल गए। उन्होंने फिर किसी और संगीतकार को ले लिया
0: जी।
1: और हमारे में मेरी जिंदगी में बहुत बार ऐसा हुआ कि हमें प्रॉमिस किया गया फिल्म आपकी, फिर ड्रॉप कर दिया है।
0: जी
1: तो ये तो कहानी सभी सभी की होती है स्ट्रगल की,
0: जी
1: वो अलग बात है। एक दिन मेरे घर में जावेद अख्तर साहब और जेपी दत्ता साहब आए ओपी दत्ता साहब के साथ।
0: हाँ,
1: ओपी दत्ता साहब उनके फादर।
0: जी जी
1: मुझे साइन कर लिया था बॉर्डर के लिए। जावेद साहब ने बोला सिटिंग रूम का दरवाजा जो है अन्नू मलिक का, उस पर कुंडी लगा दो।
0: अच्छा, बंद कर दो।
1: हाँ, क्या हम चेक करते हैं कि भाई ये लड़के में कितना दम है। मेरा इम्तिहान तो जिंदगी में

0: तैयार है।
1: जी जी,
0: जब से मैं पैदा हुआ मेरा इम्तिहान लिया जा रहा है।
1: जी जी जी,
0: कोई बात थी, कुंडी लगा दी आपने, बंद कर दिया। हाँ। बोला कि आप कुछ सुनाइए। मैं फिर सोचता रह गया कि इतने शब्द हैं, संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं। ए गुजरने वाली हवा जो बता, जो लाइन आई,
1: हाँ,
0: वहां जाकर मैं इतना इंप्रेस हो गया। मैंने क्यों वहां से शुरू की?
1: हाँ,
0: ए गुजरने वाली हवा बता। यहां से जावेद साहब का रिएक्शन आया, जेपी साहब का रिएक्शन आया, और दोनों उठे और उन्होंने गले लगा लिया। बोला ये जो इतना बड़ा गाना है तूने यहां से शुरू किया, फिर वो ट्यून जो याद आई थी मुझे, मैं जावेद साहब ने उसको मिला के देखते हैं।
1: हाँ,
0: मिलाया तो जावेद साहब उछल गए और जेपी दत्ता साहब ने गले लगा लिया। सी हाउ सॉन्ग्स आर बॉर्न।
1: जी जी जी,
0: दिस सॉन्ग वॉज बॉर्न आउट ऑफ इंस्टिंक्ट के इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स, इनका चेहरा मेरे आंखों के सामने आ गया यूनुस जी,
1: जी,
0: कि हमारे देश की रक्षा करते हैं और अपने माँ बाप से दूर,
1: जी,
0: अपने फैमिली से दूर, पत्नी से दूर, बच्चों से दूर, वो इमोशन
1: जी
0: मेरे अंदर आया। एंड द सॉन्ग संदेश से आते वॉज बॉर्न, संदेश से आते वॉज बॉर्न बिकॉज आई मैडली एंड डीपली लव इंडिया।
1: क्या बात है,
0: आई लव माई ग्रेट कंट्री भारत। मैं दीवाना हूं इस देश का
1: जी।
0: मैं समझता हूं कि भगवान ने मुझ पर एक बहुत बड़ा मतलब एक एहसान किया कि मुझे ऐसे देश में जन्म दिया जहां इतनी मोहब्बत है, और अगर मैं अन्नू मलिक बना हूं तो इस मिट्टी की वजह से बना हूं
1: जी।
0: और
1: जी।
0: अगर अगला जन्म होता है, अगर कहते हैं है, नहीं है पता नहीं, तो मुझे फिर से आप हिंदुस्तानी बनाना।
1: वाह,
0: मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं।
1: ये गाना तो अपनी लेंथ में, अपने अंतरों में भी
0: 11.5 मिनट का गाना है।
1: बताइए,
0: 11.5 मिनट का गाना रिकॉर्डिंग, और एक अंतरा जेपी साहब ने नहीं काटा, और जेपी साहब ने जो फिल्म बॉर्डर बनाई है जेपी दत्ता साहब ने, जितना उनकी तारीफ की जाए कम है।
1: एक और बात है कि लंबे गाने बनाने के भी आप मास्टर हैं, इसके भी इतना ही बड़ा गाना फिर से आपने एक बनाया।
0: कौन से गाने की बात कर रहे हैं?
1: ये जो एलओसी कारगिल वाला।
0: हाँ, एक सीमाएं बुलाएं भी लंबा गाना है।
1: हाँ।
0: एक मैं कहीं भी रहूं।
1: जी जी।
0: ये भी मेरे देशभक्ति गाने बहुत बनाए हैं, देशभक्ति गाने।
1: हाँ।
0: तो मेरा जो प्यार है अपने देश के प्रति वो मेरे गानों से नजर आता है। कोई मुझे पूछे आप कितना अपने देश से प्यार करते हो, तो मैं एक जवाब देता हूँ, मेरे गाने सुन लो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ये जरूर ये बात कहनी पड़ेगी कि सीमाएं बुलाएं तुझे चल रही, एक ऐसा गाना है जो अमूमन ज्यादा सुनाई नहीं देता, तो थोड़ा सा ये गाना सुनाते हैं, क्योंकि संदेशे आते हैं और सीमाएं बुलाएं, अगर ये दो गाने बजाए रेडियो पर, कुछ प्रोग्राम आधे घंटे के होते हैं, कुछ एक घंटे के होते हैं, आपके दो ही गानों में आधे घंटे का प्रोग्राम निपटाया जा सकता है। सीमाएं बुलाएं तुझे चल रही और संदेशे आते हैं, खत्म, दो आधे घंटे का प्रोग्राम खत्म। इतने बड़े गाने बनाना आसान काम नहीं है।
0: थैंक यू सर।
1: तो सीमाएं बुलाएं तुझे चल रही भारतीय सेना को समर्पित, बॉर्डर और उसके बाद एलओसी करगिल। अनु मलिक ने अपने आप को बार बार साबित किया है। 70 के दशक के अंत में शुरुआत होती है, 80 के दशक में करियर शबाब पर चढ़ता है, 90 के दशक में रीडिस कवर होते हैं, और उसके बाद मोह मोह के धागे के जरिए नए संगीतकारों को बताते हैं कि गाने कैसे बनाए जाते हैं।

व्यक्ति की सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अमीर मलिक के संग। अमीर मलिक कहानी बाकी है। 12 बजे से लाइव शुरू किया है, 2 बजे तक चलने वाला है। 2:30 पर पिग्मांशु धूलिया लाइव विविध भारती 70वें साल में प्रवेश कर रहा है और जश्न हो रहा है लाइव प्रोग्राम में। ये वो गाना है जो हमारी तन्हाइयों का साथी है।

और ये गाना जिसमें एक फलसफा है, जिसमें एक नाजुकी है, ये गाने हमें दूसरे वक्त में ले जाते हैं।

0: गांव के सब जुगनू जंगल में रहते हैं, बहुत कम लोगों को पता है ये कैफी आजमी का लिखा हुआ गाना है।
1: बहुत याद करता हूँ कैफी अंकल को
0: जी।
1: एक्चुअली जब मैं मिला था उनको, उनकी तारीफ करने पहुंचा था जानकी कुटीर में।
0: अच्छा।
1: कि अंकल आपने जो मदन मोहन जी के साथ काम किया है,
0: वाह वाह वाह,
1: क्या क्या गाने लिखे थे, बड़े मुस्कुराए थे। और एक सिचुएशन है जो भट्ट साहब पिक्चर बना रहे हैं, फिर तेरी कहानी याद आई, तो कहते हैं कि मैं, मेरा टीवी की फिल्म है, उस जमाने में इतना अटेंशन नहीं दिया जाता टीवी को, तो भट्ट साहब का नाम सुनकर बड़े खुश हो गए, महेश भट्ट साहब का नाम, महेश भट्ट साहब की बड़ी अपनी उनका एक मुकाम है, उनकी बड़ी इज्जत है
0: जी बिल्कुल।
1: तो बोला तुम संगीत दे रहे हो, बोला हाँ, तो ये मुखड़ा सुनो।
0: अच्छा।
1: मेरे दाएं में बैठे हुए थे वो।
0: हाँ हाँ।
1: मैं बैठा हुआ था आराम से, उनकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी
0: जी,
1: फिर भी बोलते हैं सुनो ये लिखो, आने वाला कल एक सपना है, गुजरा हुआ पल अपना है, हम गुजरे हुए पल में रहते हैं, यादों के सब जुगनू जंगल में रहते हैं। तो मैंने उसी वक्त उनकी बोल सुनते सुनते ये ट्यून बनाई थी। जब वो ट्यून बनी तो उन्होंने ऐसे ऐसे थे, ऐसे बैठे थे, सामने देख रहे थे, अपनी तरफ मुझे देखा, शोभा जी भी थी।
0: हाँ।
1: और कहता है यार मेरे सामने तुमने बनाई है।
0: बिल्कुल।
1: ट्यून मैं ना बाजा भी नहीं था उस वक्त, ऐसे घूम रहा था
0: जी,
1: इसको फौरन रिकॉर्ड करो। मैंने रिकॉर्ड कर ली कैसेट प्लेयर के ऊपर, छोटे थे उस जमाने में कैसेट प्लेयर होता था, उसमें रिकॉर्ड कर ली। और मही जी को बोला उन्होंने कि इसने वो ट्यून सुनाई आप सुनो।
0: हाँ।
1: और वो ट्यून इतनी पसंद आई क्योंकि बोल कमाल के थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: ट्यून तो बहुत ही अच्छी थी लेकिन जो शब्द थे उनके कैफी साहब के वो ऐसे लाजवाब वर्ड थे, वो दोनों का तालमेल हो गया। और मही जी ने बोले यही गाना रिकॉर्ड करेंगे, और फिर गाना रिकॉर्ड हुआ। और आज भी ऐसा लगता है कि गाना

0: बैठे रफकैफी अंकल और यहीं बैठे हैं महीश भट्ट साहब और गाने रिकॉर्ड हो रहे हैं।
1: कितनी प्यारी बात है, गुजरा हुआ कल बस अपना है, हम गुजरे
0: और यादों के हर जंगल में रहते हैं। ये जो लाइन है, यादों के जुगनू के जंगल में रहते हैं, ये ये ये ये पेंट करना शब्दों के जरिए,
1: बिल्कुल
0: वो कैफी साहब ही कर सकते थे।
1: अच्छा, मैं एक और शायर का जिक्र करना चाहता हूँ, और वो इसलिए भी कि उनसे आपका एक ताल्लुक भी है, वो आपके मामा रहे, मामा है।
0: बिल्कुल, वो ऐसे ऐसे गाने लिखे उन्होंने, उनका जो एक कॉम्बिनेशन था, मैं देखिए मेरा बचपन बीता है
1: जी
0: लिस्निंग टू शंकर जी किशन, क्योंकि मेरे मामा ने गाने लिखे थे, जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है।
1: हम अपने सुनने वालों को बता दें कि हम बात कर रहे हैं अमन मलिक जी के मामा जी, यानी जाने माने गीतकार
0: हसरत जयपुरी साहब,
1: हसरत जयपुरी की।
0: और हसरत साहब हमारे मामा ही नहीं थे, वो कमाल के एक इंसान थे। मैं उनके पीछे पड़ा रहता था, मुझे इस रिकॉर्डिंग पर लेके चलो, बल्कि एक मेमोरी बड़ी ये है कि उनके जो रिकॉर्ड आते थे ना
1: जी जी,
0: तो उनके बेटे घर में बैठ के मैं बोलता था यार ये शंकर जी किशन गाना सुना, 11 साल का बच्चा गाने सुन रहा है, जिंदगी सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, या फिर वहां से पुराने पुराने बरसात के गाने सुनते थे।
1: हाँ जी,
0: राज साहब के जितने भी गाने, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, फिर आजा सनम मधु चांदनी में हम, मुझे लगता है ये सब जितने भी गाने थे
1: जिया
0: बनाने वाले, क्या तेरे मन में सुना, ये सुनते सुनते मेरे अंदर चले गए थे गाने।
1: हाँ,
0: और उसका नतीजा ये था कि जब उन्होंने भी मेरे गाने लिखे
1: जी,
0: आपको याद होगा राधा का संगम,
1: हाँ
0: वो राधा तेरे बिना। अब यहाँ जो बातें हम करते हैं, हम लोग बात नहीं करते ऑफ ऑल दीज महान सिंगर्स, उनमें से आप जैसे हमने आशा जी के बारे में, आपने मेरा गाना बजाया सुनी मेवाल का
1: जी,
0: तो आपने वो पूछा ही नहीं कि आशा जी का क्या योगदान रहा है मेरी लाइफ में।
1: नहीं जी बिल्कुल, वो बात
0: पहला पहला मेरी लाइफ का पहला गाना
1: जी जी,
0: वो संग बाय आशा भोसले।
1: क्या बात है,
0: 1977 मतलब 1970 में आई वाज ओनली 14।
1: हाँ,
0: 1977 उस वक्त गाना जुल्म सितम पर इतराने वाले तू भी तो एक दिन मिट जाएगा, और ये नाम है हंटर वाली, ये सब ये मुझे याद है, जुल्म सितम पर इतराने वाले तू भी तो एक दिन मिट जाएगा, तेरा जमाना है मैंने माना, मेरे भी एक दिन आएगा। आशा भोसले जी ने भी डैडी को फोन करके बोला था ये आदमी सिखाए क्या।
1: हाँ हाँ,
0: आशा जी ने पूछा, तो डैडी ने बोला नहीं, ये क्या करता है कि मैं कोई शब्द देता हूं और ये अचानक गाने बना लेता है।
1: हाँ हाँ हाँ,
0: तो आशा जी बोलती है खड़े खड़े बैठ ये लड़का ये कैसे कर लेता है, तो यहां सरस्वती माँ ही बोल रही है, और वही नतीजा है कि आशा जी, लता जी, आशा जी, लता जी, रफी साहब, किशोर कुमार
1: जी,
0: ये सब मेरे गाने गाते थे और मुझे आशीर्वाद देके जाते थे।
1: क्या बात है,
0: यानी कि किशोर दा ने तो मुझे कंपेयर किया था, बोला तुझमें पंचमता की खुशबू आती है, जब मैंने गाना बनाया था बन के नजर दिल की जुमा,
1: हाँ,
0: कहने लगी एक दास्ता जो किशोर ने गाना गाया था,
1: यस, यस,
0: मैं बोला क्यों क्यों, बोले जितना तेरा मुखड़ा मीठा है उतना ही तेरा अंतरा मीठा है। अब ये भी मैंने सीखा कि मुखड़े पर दम मत तोड़ना, मुखड़े पर दम मत तोड़ना, मुखड़े पर अगर तूने दम तोड़ दिया तो अंतरा मजा नहीं आएगा। अ गुड कंपोजर इज वन हु मेक्स अ वेरी गुड अंतरा, ये हमने सीखा था आर डी बर्मन से, ये हमने सीखा था कल्याण जानी जी से, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से, ये हमने सीखा था शंकर जयकिशन से। आप जितने भी गाने सुनते हो, सचिन देव बर्मन के गाने सुन लो, उनके मुखड़े अंतरे सुन लो, मदन मोहन जी के सुन लो, सलील दा के सुन लो, नौशाद साहब के सुन लो, डैडी के सुन लो, रोशन साहब जिनके बारे में हम नहीं बोलते, सी रामचंद्र जी,
1: बिल्कुल
0: ये ऐसे महान लोग हो चुके हैं कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है यूनुस भाई आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है मुझे और बहुत दूर जाना है, बहुत मेहनत करनी है, अभी तक मैं वहां पहुंचा नहीं हूँ जहाँ बड़े बड़े मास्टर्स पहुंचे हैं।
1: देखिए
0: मुझे लगता ही नहीं कि मैंने कोई कमाल का काम किया, आप लोग मेरी तारीफ करते तो मैं हैरान हो जाता हूँ, मैं तो ये बड़े बड़े गाने सुनता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि क्या लाजवाब लोगों ने लिखा है, काम किया है, गाया है, मैं कैसे गाने बनाऊं ऐसे। आज भी मेरे अंदर ये एक आग लगी हुई है कि मैं ऐसा काम कैसे करूं और कब करूं।
1: जी, एक और शख्स के साथ आपने काम किया है जो बहुत ही जादू भरा काम है, ये वो शख्स है जिनके हम सभी दीवाने हैं और जो ये गाना लिखते हैं। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे कि मैं किस गीतकार की बात कर रहा हूं, पर इस गाने के जरिए आपको लगेगा अंदाजा। जहां तक मुझे अंदाजा है, इनके साथ चार फिल्में की आपने।
2: मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब है, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब है, अजीम है हमारी दास्तान जाने वाले। पे रहते हैं, लेकिन
0: उनके साथ मैंने गाना सबसे पहली फिल्म थी वो थी अक्स, ये रात जल्दी की छिपकली रात,
1: हाँ
0: ना निकली जाए ना उगली जाए,
1: हाँ
0: गुलजार अंकल
1: जी
0: के बोल ही तरह छीन कर लेके आते थे, तू हवा है फिजा है जमीन की नहीं, तू घटा है तो फिर क्यों बरसती नहीं, उड़ती रहती है तू पंछियों की तरह, आ मेरे आशियाने में आ, या फिर जो गाना मेरा फेवरेट है
1: हाँ,
0: सौ दर्द है
1: सौ राहतें,
0: सौ राहतें सब मिला है मुझे एक तू ही नहीं,
1: क्या गाना बना है
0: इसमें मैंने जान लगा दी थी, ये वर्ड्स मुझे इतने अच्छे लगे थे, जाने मन का म्यूजिक था
1: जी।
0: अशोका में अगर आप सुनो गाने, रोशनी से भरे भरे
1: बिल्कुल
0: भरे भरे रहना तेरे, छू कर बोले ना छूना मुझे, क्या लाइन है। तो अक्स हो या फिर फिलहाल उनकी
1: हाँ
0: मेघना गुलजार की पहली फिल्म
1: जी,
0: उसका म्यूजिक मैंने दिया, बल्कि अपने सुनने वालों को बताना चाहता हूँ कि जितने भी मेजर डायरेक्टर लॉन्च हुए हैं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, ज्यादातर उनकी पहली फिल्म मेरे साथ रही है। ये इस लोग जानते नहीं है कि मेघना गुलजार की पहली फिल्म मेरे साथ थी
1: जी,
0: फिलहाल तनुजा चंद्रा की पहली फिल्म मेरे साथ थी
1: जी,
0: फराह खान की पहली फिल्म मैं हूं ना
1: जी,
0: जिसे गाने बड़े लोकप्रिय हैं मेरे साथ थी, राजकुमार हिरानी साहब की पहली फिल्म मेरे साथ थी,
1: मुन्ना भाई
0: MBBS
1: जी।
0: तो बहुत से डायरेक्टर्स हैव लॉन्च्ड द कैरियर्स विद मी एंड आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, बहुत से सिंगर्स को हमने डिस्कवर किया है
1: जी,
0: और मैं अपने आप को इतना मतलब भाग्यशाली मानता हूँ कि लोग कभी कभी कहते हैं यार तुमने इसको डिस्कवर किया, इसको काम किया, मैं समझता हूँ कि ऊपर वाले ने मुझ पर एहसान किया है कि मुझे अच्छे अच्छे लोग से मिला है, ये बहुत नसीब वालों को मिलता है, क्योंकि मैं कितना भी अच्छा काम करूं अगर अच्छे लोग मेरे साथ नहीं आते, मैं बार बार कहता हूँ संगीत संगत का काम है
1: जी जी जी,
0: हर आदमी को समझना चाहिए कि संगीत एक आदमी नहीं बनाता
1: जी,
0: उसके साथ बहुत से लोग होते हैं
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जो मिलकर जान लगाते हैं
1: बिल्कुल,
0: और एक ही प्रॉब्लम होता है संगीतकार की, जो मैं फिर आपकी विविध भारती में कहना चाहता हूँ कि सबसे अकेला भी एक ही आदमी होता है जब गाना बनता है, वो है संगीतकार। अब आप पूछेंगे अनु जी संगीतकार अकेला कैसे होता है, सुनने वालों को बताना चाहता हूँ
1: yes.
0: ये मैंने हर प्रोग्राम में बोला, अभी भी बोलूंगा कि जब निर्माता निर्देशक घर पर आते हैं और कहते हैं हमें आपको साइन करना है, फिर निर्देशक सिचुएशन बताता है, उस वक्त सबसे अकेला महसूस जो अकेला होता है वो आदमी, वो होता है संगीतकार। उसके उस वक्त पर ना म्यूजिक राइटर होता है, ना उस वक्त सिंगर होता है, ना उस वक्त साजिंदे होते हैं, कोई नहीं होता, सामने डायरेक्टर बैठा होता है
1: हाँ।
0: और बोलता है मेरी सिचुएशन, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, फिल्म है मुन्ना भाई MBBS
1: yes.
0: गाना कहते हैं हमें एक गाना चाहिए, मैं बोला गाना पिक्चराइज कहाँ किया जाएगा
1: हाँ।
0: और उनका डायलॉग होता है गाना अस्पताल में पिक्चराइज किया जाएगा, आप मुझे सोचिए अगर आपको बोला जाए कि अस्पताल में गाना पिक्चराइज हुआ
1: हाँ।
0: How would your reaction be? आप क्या गाना सोचेंगे हॉस्पिटल
1: हाँ।
0: रात को गाना है, अब क्योंकि गाना लोकप्रिय हो चुका है
1: हाँ।
0: तो आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जब वो संगीतकार के सामने वो सिचुएशन दी जाती है, और मैं ही नहीं ऑल द कंपोजर्स इन द वर्ल्ड, द लोनलीएस्ट मैन ऑन द प्लैनेट व्हाइल मेकिंग अ सॉन्ग इज द कंपोजर
1: यस यस,
0: और वहां डायरेक्टर बैठे हुए हैं राजकुमार हिरानी, और मैंने गाना मैंने तर्ज छेड़ी, तो राजकुमार हिरानी जी ने डॉक्यूमेंट किया है ये
1: हाँ।
0: बोला भी है कि अनु मलिक उठे और अपने हॉल में 15 मिनट चले आए, मैं दरवाजे देख रहा था अनु मलिक यहाँ चल रहे हैं, और चलते चलते अचानक 15 मिनट बाद आए और बोलते है एक मैंने चीज सोची है
1: अच्छा,
0: तो 15 मिनट में और मैंने ऐसे गाया देख ले आंखों में आंखें, अब ये गाना बना कैसे
1: हाँ।
0: उन्होंने एक लाइन बोली थी राजकुमार हिरानी साहब ने कि एक आदमी 12 बजे और 4 बजे के बीच में अपनी पूरी जिंदगी जीना चाहिए उसको
1: जी जी जी जी,
0: क्योंकि 4 बजे वो गुजर जाएगा, he will die, he's got a terminal disease,
1: right right,
0: मगर उसको वो हर खुशी मिलनी चाहिए between 12 and 4, तो मैंने ये भी सोचा कि ये अगर मैं सॉफ्टली शुरू करूँ और भी पेशेंट्स हैं, तो मैं लाउडली नहीं शुरू करूंगा, लाउडली बाद में होगा, तो मैंने ऐसे शुरू किया देख ले आंखों आंखें डाल दी गले जीवन के बल है जा याद रहे मरने से पहले जीना
1: सीख ले
0: सीख ले।

0: तो आज ही गाना लोग सुनते हैं तो पूछते हैं बना कैसे, तो उस वक्त जो संगीतकार अकेला होता है वो संगीतकार ही जाता है, और वो मेरी बात नहीं है, पंचमदा भी अकेले होंगे, शंकर जयेश्वर भी अकेले होंगे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी अकेले होंगे, मेरे फादर भी अकेले होंगे, और इनको मैं इसलिए सलूट करता हूँ, बार बार घूम के इसी बात पर आता हूँ कि आप दुआ करो कि मैं इनके करीब थोड़ा भी आ सकूंगी। ये महान लोग हैं, आप
1: बिल्कुल
0: आज भी मेरी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है नहीं कि मैंने ऐसा कमाल का कुछ काम किया है जो इनके करीब आ सके।
1: मुन्ना भाई MBBS, ये वो गाना है जो विविध भारती पर अक्सर सुबह बजता है और लोगों से ये कहता है कि सुबह हो गई जाग जाओ, अनु मलिक का गाना सुन लो, जॉगिंग करो, चाय पियो।

भारती की सालगिरह का जश्न, जाने माने संगीतकार अमीर मलिक के संग।

0: भारती की सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अनु मलिक के संग गुलजार साहब के साथ के चार गाने बजाए मैंने।
1: बहुत अच्छा लगा सुनकर, क्योंकि गुलजार साहब जितने अच्छे राइटर हैं उतने ही आउटस्टैंडिंग लाजवाब इंसान हैं, और इतना इनकरेजिंग लिरिक राइटर, इतने इनकरेजिंग इंसान मैंने आज तक नहीं देखा
0: जी।
1: बहुत ही प्यार करने वाले हैं
0: बिल्कुल,
1: और इतना कुछ कर चुके हैं, इतना उनसे मैंने चीज सीखी रहा हूं, नम्रता, मोहब्बत, अपने काम को कितना प्यार करना चाहिए, कितनी शिद्दत से लगन से काम करना चाहिए। जितने भी गाने और मुझे बहुत प्यार करते वो आज भी मेरा फोन उठा लेते हैं।
0: हाँ।
1: और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि गुलजार साहब डायरेक्टली मुझसे बात करते हैं।
0: कितना बड़ा चैलेंज था कि उनके अल्फाज आपके पास आ रहे हैं और ट्यून बनाना है,
1: क्योंकि मेरे दिमाग में तो अचानक मदन मोहन जी याद आ गए,
0: वाह
1: पंचमदा याद आ गए, और मैंने बोला कि ऐसे लोगों के साथ काम करने वाला इंसान सामने बैठा हुआ है, खुद एक कमाल के डायरेक्टर हैं, स्टोरी स्क्रीन पे उनके आंधी फिल्म की आप फिल्म देखो, म्यूजिक सुनो, तब मुझे पता लगा कि मैं जिसके सामने बैठा हूं मुझे जान तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। मगर मैं बार बार कहता हूं उनके बोलों में इतनी ताकत और शिद्दत है।
0: हाँ।
1: कि बोलों में दर्द छुपी हुई होती है।
0: क्या
1: उन्होंने लिखा कि तू हवा है फिजा है जमीन की नहीं, तो घटा है तो फिर क्यों बरसती नहीं। अचानक मेरी ट्यून को सुनते सुनते तू हवा है फिजा है जमीन की नहीं, तू घटा है तो फिर क्यों बरसती नहीं, उड़ती रहती है तू पंछियों की तरह, आ मेरे आशियाने में आ टूरा रूरा
0: बाबा।
1: और गाने बनते गए, रिकॉर्ड होते गए, और आज भी अक्स फिलहाल फिजा जाने मन अशोक।

0: नचते हैं गाने, तो लोग उनको अपने सीने से लगाते हैं। ये जो गाना भी आपने बजाया, चित्रा जी याद आ गई, क्या गाया, रात का नशा अभी आंख से गया नहीं दूर, जो आपने फ्लूट यूज किए इसके अंदर, तो माय गॉड आज भी, और क्या गाया, क्या क्या जान लगाई
1: अनुजी ने। अब जो मैं बजाने वाला हूं ना, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, जितने लोग कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, ये सारे लोग झूम उठेंगे,
0: डडांग
1: डडांग, इसके बाद आएगा, डडांग इसके बाद आएगा।

0: भारती की सालगिरह का जश्न, जाने माने संगीतकार अमीन मलिक के संग
1: मुझे एकदम अलग दौर के गानों की बात में करना।
2: जी सर,
1: ये जो कमाल है ये क्या था? एक तरफ अगर तुम नहीं जाओ, दूसरी तरफ भी ये हो तेरे
2: वक्त के साथ इंसान को बदलना पड़ता है
1: जी।
2: वक्त के साथ इंसान को तर्ज बनानी पड़ती है। नए निर्माता आते हैं, नए निर्देशक आते हैं, अपने अपने इमोशंस लेके आते हैं।
1: हाँ।
2: नए हीरोज आते हैं, एक्टर्स आते हैं, एक्ट्रेसेस आती हैं।
1: हाँ।
2: वो अपने एक अंदाज लेके आती हैं। जनरल पब्लिक जो है एक चेंज मांगती है। हमारे अंदर एक कहावत है ना, आपको परिवर्तन ही संसार का नियम है
1: जी।
2: और अगर आप अपने आप को उन्हीं यादों में रखोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: आपको हर वक्त बदलना पड़ता है, हर वक्त नई चीज करनी पड़ती है, हर वक्त ऐसे गाने पब्लिक के लिए बनाने पड़ते हैं जो उनको देखो। हर हिंदुस्तानी के अंदर एक चीज मैंने नोटिस की है, बड़ा मेलोडिक होता है। वो गाना गा सके या ना गा सके लेकिन वो गाना समझता बहुत है।
1: बिल्कुल,
2: वो गुनगुना लेता है उसके अंदर। अगर आप ऐसा गाना बना दो जो उनके दिल की बात है तो वो गाने को सीने से लगा लेंगे।
1: एक चीज जो मैंने देखी है कि आपकी पूरी संगीत की यात्रा में जहां मौका मिलता है वहां मेलेडी का दामन पकड़
2: के वो बिल्कुल गुनगुनाने लायक वाले गाने नहीं होंगे तो गाना में नमी नहीं है। मैंने पहले कहा, फिर बार बार कहूंगा, हर हिंदुस्तानी के अंदर संगीत कूट कूट के भरा हुआ है।
1: yes.
2: किसी भी प्रांत में चले जाओ, महाराष्ट्र में देखो, गुजरात में देखो, लोकगीत जो है
1: बिल्कुल,
2: गुजरात में भी क्या टैलेंट है।
1: yes.
2: आप चले जाइए साउथ में, आप चले जाइए पंजाब में, आप चले जाइए राजस्थान में, आप चले जाइए नॉर्थ ईस्ट में, आप कहीं भी चले जाइए, बंगाल चले जाइए, आपने कभी नोटिस किया है कि ऐसे ऐसे कलाकार हैं इस देश में कि जिनके बारे में जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं समझता हूं कि लाजवाब सिंगर्स, लाजवाब कंपोजर्स, लाजवाब म्यूजिशियंस, लाजवाब टैलेंट है हमारे देश में। हिंदुस्तान एक ऐसा महान देश है जहां इतना टैलेंट कूट कूट के भरा है, गली गली में है।

0: उनमें से मुझे चुनकर सरस्वती माँ ने अगर अनु मलिक बनाया है तो मैं उनका जितना शुक्र करूंगा कम है।
1: बिल्कुल,
0: मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मैं सरदार मलिक साहब का बेटा हूं।
1: यस,
0: कान में 2 साल की उम्र से अगर आप सुरे सुर सुन रहे हो तो बहुत बड़ी बात होती है।
1: लेकिन अनु जी, एक गाना ऐसा जो सात समुंदर पार तक भी गया था, जरा वो गाना

0: ये सुनो जी, चाइना गेट बहुत ही अलग तरह की
1: ये
0: फिल्म।
1: गाना एक ही गाना था, चाइना गेट में एक ही गाना चाहिए था। इट वाज अ मेल ओरिएंटेड फिल्म
0: हाँ
1: और बड़ा चैलेंज था। राजकुमार संतोषी साहब ने कहा कि यार कोई ऐसा गाना बना दो,
0: हाँ
1: उनके फाइनेंशियल भरत भाई भी आए थे, कि
0: जी जी
1: बड़ा एक लोकप्रिय गाना बन जाए।
0: जी
1: तो मैंने ये सोचा कि छम छम ये बना भी कैसे, मतलब छम छम सब बोलते हैं,
0: हाँ
1: चूड़िया खनकी खनकाने वाले आ गए, छम छम बाजरे पाए लिए। लेकिन मैं बोला राजी, मेरे दिमाग में मुखड़ा आ रहा है,
0: हाँ
1: छम को छम्मा कर, छम्मा छम्मा। लेकिन जब ट्यून बनी ना, ट्यून सुन के वो गदगद हो गए, और समीर जी ने फिर उस गाने को जो लिखा है,
0: जी
1: समीर अंजान साहब,
0: बिल्कुल
1: और बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान है। तो गाना फिर जब बन गया और रिकॉर्ड हुआ, फिर जो पिक्चराइज हुआ, तो मेरा गाना ये, मैंने आपको पता, बड़ा शौक है, आपने समंदर पार बोला, मैं एक्चुअली बड़ा इसमें, मेरा ये अजीब बिटर स्वीट मेमोरी है।
0: बिटर स्वीट।
1: हाँ, स्वीट मेमोरी ये कि गाना इतना लोकप्रिय हुआ।
0: बाद में
1: जब
0: हॉलीवुड की
1: मैं
0: फिल्म में
1: हॉलीवुड में
0: गया।
1: जब गया, वहां जब मैं एलए में था, सैन फ्रांसिस्को में, तो मैं एक थिएटर में जाकर पिक्चर देखता हूँ, तो देखता हूँ कि मेरा गाना बज रहा है, छम्मा छम्मा बाजे रे तेरी बजरी, निकोल किडमैन पर। वहां सबका सिंगर का नाम दिया, लिरिक राइटर का नाम दिया, मेरा ही नाम नहीं है।
0: अरे अरे अरे
1: और
0: अरे
1: मुझे बड़ा रंज हुआ ये, क्योंकि जब हमने इतना मेहनत की मुखड़े पर, अंतरे पर, ट्यून पर, कोई
0: हाँ
1: बात नहीं, लेकिन हमें हिंदुस्तानियों का प्यार मिल गया, वही काफी हमारे लिए।
0: बिल्कुल
1: मैं बाहर नहीं देखता हूँ, हमारा हिंदुस्तान इतना महान देश है कि यार एक हर एक हिंदुस्तानी आपको सीने से लगा लेता है, उससे
0: बिल्कुल
1: बड़ा, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है।
0: यस। और अनुजी, अब एक ऐसी फिल्म जिसमें इतनी स्वीटनेस थी इन गानों में, और एक नई गायिका को लेकर आया।

0: अनु जी, जोश फिल्म की बातें हो रही हैं, मंसूर खान की फिल्म, और संजीव जी को आपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था, और
1: ये फिल्म थी करीब
0: जी, हाँ सॉरी करीब,
1: हाँ ये जोश की नहीं, ये फिल्म थी करीब, विधु विनोद चोपड़ा साहब की फिल्म थी।
0: हाँ,
1: और वीर चोपड़ा जी जो अभी नहीं रहे, याद आते हैं।
0: हाँ हाँ,
1: तो उन्होंने कहा कि हमारी नई हीरोइन है और एक नई आवाज चाहिए फीमेल के लिए, और बहुत ऑडिशन हुई और संजीवनी जी से मिलाया इन्होंने मुझे, इनकी आवाज बहुत ही अच्छी लगी, बहुत इमोटिव आवाज है, बहुत शिद्दत से गाने वाली इंसान है, और नतीजा ये हुआ कि आज जितने भी गाने आए, ये आज इतने चलते हैं गाने अभी भी, कि अगर मैं शो पर परफॉर्म करूं तो लोग चाहते हैं कि ये गाने सुनाए जाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बाकायदा असल में ये हुआ कि ये दोनों करीब और जोश इसलिए मिक्स हो गई कि मेरे जहन में ये चल रहा था कि मैं जोश और अकेले हम अकेले तुम की भी बातें करूं, और अकेले हम अकेले तुम में
1: बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूँ फिर तेरी कहानी याद आई, जोश और अकेले अकेले तुम की बात कीजिए, मंसूर खान साहब याद आते हैं मुझे फिल्म जोश के, उनकी पहली फिल्म मैंने की थी अकेले हम अकेले तुम, और उसके गाने बट यू लव मी डैडी, तू मेरा दिल तू मेरी जान, ओ आई लव यू डैडी, या फिर राजा को रानी से प्यार हो गया, या फिर दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, हम दिल को कभी, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं, ये गाने सब आज इतने लोकप्रिय हैं। और मंसूर खान ने जो काम निकाला, नासिर साहब के बेटे हैं, सुरीले इंसान है, बहुत मेहनत करवाई, लेकिन मजरू अंकल ने भी जो काम किया उसमें, मजरू सुल्तानपुरी साहब ने, जिनका आपने नाम अभी तक जिक्र नहीं किया, लेकिन अकेले हम अकेले तुम में जो मजरू साहब ने काम किया मेरे साथ, ओए हो क्या बात है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये गाना सुनते हैं।

एक तरफ मजू साहब का ये गाना और दूसरी तरफ एक ऐसा गाना जो बहुत बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। फिल्म का नाम है डुप्लीकेट।

0: ಜತೆಗೆ ಸಾಲ್ಗಿರೋ ಜಶ್ನ್ ಜಾನಿಮನೆ ಸಂಗೀತಾರ್ ಅಮ್ಮಿ ಮಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಂಗ್ विविध भारती के सालगिरह का जश्न अनु जी के संग हो रहा है और दो गानों की बातें करेंगे और उसके बाद हम साइन ऑफ करेंगे। ये गाना जिसके गाने के बनने की कहानी चाहिए हमको, जिस तरह के तभी आते हैं हिंदुस्तानी फिल्म म्यूजिक के लिए ये नया था। बताइए अनु जी,
1: आपने कमाल कमाल के इस्तेमाल किए हैं और मेरे जितने भी गाने आपने बजाए हैं उसकी कहानियां सुनी है आपने
0: जी,
1: इसका बड़ा कमाल काम है। ये पिक्चर बन रही थी फराह खान की पहली फिल्म
0: जी,
1: और फराह खान कम्स आउट विद एन आइडिया कि यार अन्नू इस फिल्म में
0: हाँ
1: कव्वाली करते हैं। मेरे बोले नहीं नहीं नहीं, कव्वाली बनाना इतना आसान नहीं, और कव्वाल को मैं जितने भी कव्वाल हैं हिंदुस्तान में उनको मैं प्रणाम करता हूँ कि कव्वाली बनाना बहुत मुश्किल काम होता है
0: जी।
1: तो उस समय नहीं, मुझे कव्वाली चाहिए
0: जी,
1: तो मैं बोला अगर कव्वाली करेंगे तो मेरे स्टाइल में करेंगे।
0: हाँ,
1: तो जावेद साहब सामने बैठे हुए थे
0: जी,
1: व्हाट इज योर स्टाइल, व्हाट यू मीन कव्वाली योर स्टाइल।
0: हाँ,
1: अरे सर लेट्स स्टार्ट विद व्हाट्स अप,
0: अरे बाप रे
1: विकेड, मैंने ऐसे ही बोला। जावेद साहब भड़क गए, उड़ गए, बोला मैं ऐसे जा रहा हूँ ये कव्वाली नहीं हुई।
0: हाँ,
1: तो फराह खान पकड़ के ले गए।
0: हाँ, हाँ,
1: तो मैंने एक पीस सुनाया उनको।
0: हाँ,
1: डाने डांडे डाने डांडे डाने डांडे डाने डांडे डांडा डांडा डांडा, ये तो सुनाया। तो जावेद साहब बोलते हैं ये तो म्यूजिक पीस है ना। मैंने सर नहीं सर, फरा बोलती इस पर भी आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा बता, बड़ी छोटी जगह स्टकाटो है ये।
0: हाँ,
1: लगाड़ो भी नहीं, लगाड़ो दारी रा रा रारी रा, ऐसा नहीं है, तारी नांदी दारी नांदी दारी नांदी दान। तो इतने छोटी जगह पर उन्होंने जावेद साहब ने जो वर्ड लिखे, देखो बोले ये ना रहे ये दीवाने ये परवाने हैं इश्क में कैसे गुम।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: एंड वहां पर वो लिखा है तुमसे मिलकर मैंने ट्यूसडे दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा, उन्होंने लिखा तुमसे मिलके दिल का है जो, हाँ सामने लिखा उन्होंने। अब गाने की जब रिकॉर्डिंग आई तो मैं चाहता था, उस जमाने में बड़े बड़े कव्वाल थे उनके साथ में काम करना चाह रहा था
0: जी।
1: नई डायरेक्टर, बजट का प्रॉब्लम, तो उन्होंने कहा नहीं साहब ये मुश्किल होगा कव्वाल को लेके आना। तो कुछ मैंने अपने साजिंदे को बोला कि उन्होंने बोला कि यार माही में कोई है साबरी ब्रदर्स बोलते हैं बहुत गुनी है, तो मैंने ये जगह है देखो प्यारे ये नजारे ये दीवाने ये परवाने। वो आए, उन्होंने बहुत मेहनत की और आकर उन्होंने ये गाना गाया। लेकिन इसके पीछे जो कहानी है कि रिदम क्या होगी।
0: हाँ, ये रिदम बिल्कुल
1: रिदम कैसे होगी। तो मैं बोला कव्वाली के अंदर एक ढोलक तबला था मगर सिर्फ उनकी चाटिया बजाएंगे, बाया नहीं बजाएंगे।
0: ओके,
1: मतलब बेस गिटार तनांग चिक दिंग। अब ये साउंड जब बजा है, रिकॉर्ड हुआ है, तो और ये भाई साहब हमारे इतना गुनी इंसान रंजीत जी, उन्होंने बोला अनु जी आपने ये बात जो मुझे बोली है इस पर मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं लगता हूँ इसके ऊपर
0: जी।
1: और भाई साहब लगे उस पर
0: जी,
1: और हम बैठे हुए रात से सुबह हो गई
0: जी।
1: ये आइडिया उनको बजाते बजाते उसकी जो साउंड है था ना, उसके जो चाटी का साउंड, उसको ट्यून के सुर में लाना था। कौन से?
0: हाँ,
1: कौन सा जो मुखड़ा है तुमसे मिलके दिल का है जो, हाँ गया। अब ये इसी सुर में तनांग, तो बेस गिटार लेके साउंड लाके स्ट्रिंग्स डाल के अचानक फिर साबरी ब्रदर्स बा सोनू जी सब मिलकर जो फिर वो जो बड़ा नाची है,
0: क्या बात है।
1: हाँ, उससे बोले ये क्या गाना मिल गया, और गाना कव्वाली का ट्रेंड शुरू हो गया था। बहुत मेहनत की मैंने इस गाने में, आई टेल यू समथिंग, उसके आंकड़े बनाते बनाते जावेद साहब ने कमाल लिखा, पिक्चराइज मेरे को हुआ था, और सब पर जो पिक्चराइज किया फरहान ने, इट बिकेम अ मैजिकल सॉन्ग।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसका ये ओपनिंग पीस सुनते हैं और उसके बाद एक बहुत ही नशीले गाने की बात।

0: तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे।
1: विविध भारती की सालगिरह का जश्न, जाने माने संगीतकार अमीन मलिक के संग।

के साथ खुद को साबित करते रहते हैं। 70 के दशक के आखिर से शुरू हुआ ये सफर 80 के दशक पर परवान चढ़ता है, 90 के दशक में रिडिस्कवर होता है,

0: अनु जी, ये गाना तो मैजिक है। नए गीतकार वरुण ग्रोवर, शरद कटारिया की फिल्म, बताइए।
1: सबसे ज्यादा श्रेय जाता है वायरफ को
0: जी,
1: जिसके हेड हॉन्चो हैं हमारे फेवरेट, हम सबके फेवरेट आदित्य चोपड़ा साहब।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: जिनका मुझे बुलावा आया। वो ज्यादा क्रेडिट लेना नहीं चाहते इस बारे में, बोलते मेरे बारे में ज्यादा मत बुला करो, लेकिन फैक्ट तो ये है कि उन्होंने मुझे फोन करके मैसेज देके बुलाया। और शरद कटारिया साहब की स्क्रिप्ट सुनकर मैं गदगद हो गया, कमाल की स्क्रिप्ट
0: जी।
1: आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर ने जो काम किया है इसमें
0: जी,
1: मनीष शर्मा प्रोड्यूसर थे इसके, ये दोनों आए मेरे पास और आदित्य साहब ने बोला कि अगर आप इनको कन्विंस कर जाए तो ये पिक्चर आपकी है ना, ये गाना करते हैं। मुझे जब सिचुएशन बताई तो मैं समझा, इन्होंने बताया कि हरिद्वार का सेटिंग है ये, मैं समझा, पता नहीं मेरे दिमाग में बनारस क्यों चल रहा था, और मैं अकेला रूम में बैठा हुआ
0: हाँ
1: सोच रहा था। 4 घंटे चले गए, 5 घंटे चले गए, 6 घंटे चले गए, कोई रिएक्शन नहीं।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: दरवाजा खुलता है और शरद कटारिया साहब आते हैं, मनीष शर्मा आते हैं। मैंने ट्यून सुनाई, पहले तो कुछ बोले नहीं, फिर शरद जी बोले अगर हम कोई नया राइटर लाएं इसके अंदर तो आपको ठीक चलेगा। हमने पहले सोचा था, मेरा बोला भाई गुजार साहब होंगे
0: जी,
1: बोले नया राइटर जरूर ले आइए प्लीज, आई एम गेम टू वर्क विद एनीबॉडी। और मैं ये कहना चाहता हूं आपके इस प्रोग्राम के जरिए कि ये जो शब्द वरुण ग्रोवर ने मुझे दिए
0: जी,
1: ये मोह मोह के धागे,
0: बाद में तेरा चाव लगा कि जैसे घाव लगा, वो भी
1: उन्होंने लिखा था
0: जी।
1: मैंने बोला ये लाजवाब राइटर है, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे।
0: वाह वाह वाह।
1: और जब तर्ज बनी तो मैंने एक ही रिक्वेस्ट की, मुझे वो सिंगर्स चाहिए जो मेरे साथ बैठे रिहर्सल करें। और इसका तो एक वीडियो भी बनाता है रिहर्सल का, जो बहुत लोकप्रिय हुआ है
0: जी जी।
1: कितनी मेहनत की हमने इस गाने के ऊपर। गाना जब रिकॉर्ड हुआ और जो पिक्चराइज हुआ, और आज मैं आपको बहुत खुशी से कहना चाहता हूं कि 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले
0: बिल्कुल
1: इस फिल्म को, इस गाने को द बेस्ट लिरिक्स एंड द बेस्ट सिंगर मिला। ये अलग बात है कि अन्नू मलिक को भूल गए, मुझे नहीं मिला उसके अंदर, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन बेस्ट फिल्म में मिला था राष्ट्रीय पुरस्कार।
0: यस यस यस।
1: एंड 2016-17 की बात है ये।
0: और उस फिल्म के एक गाने में आपने 90s को रिलीव किया था, एक झलक सुनवाता हूँ।
1: तुमसे मिले दिल में हुआ दर्द का।

0: अनु जी, अब बहुत कम वक्त बचा है, विविध भारती अपने 70वें साल में प्रवेश कर रहा है, इतने सारे लोग और सभी आपके दीवाने, बताइए चलते चलते क्या कहना चाहेंगे आप?
1: मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं सभी से ये कहना चाहता हूं कि मैं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने मुझे अन्ना मलिक बनने का मौका दिया। मैं अपने देश का बड़ा आभारी हूं जिस देश में मैंने जन्म लिया है, जहां मुझे ये कला मिली है। हर सुबह उठ के इस मिट्टी को मैं प्रणाम करता हूं और ऊपर वाले से कहता हूं कि भगवान अगर दूसरा जन्म है तो इसी देश में हो, हिंदुस्तान में हो, क्योंकि सारी दुनिया में अगर नाम हुआ है तो इसी देश से हुआ है। मैं अपनी जनता का बहुत बड़ा आभारी जिन्होंने मुझे हर तूफान में हर वक्त संभाला है, मुझे मेरे गानों को प्यार दिया है, मुझे इज्जत दी है। आज जितने भी मैं विविध भारती में आया हूँ, जितने भी मुझे यहाँ लोग मिले हैं
0: जी,
1: ये सब मेरी बहनें जिनको मैं देख रहा हूँ, इतना प्यार से गाने नाच रहे थे और इतने दिल से रिएक्शन दिया है कि विविध भारती का मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे याद किया
0: जी।
1: आपका यूनुस भाई जो आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, और मेरा दिल कहता है कि हमारी जनता को ये प्रोग्राम बड़ा पसंद आया होगा और जरूर सीने से लगाकर इसको एक यादगार प्रोग्राम समझेंगे। 70 इयर्स इज नो मीन अचीवमेंट।
0: यस,
1: तो मतलब नेक्स्ट ईयर जनवरी 11 को अनु मलिक 50 साल कंप्लीट कर रहे हैं।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द मिडडे न्यूज। द हेडलाइंस: Government developing entire ecosystem based on cattle farming, giving push to rural economy, says Union Cooperation Minister Amit Shah. Commerce Minister Piyush Goyal says India's free trade agreements to cover 75% of world economies. Prime Minister Narendra Modi's monthly radio program Mann Ki Baat completes 12 years today. 5 Indian nationals rescued safely after Kuwait flagged tanker struck by projectile in Strait of Hormuz. And on the final day of Asian Games, Indian men's cricket team bags gold with 19-run win over Pakistan in finals. In men's hockey finals, India to take on Malaysia in a short while. Now the news in detail. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has said that the Narendra Modi government is developing a complete ecosystem around cattle rearing, from converting cow dung into biogas and organic fertilizer to processing dairy products and providing market access to give a new boost to the rural economy. Addressing the state-level Gopalak Sammelan in Bhopal today, Mr. Shah said cattle rearers would be among those benefiting the most from the formation of the Ministry of Cooperation.
3: We have launched White Revolution 2.0. Under this initiative, we will establish 75,000 new cooperative dairy in villages and strengthen 46,000 existing dairy.

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पशुपालन आधारित तंत्र विकसित कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे। हुरमूज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। और एशियाई खेलों में क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में कहा कि सहकारिता मंत्रालय के गठन से सर्वाधिक लाभ पाने वालों में पशुपालक भी शामिल होंगे। गृह मंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।

0: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एपेसल के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
1: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गोशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12 करोड़ की लागत से केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम होगा। गोपालक सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भेल दशहरा मैदान में ही नए आपराधिक कानूनों पर मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर श्री शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने भगोड़ों को वापस लाने के लिए एक समन्वित अभियान चलाया है। वर्ष 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों के कुल 288 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर नशीले पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ऐसे मुक्त व्यापार संबंधों के लिए आगे बढ़ रहा है जो विश्व की लगभग 75-80% अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देगा। शिकागो में यूएस इंडियन कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में अपने

0: व्यापार समझौतों का काफी विस्तार किया है और कई अन्य वार्ताएं जारी हैं। उन्होंने कहा कि ये बढ़ता क्षेत्र भारत से संचालित कंपनियों को एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच प्रदान करेगा। श्री गोयल ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले भारत के लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर की सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौते थे।
1: 2014 के पहले हमारे पास ट्रेड एग्रीमेंट्स कई देशों के साथ थे और वो सब छोटे छोटे देश थे। अब कुल मिला के जितने देशों में हमारे ट्रेड एग्रीमेंट्स थे उनकी आज की अगर हम अर्थव्यवस्था देखें या जीडीपी देखें तो 10 ट्रिलियन डॉलर की। गत चार साढ़े चार वर्षों में हमने 38 और देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया। 38 डेवलप विकसित देश और उन सब की अगर जीडीपी का आंकड़ा ले तो वो 60 ट्रिलियन डॉलर है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात कार्यक्रम की पहली कड़ी वर्ष 2014 में आज ही की तारीख को विजयदशमी के दिन प्रसारित हुई थी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से इस सोच को किस तरह अमल में लाया गया है इस बात की जानकारी देंगे।
3: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। इसके तहत पात्र परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है। योजना के अंतर्गत देश भर के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिन और अस्पताल से छुट्टी के बाद के 15 दिन तक की निर्धारित खर्च भी इसमें शामिल है। पहले से मौजूदा बीमारियां भी योजना में पहले दिन से ही कवर होती है। योजना के तहत परिवार के सदस्यों की संख्या, उम्र या लिंग पर कोई सीमा नहीं होती। पात्र लाभार्थी देश के किसी भी राज्य में योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पताल में इसका लाभ ले सकते हैं। यानी लाभार्थी को इलाज के लिए अपने गृह राज्य तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिक उनकी आय या सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना आयुष्मान भारत PMJAY के तहत 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य कवर के पात्र होते हैं। आइए सुनते हैं लाभार्थी की ये रिपोर्ट।
4: 1 ईयर पहले मम्मी का कुछ प्रॉब्लम हुआ था गाने के, तो हम बाहर भी गया था दिखाने के लिए, यहाँ भी दिखाया था। तो बाहर दिखाने के बाद मैं बीमार पड़ता होने के बाद फिर यहाँ से भी कंसल्ट किया था गाइनी सर लोग से, तो सर लोग ने बोला था कि यूं ही हो जाएगा ऑपरेशन, जो कार्ड भी आपके पास है ना नहीं पूछा था। हम बोला सर हाँ मेरे पास में कार्ड है बोल के, तो उसी में क्लेम करने से वो पैसा को भी आपको गवर्नमेंट से मिल जाएगा बोल के। तो फिर हम अपना ऑफिस में CPC में जाके SSR कागज डॉक्यूमेंट बताया, SSR है, तो वहीं से हमको बेनिफिट जो मिल गया और ऑपरेशन जो सक्सेसफुल हमका ये तेजू जोरन जोरन हॉस्पिटल से ही हुआ था।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में समावेशिता ही मजबूती की बुनियाद है। श्री राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का विषय था बदलते दौर में मजबूती। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आम सहमति, समावेशिता और परिस्थितियों के अनुरूप नीतियां बनाने से लोकतंत्र और विकास साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं तथा सतत विकास की मजबूत नींव तैयार हो सकती है। उन्होंने कहा कि वास्तविक मजबूती तभी है जब कोई नागरिक, उद्यम या क्षेत्र पीछे न छूटे।
5: First our transformation is taking place in the economical growth of India. Once we were the underdeveloped economy, from there we moved on to the developing economy. From there we are moving.

0: towards the developed economy.
1: We can call ourselves a developed economy if it is an inclusive development of everyone. That is where the real development benefits should reach the nook and corner of the country.
2: रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि मूल्य और वित्तीय स्थिरता को भू राजनीतिक और भू आर्थिक विखंडन, व्यापार प्रतिबंधों, आपूर्ति में अचानक आए अवरोधों और तकनीकी व्यवधानों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। आज नई दिल्ली में पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में गवर्नर ने ये बात कही। वायुसेना का 94वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस वर्ष के समारोह का विषय है भारतीय वायुसेना अचूक, अडिग और सटीक। एक रिपोर्ट।
3: वायुसेना दिवस के अवसर पर इस वर्ष एयरफोर्स डे परेड, भारतीय वायुसेना के विमानों और हथियार प्रणालियों का स्थैतिक प्रदर्शन, टीम शक्ति एयर वॉरियर ड्रिल टीम, एयरफोर्स ड्रमर्स और हेरिटेज फ्लाइट की विशेष प्रस्तुतियां होंगी। मुख्य परेड एयरफोर्स स्टेशन हिंडन में आयोजित की जाएगी, जहां वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के अलावा सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन और पूर्व वायुसेना प्रमुख भी उपस्थित रहेंगे। इस वर्ष वायुसेना दिवस के आयोजन के बारे में नई दिल्ली में जानकारी साझा करते हुए स्क्वाड्रन लीडर पल्लवी सांगवान ने कहा कि परेड से पहले MI-17 राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ ध्वज फ्लाई पास्ट करेंगे। परेड के बाद अलंकरण समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली इकाइयों को प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: वायुसेना दिवस से पहले नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एसपी सिंह ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के इस दौर में जब हर देश के पास गोला बारूद, विमान, परिचालन प्रणाली और सीमित रसद आपूर्ति भंडार है, आत्मनिर्भरता आज

0: ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उसने एमटी काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान का समन्वय किया। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अटॉर्नी जनरल काउंसलर डॉक्टर हमाद सैफ अल शमसी ने कहा है कि फ्लाई दुबई की उड़ान FZ1073 की घटना की जांच में पाया गया है कि सह पायलट ने आतंकवादी कृत्य करने का प्रयास किया था। और जापान एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं अब जागृति शर्मा।
1: जापान एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने पुरुष क्रिकेट में पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया। T20 फाइनल में भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 19 रन से मात दी। भारत के 212 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान 196 रन ही बना सका। इससे पहले टॉस जीतकर भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 211 रन बनाए। इससे पहले इन खेलों में महिला क्रिकेट में भी भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। आज ही प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोत ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। कुल 81 पदकों में 19 स्वर्ण, 26 रजत और 36 कांस्य पदक शामिल हैं।
0: धन्यवाद जागृति इस तमाम जानकारी के लिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पशुपालन पर आधारित तंत्र विकसित कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे। हुरमूज जलडंगरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। और एशियाई खेलों में क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में शुरू होगा हमारा विशेष कार्यक्रम, जिसमें हमने आमंत्रित किया है जाने माने फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया जी को। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए।

0: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज लेकर आई हूं एक खास मेहमान। वो है जाने माने लेखक, निर्देशक और एक्टर तिग्मांशु धूलिया जी। तिग्मांशु जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं।
1: नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: तिग्मांशु धूलिया एक लेखक, निर्देशक और अभिनेता जिनकी कलम में यथार्थ की कहानियां हैं।
2: 28 बरियर सात वानिया गड्ढा पार करके सारा नेशनल चैंपियन मरे, कौन ने पूछा? ये तीन स्टेट की पुलिस को चकमा देगी, ये किडनैपिंग कर लाई तो पूरा देश से पान सिंह नाम होगा।
0: जिनके कैमरे में जिंदगी की सच्चाई है, अभिनय में किरदार की धड़कन, गैंग्स ऑफ वासीपुर, शाहिद, माझी द माउंटेन मैन और भी बहुत सारी फिल्में।
3: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
0: हासिल से हासिल हुआ कामयाबी का सफर।

सिंह तोमर ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार का स्वर्ण कमल दिलाया। फिर तो साहब बीवी और गैंगस्टर, शागिर्द, बुलेट राजा, राग देश, मिलन टॉकीज जैसी बहुत सारी फिल्में उनके निर्देशन और लेखन से आई। तो आइए एक बार फिर स्वागत करें हिमांशु धूलिया का। हिमांशु जी, विविध भारती का ये सब

0: 71वां स्थापना दिवस है और रेडियो से आपको बड़ा प्यार है, तो बताइए आज इस जश्न के मौके पर हमारे देश भर के श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे?
1: एक तो मुझको इस वर्षगांठ में बुलाने के लिए विविध भारती में बहुत बहुत मैं आभारी हूँ आप सबका। ये मेरी पहली बार नहीं है, मैं कई बार दो तीन बार पहले भी आ चुका हूँ।
0: जी जी,
1: तो पता नहीं क्यों आप लोग मुझे बार बार बुला लेती हैं, इसका पता नहीं क्या कारण है।
0: क्योंकि आपको रेडियो से बहुत प्यार है और हम सबको आपसे।
1: हाँ, तो रेडियो का ये है कि बचपन में जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ रेडियो ही था, ट्रांजिस्टर, जिसको फिर सोते वक्त तकिए बगल में लगा के सो जाते थे, और हवा महल, और फिर बहुत सारे बिना का गीत माला, और फिर उसके बाद प्रायोजित कार्यक्रम भी होने लगे, मोदी कॉन्टिनेंटल और ये वो टायर छाया गीत और तमाम। और तो एक तो भाषा अच्छी होती थी बहुत रेडियो की उस वक्त, उसने बहुत दिया
0: जी।
1: और हमें सिर्फ अपने वक्त के गानों से, अपने वक्त में जो हो रहा है सिर्फ उससे ही नहीं, जो पहले भी हो चुका है, जो जो जो, जो गाने या जो उस तरह के कल्चरल मोमेंट्स जो है, जो इतिहास से पहले भी दर्ज हो चुके हैं, उसके बारे में भी पता चलता था। संडे को कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते थे जो प्रायोजित होते थे
0: जी।
1: और बहुत बहुत इट वाज इट इज स्टिल अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन, बहुत कुछ सिखाया है रेडियो ने।
0: जी बिल्कुल। तो रेडियो सुनते सुनते आपने अपने भीतर सपना कैसे बुन लिया एक निर्देशक बनने का, एक्टर बनने का और लेखक बनने का, कैसे आपके भीतर बीज बन पा?
1: वो रेडियो की वजह से नहीं हुआ। रेडियो उस वक्त हम लोग जब छोटे थे तो हम इलाहाबाद में पढ़ा बड़ा हूँ मैं, तो हमारा एक बैंड भी होता था, तो फिर वो युवाणी में पहले तो जो बच्चों का कार्यक्रम होता था संडे को,
0: बाल संग नन्ही दुनिया वगैरह,
1: उसमें उस पे छोटे छोटे हम लोग जाते थे आकाशवाणी, तो वहाँ पे भैया भैया होते
0: बड़े भैया जी,
1: बड़े भैया जी और दीदी होती थी
0: जी जी,
1: और सारे बच्चे होते थे, कोई कविता सुनाता था, कोई कहानी सुनाता था, कुछ क्विज होता था, वहां से शुरुआत की मैंने। उसके बाद जब थोड़े बड़े हुए तो युवाणी में कई बार पार्टिसिपेट किया
0: जी,
1: और उसकी वजह से फिर थिएटर में घुस गया। मेरा एक जरिया बना, पहला जरिया तो रेडियो ही बना कि अपनी अपने अंदर थोड़ी बहुत जो भी कला थी बचपन में जो होती थी उसको एक्सप्रेस करने का प्लेटफॉर्म जो पहली बार मुझको मिला वो ये
0: जी रेडियो ही मिला।
1: बिल्कुल बिल्कुल रेडियो ही मिला।
0: और विविध भारती से हम सबको खासा लगाव रहा है, हम सबका बचपन ऐसे ही बीता है कि हम विविध भारती सुन सुन के अपने भीतर सपनों के बीज रोपते रहे। इलाहाबाद की बहुत सारी यादें हैं, हम तो सुनते हैं कि आप इलाहाबाद में ही रहते हैं, मुंबई में शूटिंग करते हैं, मुंबई आते हैं शूट करते हैं और इलाहाबाद चले जाते हैं, तो कोई कोई खास याद इस वक्त हो आपके जहन में तो आप साझा करना चाहेंगे विविध भारती के श्रोताओं से?
1: मैं जो भी हूँ शहर की वजह से हूँ
0: जी, क्या बात है।
1: वो शहर जो है, एक सैकड़ों बार ये बात बोल चुका हूँ कि मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मैं उस शहर में पैदा हुआ, और जिस तरह का माहौल मिला दिया उस शहर ने मुझे, तो वो उसी की वजह से मैं जो भी हूँ। और भी सभी लोग को अपना शहर पसंद आता है, मैं लेकिन इलाहाबाद बहुत खास है, तो जो लोग इलाहाबाद में नहीं भी पैदा हुए वो भी चुप हो जाते हैं जब मैं कहता हूँ कि मैं इलाहाबाद से, तो समझ जाते हैं वो लोग बैकफुट पर होना चाहिए।
0: जी बिल्कुल। इलाहाबाद संगम, नौका विहार, वहाँ का मन कामेश्वर मंदिर के किनारे से,
1: मैं कभी परसों ही लौटा इलाहाबाद से डुबकी लगा के।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: तो अभी भी जाते हैं तो संगम तीरे जाते हैं और
1: पितृपक्ष शुरू हो गए थे इसलिए गया था।
0: जी जी, इलाहाबाद की एक बड़ी मशहूर शूटिंग है, बहुत ही मशहूर फिल्म है जिसने आपको बहुत कुछ हासिल कराया, और आप फिर कहेंगे कि हमने बहुत कुछ बोला है, लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोता जो सुन रहे हैं, जो आपकी ये बातें नहीं जानते हैं, उनके लिए बताइए कि फिल्म हासिल जो आपकी कामयाब पहली फिल्म थी, उसके पहले तो आपने शुरुआत कर दी थी।
1: नहीं, हासिल मेरी पहली फीचर फिल्म हासिल ही थी।
0: अच्छा, तो हासिल से जुड़ी हुई कोई खास बात बताइए, शूटिंग से जुड़ी हुई। हमने सुना है कि फिल्म हासिल ने आपको कामयाबी दी और साथ में उसने आपको रुलाया भी था, वो रोने वाली कौन सी घटना है, जरा वो घटना बताइए हमें।
1: जैसा मैंने कहा, इलाहाबाद टेस्ट करता वो शहर, वो मुश्किल शहर है, अगर आप वहाँ पे किसी तरह का वृक्ष बोना चाहिए या पौधा बोना चाहिए, तो उस शहर की मट्टी पूछती है कि तुम्हारा औकात है करने की
0: जी,
1: तो
0: क्या बात है।
1: उसने, उस शहर ने मुझे टेस्ट किया, तो मैं तो पहली फिल्म थी, तो मैं बहुत एक जवान बहुत एक्साइटेड बच्चे की तरफ मैं शहर जा रहा हूँ शूटिंग करूंगा अपनी पहली फिल्म की। क्लाइमैक्स मैंने कुंडली में ऑलरेडी सेट कर दिया था, इसको मैं पहले शूट कर चुका था 2000

0: जो कुंभ मेला था,
1: जी
0: तो बट वहाँ के लोग जो थे उनको लगा कि मैं शहर को, वहाँ की यूनिवर्सिटी को एक बहुत गलत अंदाज से पेश कर रहा हूँ, उनको ऐसा लगा।
1: जी
0: तो मैं उनसे कहता रहा भाई रामायण में रावण भी है राम भी है, मैंने रावण के सीन पहले शूट कर लिए, तो उन्होंने वो देखा तो उनको लगा कि ये तो ऐसी भी फिल्म है।
1: जी
0: तो मेरा बड़ा विरोध हुआ वहाँ बहुत बुरी तरह, मतलब मुझे बहुत बेइज्जत किया गया और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि, और मैं मेरी पहली फिल्म थी तो उस तरह से लोग मुझे उस तरह से तुम जानते भी नहीं थे, अब कोई दिक्कत नहीं होती है। बट फिर मैंने कहा कि ये शहर मेरा टेस्ट ले रहा है, तो जिस दिन उन्होंने रोकी मेरी शूटिंग, मैं कहीं और जाके गुरिल्ला वॉरफेयर की तरह मैंने वहां शूटिंग की, मेरा एक भी दिन काम नहीं रोका, क्योंकि मुझे था कि काम रुकेगा प्रोड्यूसर रुकेगा अपने शहर लेके गए उसका नुकसान होगा, तो मेरा शूटिंग नहीं रुकनी चाहिए। तो मैं भी, अगर वो इलाहाबादी मेरे खिलाफ थे तो उनको नहीं पता मैं भी
1: एक
0: दूसरे
1: इलाहाबादी
0: इलाहाबादी से
1: है
0: ही लड़ रहा है,
1: जी
0: और वो हार गए सब। मेरी फिल्म रिलीज नहीं बनी, उससे सब कुछ दिया, सक्सेसफुल रही।
1: और लोगों ने बहुत सराहा, तो वो इसी वजह से रोए थे आप, मतलब ये
0: हाँ मैं रोया तो इसलिए था कि
1: रोने
0: मुझे वहां पे डीएम को दफ्तर बुला लिया,
1: जी
0: और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जितने पुराने पुराने दिग्गज सब एक्स प्रेसिडेंट या नेता जो भी थे वो आ गए डीएम के ऑफिस में, और उन्होंने कहा देखिए ये तो शूटिंग वाले हैं, ये तो चले जाएंगे, आपको यही रहना है,
1: जी जी
0: और ये लोग यात्री होटल में हैं तोड़ देंगे उसका शीशा उनकी गाड़ियां, उस लड़के को उसका सर मुंडवा के गधे पे बैठा के शहर में घुमाएंगे।
1: ओ बाप रे हाँ
0: तो मुझे तो आंसू आ गए मेरे,
1: हाँ
0: मैं अकेला और ये कम से कम 25-30 लोग डीम ऑफिस में, मुझको डिफेंड करने वाला कोई भी नहीं। तो फिर मैं रो दिया, फिर लेके मैं निकला बाहर, मैंने शूटिंग नहीं रोकी। इवेंचुअली एक देर बात हुई, मुझे फोन करने पड़ा,
1: तो मतलब आंसुओं की उस उन लड़ियों ने मुस्कान की और खुशी की मोती आपके जीवन में दिए
0: लगता तो
1: और
0: ऐसे ही है। हाँ
1: बहुत सारी मोतियां। तो यहाँ पर बात हासिल की चली है, तो क्या हासिल फिल्म का गाना सुन लिया जाए?
0: जी बिल्कुल करते हैं
1: और आपका पसंदीदा गीत है शायद ये,
0: जी।
1: सुनते हैं।

0: ये हासिल फिल्म का गाना था, उदित नारायण और साथियों की आवाजें थी, सोनाली वाजपेयी की आवाज थी साथ में, और जतिन ललित का संगीत था। और कुछ श्रोता भी तिग्मांशु जी लिख रहे हैं और आपसे सवाल भी पूछ रहे हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है कि ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन, ये चार शब्द सुबह सुबह घरों की खामोशी में पिछले 70 सालों से जीवन रस घोल रहे हैं। रेडियो की धीमी आवाज, शहनाई की मंगल धुन आज भी करोड़ों भारतवासी के हृदय में अपनी पहचान बनाए हुए। विविध भारती की खासियत यह है कि उसके दर्पण में हर किसी के सपनों की आहट, ख्वाहिश की झिलमिलाहट और दूर तक अपने साथ ले जाने की फितरत शुमार है। एक श्रोता की ओर से सवाल है आपसे, तो पहले मैं जतिन ललित के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे या मैं श्रोता का सवाल शामिल करूं?
1: सवाल ले लेते हैं पहले।
0: जी, हमारी एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि तिग्मांशु जी, आपने इरफान खान के साथ काफी फिल्में की हैं, उनके साथ फिल्म मेकिंग से संबंधित ऐसा कौन सा लम्हा है, कौन सा पल है जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है?
1: अब ऐसे मोमेंट्स और लम्हे तो बहुत सारे हुए, लेकिन जो खास बात हमारे कॉम्बिनेशन में ये थी कि आप जब भी किसी एक्टर के साथ काम करते हैं और ठीक है, आप उससे मिलते हैं पहली बार, उसको स्क्रिप्ट सुनाते हैं, तभी शायद आप जान पहचान होती है, और फिर शूटिंग के दौरान, लेकिन एक आप वो आपका दोस्त नहीं होता है।
0: जी जी,
1: वो एक साथ में एक फिल्म बनाने में जो एज ए टेक्नीशियन है वो एक्टर है, वैसा ही रिश्ता रहता है। और एक्टर्स क्योंकि थोड़े नाजुक मिजाज होता है इनका
0: जी,
1: तो आप उनको बहुत सहम के उनके साथ बिहेव करते हैं कि कहीं कुछ ना हो जाए। इरफान के साथ ये था कि मेरा दोस्त था वो, तो मैं दोस्त के साथ फिल्म बनाता था
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: मैं अकेला नहीं बना रहा होता था, मेरे साथ वो भी रहता था, उसके साथ मैं कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकता था, बाकी एक्टर के साथ मैं ये नहीं, ये फैसिलिटी नहीं है मेरी। तो उससे थोड़ी मेरी उसकी जो फिल्में रही है
0: जी,
1: वो थोड़ी ज्यादा लोगों के
0: संवेदनशील भी रही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो बात लोगों तक पहुंची है
0: जी। और इरफान से आपके पारिवारिक रिश्ते रहे हैं?
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो कुछ पारिवारिक इरफान की जो निजी बातें हैं, उनकी फिल्मों के अलावा कौन सी बात आपको याद आती है? आज इरफान नहीं है लेकिन हम सबके दिल के करीब हैं वो, वो ऐसा लगता है कि एक्टिंग नहीं, सामने बातचीत कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, मेरे भाई जैसा था, मेरा सबसे अच्छा दोस्त था वो, जो कि दूसरा है नहीं उसके जैसा कोई
0: जी।
1: तो उसके जाने से मैं अपने आप को कमजोर महसूस करता हूँ
0: जी,
1: और ये सच बात है, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। और पारिवारिक जो आपने कहा कि मतलब घर बिल्कुल पारिवारिक माहौल बन, मतलब कि मेरी हम, मैं, इरफान, हमारे और भी 2-3-4 दोस्त जो करीबी थे, ब्रिजेन काला, सब जो थे, पर बहुत मिला करते थे हम लोग सब बाप बने हैं, मतलब सब 5-6 महीने के गैप में सबके सब
0: जी जी,
1: मतलब सबकी बीवियां मोटी मोटी स्वीट और इरफानी, उनको गाड़ियों में बैठा के घुमाना या उनको जैसे चाट वाट के खाने का बहुत मन करता ना, तो वो सब इरफानी करता था
0: जी जी,
1: 3-4 महिलाओं को बिठा के और घुमाना, और फिर सबके 5 बच्चे हुए, सब 4-5 महीने 3 महीने के गैप में, तो इससे इतना बड़ा परिवार हो गया हमारा
0: जी। बिल्कुल, ब्रिजेंद्र काला का आपने नाम लिया, तो वो तो आपकी फिल्म में भी पत्रकार की भूमिका निभाई थी।
1: हाँ, मेरा कजन ब्रदर है,
0: तो जो पत्रकार की भूमिका थी वो बड़ी अलग किस्म की थी।
1: हाँ।
0: तो क्या सचमुच वो ऐसे हैं या उस फिल्म में आपने शामिल किया था, उनका कैरेक्टर गढ़ा था?
1: वो बहुत अच्छा एक्टर है, वो थिएटर का एक्टर है, बहुत पुराना एक्टर है, और उसको कुछ बताने की जरूरत मुझे खास पड़ी नहीं, थोड़ी बहुत उसकी ये कि दीवार पे लग के लिखो वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा, और डायरेक्टर किस काम का है, नहीं तो अपने आप में बहुत ही माहिर एक्टर है वो
0: जी जी। एक्टिंग की बात चली कि बहुत अच्छे एक्टर हैं, आप खुद भी तो बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत सारी फिल्में की हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर का जो किरदार है रामा धीर सिंह
1: जी जी,
0: तो वो तो नाम से ही मशहूर हो गया था, तो कैसे आप वहां पहुंचे, मतलब एक्टिंग आगे एक्टिंग?

0: ये तो नहीं करना चाहते हैं। मतलब
1: नहीं
0: हम लोग चाहते हैं कि आप डायरेक्ट बतौर डायरेक्टर फिल्में देते रहे।
1: एक्टिंग में मुझको मतलब वो मैं ऐसी पता नहीं क्यों अपना अनुराग और कश्यप और जो कास्टिंग डायरेक्टर है हमारे मुकेश चावड़ा साहब, उन्होंने पता नहीं क्या उनके जहन में आया कि ये रोल मुझसे कराना। मैं एक्टर तो था नहीं, मैंने एक्टर पे था, ड्रामा स्कूल में मैंने एक्टिंग की पढ़ाई की, लेकिन मैंने कभी एक्टिंग के परसों नहीं की। मैं फिल्म डायरेक्शन में आ गया, कम्प्लीटली अलग
0: जी जी
1: स्ट्रीम। उन्होंने बोला, मैंने हाँ कर दी। मुझको मालूम नहीं था कि इतना बड़ा रोल है ये वो, तो ऐसे मिल गया और मैंने कर दी। अब हमेशा एक्टिंग में, कल भी बच्चों के साथ एक वर्कशॉप किया था, मैंने कहा एक्टिंग में सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कॉन्फिडेंस। वो बहुत एक चीज नहीं होती, बहुत चीजों से आती है, थोड़ा एक्सपीरियंस से आती है, थोड़ा रिस्पेक्ट से आती है।
0: जी जी
1: तो आपने अच्छा काम कर लिया हो तो उससे आपको अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो मेरे पास कॉन्फिडेंस था कि मैं ऑलरेडी डायरेक्टर हो चुका था। तो उस यूनिट पे जब गया तो सब दोस्त थे, मनोज
0: जी जी
1: वाजपेयी हो, ये वो नवाज हो, तब सब दोस्त हैं।
0: जी
1: अनुराग कश्यप दोस्त है आपका, कैमरामैन को आप जानते हैं। तो मुझको कोई ऐसी जगह नहीं गई कि अरे मैं, अगर मैं अमिताभ बच्चन के साथ कर रहा तो शायद मैं घबराता थोड़ा। तो
0: तो
1: इसलिए वो हो गया कॉन्फिडेंस में और
0: जी
1: अच्छा हो
0: तो
1: गया।
0: वो जो थप्पड़ मारे थे आपने फटाफट, वो असली वाले थे कि नकली थे?
1: हाँ नहीं,
0: क्या
1: विपिन
0: हुआ था फिर उसके बाद? हाँ
1: वो विपिन को जो मारता वो कहाँ गाड़े थे उस वक्त। तो मैंने विपिन को बोला, विपिन मेरा सीनियर है नेशनल स्कूल ड्रामा से,
0: जी
1: मुझसे 2-3-4 साल सीनियर है। तो मैंने विपिन को बोला कि मैंने विपिन यार से जैसे हम लोग फिल्में मारते हैं वैसे मार दूं क्या? कि नहीं नहीं मारना मारना।
0: ओहो
1: मैंने कहा यार लग जाएगी, मेरा थोड़ा भारी हाथ है। कह नहीं नहीं कोई नहीं, हम लोग
0: अच्छा
1: तो कह दिया तो मैंने मार दिया।
0: फिर बाद में झगड़ा नहीं हुआ?
1: नहीं नहीं झगड़ा बिल्कुल नहीं
0: अच्छा
1: हुआ।
0: ओके। और बात एक्टिंग की चली है तो शाहरुख खान के साथ भी तो आपने एक फिल्म की है, दिल से?
1: हाँ डायलॉग्स लिखे थे उसके,
0: जी
1: तो मैं पूरी शूटिंग में था
0: जी
1: उस दिल से की। जी
0: तो शाहरुख खान के साथ लिखना आपके लिए एक अलग अनुभव रहा होगा, कुछ अनुभव
1: मैं
0: साझा कीजिए।
1: शाहरुख के लिए नहीं लिख रहा था, मैं मणि सर के लिए लिख रहा था, मणि रत्नम जी के लिए लिख रहा था। मैं लिख क्या रहा था, मैं सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा था एक्चुअली। में
0: जी
1: वो अंग्रेजी में बता देते थे कि ये चाहिए मुझको, और उस इतना समझ गया कि शाहरुख का किरदार ऐसा है, मनीषा का जो कैरेक्टर्स को इतना तो समझ थी मुझे,
0: जी
1: वो उस किरदार को समझते हुए मैंने उस तरह की हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया। और उस जो अंग्रेजी में मणि सर ने लिखा था उसको मैंने एक अच्छे ढंग से अडेप्ट कर लिया,
0: जी
1: बस
0: जी
1: ये काम था मेरा।
0: जी तो इस समय उनकी फिल्म का जिक्र चला है तो यहाँ पर आपको कौन सा गाना हम सुनवाए? हालांकि आपकी पसंदीदा गानों की हमने लिस्ट बनाई है तो बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? कुछ पुराने दौर में जाना चाहते हैं या नए दौर के गाने
1: हाँ
0: सुनना चाहते हैं?
1: ये तेरे मेरे सपने का गाना,
0: जी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज है, ये
1: जी
0: गाना हम सुन लें।
1: जी बिल्कुल।
0: नीरज के बोले और सचिन देव बर्मन का संगीत है और आपकी जिंदगी में गानों की बहुत दखल रही है तो इस गाने के बाद हम कुछ गीत की बात करेंगे, कुछ पुराने गानों की।

0: तिग्मांशु जी, ये गाना हमने आपकी ओर से नजर किया अपने श्रोताओं को, और आपकी एक लंबी यात्रा है, आपका परिवार इलाहाबादी है मन से, आप अक्सर कहा करते हैं, तो एक बार फिर इलाहाबाद की गलियों में चलते हैं और याद करते हैं आपकी माँ को। आपकी माँ से जुड़ी हुई कौन सी याद है जो आप साझा करेंगे? संस्कृत की प्रोफेसर थी वो?
1: जी जी मेरे पिताजी वकील थे, बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज भी बने। वो बहुत ज्यादा दिन जी नहीं पाए वो, बट मदर मेरी पढ़ाती थी और दोनों चले जाते थे अपने वो हाईकोर्ट या अपने स्कूल कॉलेज पढ़ाने के लिए। हम तीन भाई थे तो हमारे घर में था आनंद कुकर, और वो चीज मैंने किसी और घर में देखी नहीं।
0: अच्छा,
1: वो इतनी खूबसूरत चीज थी कि जैसे जिसके टिफिन बॉक्स होता ना, जैसे
0: जिसमें
1: हम लंच लेके ऑफिस में लोग जाते हैं, दो तीन उसमें वो होते हैं दाल चावल डब्बे होते हैं, उसमें बड़ा सा एल्युमिनियम का था और नीचे उसमें आप कोयला जला दीजिए।
0: अच्छा
1: हाँ, और इसलिए बड़ा स्मोकी फ्लेवर भी होता था, और जो नीचे उसमें दाल रख लीजिए, फिर थोड़ा चावल रख दीजिए, फिर जो सब्जी उबल जाए घर आए, सीधे काटे छोंक दे बन गई, उस तरह की आलू या परवल या इस तरह की चीजें आप ऊपर रख दीजिए। और हम लोग आते थे 1:30-2 बजे स्कूल से, तो और फट से बना बना खाना मिलता है गरम गरम। तो ये आनंद कुकर बहुत ही ब्यूटीफुल चीज थी, वो पता नहीं गायब होगी, लोगों को रखना चाहिए अपने घर में। उसको एक तो फ्लेवर भी खाने का बहुत अच्छा आता है,
0: जी जी जी बिल्कुल,
1: कोयले में पका हुआ एक तो इधर ही बचता है और डिलीशियस खाना बनता है। तो मगर फिर आती थी इलाहाबाद की गर्मी, तो आपको पता ही, आप भी वही गए हैं,
0: बिल्कुल भीषण गर्मी,
1: भयंकर गर्मी। तो तब वो रिक्शे में आती थी, एक रिक्शा वाला बेचारा उनको ढो के सबको, तब तभी रिक्शा ही चलता था
0: जी।
1: तो वो हमारा फर्स्ट फ्लोर पे घर था, नए नए फ्लैट सिस्टम इलाहाबाद में आया था, तो हमारे घर वालों ने खरीद लिया था एक फ्लैट, आज भी है वो फ्लैट। तो दिन में आती थी 3:30-3 बजे में, भीषण गर्मी, और रिक्शे वाले को ऊपर ले आता, रिक्शे वाला पसीने से लथपथ होता था
0: बिल्कुल।
1: लेकिन उनसे मैंने एक चीज की, जब वो आती थी मतलब कहते रिक्शे वाले को पानी पिलाओ, पानी पिलाने के पहले उसको गुड़ दो।
0: क्या बात है, ये वहाँ का चलन है।
1: मैं बड़ा सा एक ढेला गुड़ का उसको रिक्शे वाले को देता था, वो पहले बेचारा गुड़ खाता था और फिर वो ठंडा पानी पीता था और बहुत दुआएं लेके जाता था। ये हम हर रोज होता था।
0: क्या बात है,
1: तो ये चीज मुझे बहुत याद है अपनी मदर की कि
0: ये सिखाया। और आपकी फिल्मों को जब उन्होंने देखा, निर्देशन किया, तो उन फिल्मों में कुछ बारीकियां वो समझाती थी?
1: उनको प्रॉब्लम होती मेरी फिल्मों से, क्योंकि बहुत लड़ाई झगड़ा खून गोलियां बहुत चलती है, तो उनको इस बात का वो उनको वो है, वो एतराज करती है इस पे कैसी फिल्म।

0: तो आपने बात मानी नहीं उनकी, एक कोई प्रेम कहानी लेकर आइए और बड़ी संवेदनशील जहाँ प्रेम आलाप हो, जो इलाहाबाद की गलियों में होता है।
1: हाँ नहीं, पान सिंह तो मैं जैसी किंग को भी अच्छी लगी थी, उसमें अवार्ड कभी मिल जाता है तो बहुत खुश हो जाती है वो।
0: किसे नहीं अच्छा लगता है। पान सिंह तोमर एक बेहतरीन फिल्म थी, हम सब ने देखी है, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और सचमुच इरफान की एक्टिंग, जब भी पान सिंह तोमर की बात चलती है तो इरफान का जिक्र ना हो ये हो ही नहीं सकता। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने तो ये इलाहाबाद का जिक्र किया, माँ का जिक्र किया, और आपके भाई भी अभी जज हैं इलाहाबाद में।
1: अब वो सुप्रीम कोर्ट में जज थे और लास्ट ईयर अगस्त में रिटायर कर गया
0: जी। तो वो जो परिवार इतना आपका क्या कहते हैं इलाहाबाद में जो भाषा कहते हैं दबंगई, तो वो दबंगई आपकी फिल्मों में भी कहीं दिखता है, आप लाते हैं। और छोटी शहरों के जो कस्बे के संवाद होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं, किरदार होते हैं, वो आपकी फिल्मों में खूब दिखाई देते हैं। तो वो क्या इलाहाबाद की देन है कि आपके निर्देशक की कलाबाजी है?
1: नहीं, बचपन से मुझे फिल्में ही वो पसंद थी जिसमें थोड़े से इस तरह के एलिमेंट्स हों, जो किसी के आदेश का पालन नहीं करते वाले किरदार जो होते हैं, जो किसी से दब के नहीं रहते हैं, क्योंकि इलाहाबादियों में ही बात होती है, दब के नहीं रह सकता किसी से। तो पता नहीं क्या बात थी, मुझे फिल्में भी ऐसी अच्छी लगती थी, मुझे लव स्टोरीज पसंद भी नहीं आती थी। तो ये टेस्ट वाली बात है कि आपको कौन सा खाना पसंद है, उसी तरह की चीज थी। मुझको थोड़ा जिसमें पोस्टर में अगर पिस्टल है तो वो पिक्चर देखनी देखनी है, इस तरह का था। वही चीज चली आ रही है तो मैं बनाता भी वैसी फिल्म में हूँ। लव स्टोरी मैंने शायद एक ही बनाई, वो चली हुई नहीं।
0: वो जी, और उसमें वो गाना भी खूब मशहूर हुआ था, आंखें भी दिल के जुबान
1: तो
0: हासिल का है। और साहब बीबी गैंगस्टर में भी खूब गोलियां चली हैं।
1: जी, जी, जी।
0: तो साहब बीबी गैंगस्टर से जुड़ी कुछ बात हमारे श्रोताओं को बताइए। शूटिंग के समय किस तरह का माहौल आप रचते हैं, आपका जो निर्देशक का?
1: साहब बीबी के मैंने तीन पार्ट बनाए थे, तो जो पहला पार्ट बन रहा था जब बनाया था तो हमें खास कोई काम नहीं था किसी के पास। पान सिंह तोमर बन चुकी थी और फिल्म रिलीज नहीं हो रही थी। और मैं तो वेट करता था कि पिक्चर रिलीज होगी, अगर कुछ हुआ तो फिर अगली फिल्म मिलेगी, ऐसे ही चलता करियर। और फिल्म रिलीज ही नहीं कर रहे थे वो लोग, हम ऑफिस जाते थे, कुछ नहीं करते थे, फिल्में देखते थे और टीटी खेलते थे, चले आते थे। तो ऑफिस में कई लोग आते थे, रणदीप हुड्डा भी आता था, वो भी टीटी खेलता था हम लोगों के साथ, और जिमी तो खैर दोस्त तो आता ही था। तो फिर सोच, मतलब उसी वक्त ये डिजिटल नेगेटिव गया और डिजिटल आया हिंदुस्तान में, जब डिजिटल पे शूट करते हैं ना सब।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर गैस से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने तक के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय के गठन से सर्वाधिक लाभ पाने वालों में पशुपालक भी शामिल होंगे। गृह मंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।

0: गृहमंत्री ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में समावेशिता ही मजबूती की बुनियाद है। श्री राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का विषय था बदलते दौर में मजबूती। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आम सहमति, समावेशिता और परिस्थितियों के अनुरूप नीतियां बनाने से लोकतंत्र और विकास साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं तथा विकास की मजबूत नींव तैयार हो सकती है। उन्होंने कहा कि वास्तविक मजबूती तभी है जब कोई नागरिक, उद्यम या क्षेत्र पीछे ना छूटे। हॉर्मुज जलडमरूमध्य में कुवैत ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उसने MT काजीमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान का समन्वय किया। भारतीय दूतावास ने अभियान के दौरान निरंतर सहयोग और सहायता के लिए ओमान के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात कार्यक्रम की पहली कड़ी वर्ष 2014 में आज ही की तारीख को विजयादशमी के दिन प्रसारित हुई थी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करते हैं। और खेलों में 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे और आखिरी मुकाबले में चंडीगढ़ में वेस्टइंडीज के साथ भारत टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13वें ओवर में 2 विकेट पर 39 रन बना लिए थे। अंशुल कंबोज इस मैच से एक दिवसीय क्रिकेट में अपना पदार्पण कर रहे हैं, जबकि नीतीश रेड्डी को टीम में वापस शामिल किया गया है। मोहम्मद सिराज भी इस श्रृंखला का अपना पहला मैच खेल रहे हैं। पहले 2 मैच आसानी से जीतने के बाद भारत श्रृंखला को 3-0 से अपने नाम करने की कोशिश करेगा। उधर जापान में जारी एशियाई खेलों में क्रिकेट स्पर्धा में भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक भी जीत लिया है। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम महूद ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण जीता। नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में धीरज बोमा देवरा को हराकर कांस्य पदक जीता। और पुरुष हॉकी के सेमीफाइनल में अब से कुछ देर बाद भारतीय टीम का सामना मलेशिया से होगा। भारत फिलहाल पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गया है, जिसमें 81 पदक शामिल हैं और 19 स्वर्ण, 26 रजत तथा 36 कांस्य पदक इनमें शामिल हैं। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 24 घंटे के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों, गुजरात और मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के धीमे पड़ने के अनुकूल होने की संभावना है।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has said that Narendra Modi government is developing a complete ecosystem around cattle rearing, from converting cow dung into biogas and organic fertilizer to processing dairy products and providing market access to give a new boost to the rural economy. Addressing the state-level Gopalak Sambelan in Bhopal today, Mr. Shah said cattle rearers would be among those benefiting the most from the formation of the Ministry of Cooperation. On criminal justice reforms, Mr. Shah said that after full implementation of the Bharatiya Nyaya Sahita, cases should be disposed of within 3 years from the registration of an FIR to the Supreme Court. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India is building a network of free trade relationships that could eventually cover nearly 75 to 80% of the world's economies. Addressing an event organized by the U.S. Indian Community Foundation in Chicago, Mr. Goyal said India has significantly expanded its trade negotiations in recent years, with several more talks underway. He said the growing network would give companies operating from India access to a much larger international market.
2: Before 2014, our free trade agreements were mostly with smaller countries whose combined GDP was around $10 trillion. In the last 4 to 4.5 years, we have decided to enter into FTAs with 38 more developed countries with a combined GDP of around $60 trillion.
1: Vice President C.P. Radhakrishnan emphasized that economic resilience cannot be separated from social resilience and that inclusion is the foundation of resilience in a rapidly changing world. Mr. Radhakrishnan made these remarks during the inaugural address at the 5th Kautilya Economic Enclave in New Delhi today. The Vice President said that true resilience lies in ensuring that no citizen, enterprise or region is left behind and called for collective efforts towards building a Viksit Bharat by 2047. Reserve Bank of India RBI Governor Sanjay Malhotra said that price and financial stability cannot be seen in isolation from geopolitical and geoeconomic fragmentation, trade restrictions, supply shocks and technological disruption. The governor said this while addressing the 5th Kautilya Economic Enclave in New Delhi today. The RBI governor said that Indian financial system is very resilient, supported by healthy balance sheets and NBFCs.
3: Strong macroeconomic fundamentals and a resilient financial system provide confidence in our ability to withstand this lingering shock. We are taking further measures to enhance our resilience to such shocks. These include diversification of import sources, enhanced sufficiency in energy and other critical resources, building strategic petroleum reserves, accelerating energy transition, enhancing the competitiveness of domestic manufacturing.
1: Five Indian nationals were rescued after a Kuwait flood tanker was struck by a projectile in the Strait of Hormuz. The Indian Embassy in Oman said in a social media post today that it coordinated the rescue of the five Indians on board the MT Kazima 3, who were safely brought ashore. The mission thanked Omani authorities for their continued support and assistance during the rescue operation. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Arunachal Pradesh for the day. The IMD has also said that conditions are likely to become favorable for further withdrawal of southwest monsoon from remaining parts of Punjab, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, most parts of Gujarat and Madhya Pradesh. In men's hockey, defending champions India will take on Malaysia with the two teams meeting at the Gifu Prefectural Green Stadium with eyes on the gold medal and an LA 2028 Olympics quota. The match will start at 3:30 p.m. In Asian Games, India won the gold medal in men's cricket, defeating arch rivals Pakistan in T20 cricket final at Nishin, Japan today. India won the final by 19 runs. Chasing India's target of 212 runs, Pakistan managed to score only 196 for 6 in their stipulated 20 overs. With this, India has secured its 81st Asian Games medal, including 19th gold to the tally. India has also won 26 silver medals and 36 bronze medals already. And that is the end of this news bulletin.

0: Ya, kashwani tura, na sima sani chigini kola chini ya tamne ki tamba zi mini chi sauna. Tele station ni wata ke pa ve pa tene ding tang tang program rako kina son baksa. Apsa station wata pa hindi ya ra ingash kabo rango ding tang tang sumay rango kina son ak tamba na ha. Nda kaya sima na tang sumay sumay rango ba yanan bon han, di mana sima FM ni ding tang tang program rako kina skan ak tamba gen. Plakon chung baksa oni na matalang ya na kashwani tura.
1: अपने लिखे को एक निर्देशक के रूप में खारिज भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं, कोई ऐसे उदाहरण देके बताइए हमारे श्रोताओं को कि
2: लिखना तो एक्चुअली सबसे बड़ी जब, क्योंकि मैं लिखता भी सारी फिल्म खुद की, वो सारी जितना भी अब तक काम किया मैंने खुद ही लिखा है सब, तो वो एक बहुत ही पैनी और उससे स्क्रूटनी से होकर गुजरता है। बहुत आलसी लेखक भी हूँ मैं, मुझे जल्दी भी नहीं लिखा जाता।
1: अच्छा,
2: बहुत टाइम लेता हूँ मैं, तो मैं मुझको ऐसा तो नहीं लगा कि मैंने कभी कोई खराब, ऐसा नहीं, मेरी सारी पिक्चर, बहुत सारी पिक्चर फ्लॉप ही है मेरी,
1: ये आप कह रहे हैं ना।
2: नहीं, सच बात है, उसमें उसमें क्या है, हर पिक्चर तो हिट, किसी भी सक्सेसफुल डायरेक्टर का जिसका भी आप बड़े से बड़े के नाम ले, पूरे फिल्मोग्राफी में तीन चार पिक्चरें होती है जो अच्छी होती है
1: जी,
2: बड़े से बड़े की। बहुत एक्सेप्शनल कोई केस हो गया तो उसकी बात छोड़ देते हैं, बिमल रॉय को हटा देते हैं इस फेरिस से, राज कपूर साहब और गुरुदत्त इन जैसे लोगों को हटा देते हैं, और लोग तो लेजेंड्स हैं, उन लोग उन्होंने ग्रामर लिखा है सिनेमा का, हिंदी सिनेमा का, तो उनसे तो हम कभी देख भी नहीं सकते, सिर्फ नतमस्तक हो सकते हैं उनके सामने। बाकी जो और लोग जिन पे हम लोग जैसे डायरेक्टर आते हैं, तो उन सबकी फेरिस में देखिएगा तो

0: पिक्चर हैं तो चार ही पिक्चर होंगी जो सही पड़ी
1: जी
0: होंगी, बाकी तो आदमी फेल
1: जी
0: करता ही करता है।
1: आपकी ये बात बड़ी मन भाई कि इतनी ईमानदारी से अपनी फिल्मों की समीक्षा खुद ही कर रहे हैं, और पुराने दौर के गोल्डन इरा के निर्देशकों की बात की और फिल्मों की बात की। तो पुरानी फिल्में आप देखते हैं, उनके
0: बिल्कुल,
1: गाने
0: मैं तो
1: सुनते
0: आजकल
1: हैं
0: पुरानी ही देखता हूँ,
1: जी?
0: मैं तो आजकल पुरानी ही फिल्में ही देखता हूँ। कई फिल्में मिस हो, सब पिक्चर तो अच्छी नहीं देखी, कई पिक्चर मिसिंग भी है, कहीं कहा जाती, तो मैं यूट्यूब में या खोज खाज के वो फिल्में देखता हूँ।
1: कौन कौन सी फिल्में देखी इन दिनों?
0: मैंने अभी ख्वाजा अहमद अब्बास की एक दो फिल्में देखी जो कि नहीं देखी थी, देव साहब की एक दो फिल्में थी जो मैंने नहीं देखी थी, और जैसे मैंने बहुत अच्छी पिक्चर जो मैंने नहीं देखी थी, इसका नाम था शंकर हुसैन,
1: जी
0: जिसके
1: जी
0: जिसके गाने बहुत
1: बहुत ही
0: ही
1: खूबसूरत है।
0: खूबसूरत गाने, तो मैं गाने तो बहुत सुने थे, पिक्चर नहीं देखी थी, वो देखी मैंने। तो ऐसे ऐसे कई फिल्में हैं जो कि मैं देखता रहता हूँ, हिंदी की भी और अंग्रेजी की भी।
1: जुड़ते हैं, क्या दखल रखते हैं आपकी जिंदगी में पुराने गाने?
0: अब गानों के साथ म्यूजिक के साथ, जब हम इलाहाबाद में थे तो हमारा बैंड था तो अंग्रेजी गाने बजाते थे हम लोग,
1: जी
0: मैं रिदम गिटार बजाता था और गाता था,
1: जी
0: और मैं गाता ठीक ठाक था, तो मुझे अब सब जगह जितने इलाहाबाद के लेवल पे और फिर यूनिवर्सिटी लेवल में कॉम्पिटिशन या सब फेस्टिवल्स होते थे सब स्टूडेंट्स का अपना,
1: जी
0: फिर
1: जी
0: तो उन फेस्टिवल में मुझको हमेशा बेस्ट वेस्टर्न सोलो मेल अवार्ड हमेशा मिलता था, तो मैंने चैंपियन था मैं
1: क्या
0: उसका।
1: बात है भाई, ये
0: तो
1: तो
0: जी, मैं
1: आपने
0: गिटार कभी बहुत अच्छा बजा नहीं पाया, रिदम बजा लेता था, लेकिन मैं अच्छा लीड वहां से
1: बताओ
0: सिलसिला शुरू हुआ म्यूजिक का, और
1: सर।
0: फिर मेरे जो मैंने वही किया जो मेरे दोनों बड़े भाइयों ने किया, तो उन्हीं के
1: जी
0: नक्शे कदम पे मैं चला हूँ। बड़े भाई साहब मेरे वो डिफेंस में चले गए, वो नेवी में थे, रिटायर कर गए, बट अभी भी उनका आर्ट और पोइट्री वो परसू करते रहते हैं गोवा में। बीच वाले भाई साहब वो जुडिशरी में चले गए, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस, जज बने, भी चीफ जस्टिस बने गुवाहाटी हाई कोर्ट के, भी सुप्रीम कोर्ट के जज बने, वो उनकी पूरी जिंदगी जुडिशरी, लेकिन वो भी मुझसे अगर अगर वो फिल्मों में आते तो शायद मुझसे बेटर फिल्में कर बनते वो।
1: जी
0: अब ये था, मैं छोटा था, हम लोगों में एज डिफरेंस बहुत है, 7-8 साल का डिफरेंस है भाइयों में मेरे और उनमें, तो उन्होंने छोटे भाई को प्रमोट किया कि करने दो उसको, तो उनकी बदौलत मैं बढ़ गया आगे।
1: जी जी जी तो अब यहाँ पर कौन

0: दिग्वांशु जी विविध भारती के सजीव प्रसारण में हमारे सामने बैठे हैं और आज विविध भारती का जश्न हम मना रहे हैं। 70वां स्थापना दिवस है ये। और दिग्वांशु जी, आपने छोटे पर्दे के लिए भी बहुत काम किया है, लिखा भी है और एक्टिंग, आप कहते हैं कि एक्टिंग नहीं करना चाहते हैं लेकिन एक्टिंग भी की है। छोटा पर्दा बड़ा पर्दा दोनों आपको कौन सा ज्यादा आकर्षित करता है?
1: हमेशा से बड़ा पर्दा ही आकर्षित किया है। छोटा पर्दा भी इसलिए कर रहे थे बिकॉज घर भी चलाना था तो, और उस जब भी है, लेकिन हमने मैंने जब टीवी किया और मेरे साथ के जितने भी और हमारी क्लास के जितने डायरेक्टर हैं मेरी मेरी कक्षा के, हम लोग हम उम्र हैं सब थोड़े थोड़े, तो सबने टीवी किया। पर उस वक्त टेलीविजन अच्छा होता था, बोला हफ्ते में एक एपिसोड आता था, आप उसको बनाते थे आराम से 3-4 दिन में एक एपिसोड। अब उसके बाद वो डेली सोप हो गया, एक दिन में आधे दिन

0: बनाई है, तो उसकी क्वालिटी गिरती चली गई, बट एक्चुअली शायद उस तरह के टेलीविजन की डिमांड थी। तो हमने जब टीवी करा था तो अच्छा टीवी होता था, उसके बाद फिर जाना तो फिल्मों की ही तरफ था।
1: जी जी, तो आप अपने वाले दूरदर्शन की बात कीजिए, जब इलाहाबाद में रह रहे थे या उत्तराखंड में रह रहे थे, तो दूरदर्शन, एक दूरदर्शन के जो कार्यक्रम होते थे, जो धारावाहिक होते थे, वो आज भी हम सबको याद हैं, तो वो कुछ यादें आप ताजा कीजिए।
0: बहुत सारे थे, कितने थे, मतलब बाप रे, श्याम बेनेगल जी का आता था, फिर भारत एक खोज जाता था,
1: फिल्मों का इंतजार होता था,
0: फिल्मों का हर संडे को इंतजार होता था, इलेक्शन होते थे, हम लोग छोटे थे, हम इलेक्शन से हमको लेने देना नहीं, इलेक्शन के टाइम में फिल्में खूब दिखाई जाती थी, दिन में तीन तीन चार चार पिक्चर, तो उसका हम लोग घर में बड़े लोगों को चुनाव के नतीजे पे, तो हम लोग को था कि पिक्चर कौन सी देखी जाए, तो तब तो बहुत अच्छा टीवी था, बहुत ही खूबसूरत था।
1: जी जी, तो पढ़ाई जब आप करते थे तो घर वाले कहते थे, रोकते थे, मतलब कि कोई ऐसी फिल्म देख रहे हैं कि क्यों देख रहे हो फिल्म, पढ़ नहीं रहे हो, ऐसे कोई याद?
0: इलाहाबाद में टीवी ना बहुत बाद में आया,
1: एशियाड जब शुरू हुआ था,
0: तब आया था 82 में
1: जी,
0: तो और जब आया था तो सबके घरों में टीवी होता भी नहीं था, धीरे धीरे आने लगा लोगों के यहाँ, तो जब तक टीवी आया तब तक हम लोग के घर वालों के हाथ के बाहर हो चुके थे, बड़े हो गए थे थोड़े, तो लेकिन उतना टीवी के सामने मैंने, छोटे छोटे जब होते तब बहुत बड़ा नहीं, उसके बाद नहीं था, आउटडोर एक्टिविटी हम लोग ज्यादा, जैसे मैंने कहा थिएटर करते थे, तो कहीं बजाना है फंक्शन में इधर उधर, तो घर के बाहर ही जाओ लेते थे, तो टीवी देखना इतना होता नहीं था।
1: थिएटर के लिए जब आपने शुरुआत की, मतलब थिएटर की ओर गए, एनएसडी किया, तो घर वाले आपके इतने सब पढ़े लिखे, माँ प्रोफेसर, पिताजी जज, तो कहा नहीं कि कहाँ जा रहे हो फिल्मी दुनिया में? अमूमन ये सुना है कि डायरेक्टर, मतलब इस दुनिया में जो आना चाहते हैं उन्हें कहा जाता है पढ़ो लिखो कुछ बनो, इस दुनिया में मत जाओ, तो आप
0: कभी कभी नहीं मना किया, कभी इनफैक्ट हमेशा प्रोत्साहित ही किया, कभी नहीं, कभी भी नहीं। मेरे मदर फादर दोनों फिल्में खूब, खुद भी बहुत फिल्में देखते थे, और शायद मेरे छोटा, सबसे छोटा होने का मुझे, मैंने उसका नाजायज फायदा नहीं उठाया, तो मुझे डांटा भी कम जाता था,
1: दुलारे बेटे थे,
0: दुलारा बेटा था जैसे मेरे बड़े भाइयों में 7-8 साल का डिफरेंस था, तो जो भी होता था उनके साथ उधर मुझे कुछ नहीं कहते थे, तो जब तक मैं एनएसडी में गया तब तक तो माय फादर हैड पास्ड अवे, गुजर गए थे, लेकिन मदर ने हमेशा कि जाओ।
1: तो मुंबई आए शुरुआत में, तो मुंबई की शुरुआती संघर्ष किस तरह के थे?
0: मैंने बिल्कुल कोई संघर्ष संघर्ष नहीं किया, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैंने बड़ा पाव खाया है और लोकल ट्रेन में चढ़ा हूँ, लेकिन ऐसे कुछ
1: तकलीफों से नहीं गुजरा,
0: बिल्कुल नहीं। मैं बहुत इस मामले में अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि घर वाला, मेरे भाई, मेरे मदर फादर मुझको ऐसे मिले जो मुझको इस तरह की लाइन में भी पहले तो एनकरेज किया कि म्यूजिक बजाओ, करो थिएटर, कभी नहीं रोका। उसके बाद ड्रामा स्कूल गया था, मदर ने भी कभी नहीं रोका कि जाओ, मेरा पहले अटेम्प्ट में ही हो गया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया ड्रामा स्कूल में
1: जी।
0: तो और उसके बाद मैं दिल्ली में रहकर मैं फिल्में कर रहा था, उस वक्त होता नहीं, बैंडिट क्वीन भी थी शेखर जी के साथ में, मुंबई आ गए थे, जो मुंबई आया तो मैं ऑलरेडी शेखर कपूर का असिस्टेंट था, तो मुझे कुछ स्ट्रगल करने की, पैसा नहीं मिलता था वहाँ, लेकिन कहने को होता था कि आप शेखर कपूर के असिस्टेंट हैं, तो उनका नाम सब जानते थे, रिश्तेदार भी सब जानते थे, अच्छा शेखर कपूर, बाकी रिलेटिव नाम तो लोगों ने सुने नहीं थे, शेखर कपूर का नाम सब जानते थे, क्योंकि वो डिगजांग मॉडल भी हुआ करते थे, तो लोगों को पता उनके असिस्टेंट हो, ठीक है
1: जी।
0: तो ऐसे करते करते मैं काम करने लगा, मैं जब जहाँ आया तो पहले मैं सागर अपने बड़े भाई साहब के यहाँ रहा, वो नेवी में थे, ये जो इधर INS हमला जाते हैं
1: जी जी,
0: वहाँ रहते थे, तो मैं सागर उनके साथ था, तो कोई दिक्कत नहीं, नेवी में आप है, बढ़िया सा कमरा है, तब नेवल फैसिलिटी, नो प्रॉब्लम।
1: तो हमारे जो युवा श्रोता हैं जो फिल्मी दुनिया में आना चाहते हैं, उन्हें कुछ कहिए कि क्या हो तो मुंबई आए स्ट्रगल करने के लिए, और क्या ना हो तो ना आए।
0: ये मैंने कल ही कुछ बच्चों को ही बोला कि जिंदगी में इस बात का एहसास अगर हो जाए कि मैं कर पाऊंगा कि हो पाएगा मुझसे कि नहीं हो पाएगा,
1: बिल्कुल
0: इसका एहसास आपको अगर हो गया ना, वो सबसे बड़ी चीज है, तब तो आपको लगे कि बॉस मैं कर पाऊंगा, तब तो अगर बोलेंगे कहीं भी लग रहा है कि नहीं कर सकता तो एकदम पीछे मिल जाओ, उसमें कोई ऐसा नहीं कि आप डर के भाग गए, आप रणछोड़ नहीं कहलाओगे, आपने अच्छा करेक्ट डिसीजन। मैंने जब एनएसडी में, मैं थर्ड सेकेंड ईयर में था, मुझको पता चल गया था मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ,

0: डिसाइड किया कि मैं एक्टिंग नहीं करूंगा, और मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था
1: जी जी
0: नहीं तो मैं एक्टिंग करके आता तो मुझको बालाजी के एक आध सीरियल में कुछ एक आध रोल वोल करके जिंदगी खत्म हो जाती
1: जी बिल्कुल। और आप तो हमें आपकी इतनी सारी फिल्में कैसे मिलती हैं तो, और आपकी एक फिल्म है साहब बीवी और गैंगस्टर जिसका जिक्र श्रोता भी बार बार कर रहे हैं और हमने भी किया, उसका एक गाना है जो हम श्रोताओं को सुनवाना चाहते हैं, उस गाने से जुड़ी हुई कोई बात बताइए, रिकॉर्डिंग से जुड़ी हुई, किस तरह से रिकॉर्ड हुआ गाना?
0: ये पार्ट टू का गाना है, थी इसको पीयूष भाई ने गाया, पीयूष मिश्रा जी ने बहुत खूबसूरत गाया, और छोटा संदीप ने इसको कंपोज किया, लेकिन कंपोज करते हुए ये ध्यान में रखते हुए कि, और संदीप नाथ एक बहुत अच्छे लिरिक राइटर है, इलाहाबाद से भी उनका कनेक्शन है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बराबर से कई गाने पांच सिंह तोमर के भी गाने लिखे संदीप नाथ ने, तो ये सोच के कि ये भाई गाना जो है गाएंगे पीयूष भाई, तो उसी तरह से गाने का मीटर व्यूटर की जो उनको जो उनके इमेज के साथ जाता है, लोग पीयूष भाई को ऑन स्क्रीन भी देखा लोगों ने, तो आप सुनाइए गाना, बहुत बहुत मजेदार और बहुत बढ़िया गाना है, इसके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं
1: जी, सुनते हैं ये गाना।
2: पंच है हर स्वार्थ का ये मंच है, यहाँ रक्त से मिटते है शोक

0: कुछ है थोड़े में एक दोष है, ईशाही शब्द कोश है।
1: आप भी राजा हैं और हम भी, मगर आपका खून आलसी हो चुका है, हमारा नहीं।

0: आप चाहते हो ना कि जंग हो, होगी, कम आसान होगी, आपकी कसम।
1: तो ये गाना हमने सुनवाया तिग्मांशु जी आपकी फिल्म का गाना, और आपकी ओर से हमने नजर किया। और हमारे एक श्रोता ने पूछा है आपसे कि आप जो लीक से हटकर फिल्में बनाते हैं, तो क्या आगे भी हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी फिल्में बनती रहेंगी आप द्वारा या अन्य फिल्म मेकर्स के द्वारा भी?
2: ऐसी को बहुत लीक से हटके नहीं बनाता हूँ, बोला मेरी फिल्मों की पूरी मेरी पूरी फिल्मोग्राफी देखिएगा तो मैं बहुत ही कमर्शियल जो चलने वाली फिल्में होती है ना उसी गली की फिल्म बनाता हूँ। कहने का थोड़ा अंदाज मेरा फर्क है सिर्फ, जिसको बोलते हैं एस्थेटिक्स, वो मेरा बाकियों से फर्क है।
1: जी,
2: बाकी
1: जी।
2: मैं कोई लीक, मैं लीक से बिल्कुल हटना नहीं चाहता। मैंने ये फिल्म फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हैज टू बी एंटरटेनिंग। वो कोई बोरिंग स्लो पेस्ट वो सब चीजें मुझे मैंने देखता भी नहीं, मुझे अच्छी भी लगती है, तभी बनाऊंगा मैं।
1: जी जी।
2: तो वो एस्थेटिक्स जो है वो ओवर द इयर्स, एक तो आपके खुद की जिंदगी का एक्सपीरियंस से आता है, और फिर एक होता है आपका एक्वायर्ड विजडम, जिससे मैं आपसे मिलूंगा, आपकी आपने कोई बात कही मुझसे, मैंने आपसे बात को महसूस लगा कि आप अच्छी बात करो, किसी दोस्त से, किसी नए आदमी से मिली, कोई फिल्म देख के, कोई नॉवल पढ़ के, आपकी जो एक्वायर्ड विजडम है वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। एक्सपीरियंस तो जिंदगी में एक बार आके फिर टिक जाता है, फिर तो ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं कर पाते आप।
1: जी जी बिल्कुल।
2: आप एक सेट लाइफ में जीने लगते हो, आप बहुत कभी कभी एक्सपीरियंस करते हो, लेकिन जो एक्वायर्ड विजडम है आपको बाहर चीजों से मिलती है उसका जो स्रोत है वो कभी कम नहीं होना चाहिए। वही आपके सारी कला, आप किस तरह से कहानी कहना चाहते हो, सबके पीछे वही है।
1: जी बिल्कुल।
2: तो जो एक्सपीरियंस करते रहेंगे वो फिल्म बनाते रहेंगे, जिन्होंने एक्सपीरियंस करना छोड़ दिया कि मैं हो गया बॉस गॉडफादर, अब तो मेरे बड़ा कोई है नहीं, उसका पतन निश्चित है।
1: जी बिल्कुल।

0: 2026 की फिल्म है घमासान, आपकी फिल्म,
1: जी।
0: तो उसमें कौन सा ऐसा प्रसंग है शूटिंग में जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहा या कठिन रहा, या इस फिल्म से जुड़ी हुई कोई बात हमारे श्रोताओं को बताइए?
1: कठिन तो कुछ नहीं होता।
0: आपके लिए तो बिल्कुल
1: नहीं नहीं ऐसी बात नहीं
0: नहीं।
1: है। अब जो काम आप कर रहे हैं, आपने किया, आपको मालूम है कैसा होना है। वहां पे कठिनाई होती है अगर आप ऐसी जगह पे, जैसे हमने वो घमासान की शूटिंग हमने की चित्रकूट के एरिया में, जहाँ पे रामचंद्र जी ने 14 साल में 11.5 साल अपने वनवास का वहां बिताया,
0: जी
1: और ये पूरा जो बुंदेलखंड का इलाका, बांदा वाला, रीवा, सतना, मध्य प्रदेश, यूपी, इलाहाबाद के भी बहुत नजदीक है।
0: जी जी
1: तो वहां पे उनका जंगल में हमने शूटिंग कर रहे थे। सड़क बहुत दूर नहीं थी, वहां पुलिस भी थी हमारे साथ, वो बैठे रहते थे अपने जीप में। तो शूट कर रहे थे हम लोग, सडनली मैं आगे और लोकेशन देखते हैं जंगल में, थोड़ा सा एक दो असिस्टेंट के साथ बढ़ ही आगे जाते, मैंने देखा कि ये पेड़ से एक मोटे सा नायलॉन का जो तार, ऐसे रस्सी होती है, वो ऐसे लटकी हुई थी। नीचे कुछ टूटी पट्टी चप्पल दो पड़ी हुई थी, और उस नायलॉन के तार से कुछ फटे फूटे कपड़े ऐसे लटके हुए थे। ऐसा लग रहा था कि आदमी था या तो खा गए जंगली जानवर, ये क्या हुआ, सब मरी, या तो मार के लटकाया गया है या खुदकुशी की है किसी ने। और देख के मैं सन्न रह गया, मैंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था कि आदमी लटका होगा, उसको जंगली जानवर खा गए होंगे, आई डोंट नो क्या हुआ था, लेकिन बाकी उसका सब कुछ पड़ा था। चप्पल भी नीचे थी, कपड़े स्ट्रिंग्स लटके हुए थे, और क्योंकि नायलॉन की थी वो टूटी भी नहीं थी, पक्की सी थी। अरे देख के ऐसे दहशत हो गई सबको कि ये क्या देख रहे हैं हम। तो उसका ये एक्सपीरियंस था। फिर हमने वहां देखा, वहां पे एक स्पॉटेड डीर था, बड़ा सा मेल, उसको जंगली कुत्तों ने दौड़ा के हमारी आंखों के सामने मारा जंगल में। तो ये सब चीजें वहाँ थोड़ा एक्साइटिंग हो जाती, फिल्म मेकिंग तो मजा आ जाता आपको।
0: जी जी डर डराना भी लगता है लेकिन रोमांचक भी होता है। तो यहाँ क्या घमासान फिल्म का ही गाना सुनना है?
1: जी सुनाइए, धाए धाए
0: सुनते हैं।

0: हिमांशु जी की घमासान फिल्म का गाना था और काफी चर्चित है इन दिनों, ये गाना भी खूब बज रहा है और वायरल भी हो रहा है, जिसे हम वायरल कहना कहते हैं इंस्टा और फेसबुक के युग में। अरशद वारसी हैं इसमें और प्रतीक गांधी हैं, इनसे जुड़ी हुई कोई खास बात बताना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को?
1: नहीं, इस फिल्म के बारे में तो मैंने बताया, मैंने वहां पे एक लटका हुआ आदमी के मतलब अस्थि पंजर दिखाई दिया।
0: अब हमें बताइए कि एक लेखक और निर्देशक पढ़ता भी बहुत है और पढ़ना आपको बहुत कुछ सिखाता भी है, जानकारी भी देता है, तिग्मांशु धूलिया जी क्या पढ़ते हैं अपनी फिल्मों के नजरिए से कि एक अच्छी फिल्म दे दर्शकों?
1: मैं फिक्शन ऑलमोस्ट नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं और चीजें पढ़ता हूँ, मतलब बायोग्राफीज और एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क या पॉलिटिक्स पे किसी ने या जियो पॉलिटिक्स पे किताबें, इस पे मैं ज्यादा इन चीज़ों को पढ़ता हूँ। फिल्मों पे कुछ कागज किसी ने कुछ अच्छा नई किताब कुछ अच्छी दिखी तो पढ़ता हूँ, लेकिन फिक्शन मैं उस तरह से नहीं पढ़ता हूँ, मुझे थोड़ा बोरिंग से लगता है फिक्शन बहुत।
0: जी
1: मैं और तीन तीन चार चार किताबें एक साथ पढ़ता हूँ, मैं किसी का एक चैप्टर किसी का दूसरा चैप्टर ऐसे पढ़ता हूँ। हाँ,
0: और अब बताइए कि चलते चलते हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश दीजिए और आपकी आने वाली फिल्म, आने वाला प्रोजेक्ट क्या है?
1: आने वाला प्रोजेक्ट, मैं एक फिल्म बना

0: क्यों, जिस जो कि आपको तो पता ही होगा, उदय प्रकाश जी जो हिंदी के बहुत महान लेखक
1: जी
0: हैं,
1: जी बिल्कुल.
0: उनकी एक कहानी है दिल्ली की दीवार, उसको मैंने अडेप्ट किया है। उसका नाम है वो फिर कभी दिखा नहीं,
1: क्या बात है.
0: और उसको बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जब वही है, जब भी आप कुछ नया अलग तरह का काम करने की कोशिश करते हैं तो आपके सामने बहुत सारी अड़चनें आती है, तो उन अड़चनों का सामना करते हुए मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी फिल्म शुरू कर दूँ।
1: जी. और अब हम हमारे श्रोताओं के लिए कुछ पैगाम दीजिए
0: मैं
1: जो.
0: क्या पैगाम दूंगा, मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ पैगाम दूँ। सब लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, सब अपने संघर्षों से गुजर रहे हैं, उनके ऊपर मैं उनको पैगाम दूंगा। जीते चलो, जिंदाबाद रहो, देश को आगे बढ़ाओ, सब लोग मिलके इस खूबसूरत दिन में, आज अभी भारती के 70 ईयर्स पूरे हुए हैं, उसको याद करते हुए विविध भारती के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहे जिंदगी में।
1: जी, आपकी पसंद का ये आखिरी गाने की झलक.

0: ये श्रोताओं से भी ये कहना है तिग्वांशु जी, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और ये 1.5 घंटे कैसे बीत गए हमें तो पता ही नहीं चला। हमारे श्रोता भी यही कह रहे हैं कि इतनी जल्दी वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। आप फिर आइए, वादा कीजिए कि विविध भारती के स्टूडियो में आप फिर आएंगे और आज के इस जश्न में आप शामिल हुए। पूरे विविध भारती परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने का। मैं जरूर आऊंगा, जल्दी मिलेंगे
0: जी। शुक्रिया।

दूसरे नमस्कार एक गायिका जिनका नाम था सुषमा श्रेष्ठ।

0: के नाम से वो खूब मशहूर हुई। आज बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आइए सुनते हैं तीसरा और अंतिम भाग। सुषमा जी, आज फिर एक बार आपका हम स्वागत करते हैं और चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि अब सुषमा श्रेष्ठ के उस दौर से निकलकर मैं पूर्णिमा जी से बात करने अब आना चाहती हूँ, है ना?
1: स्वागत है आपका।
0: बिल्कुल, मुझे अब अपने आप को देखना है कि मेरे सामने पूर्णिमा बैठी है जो एक इस तरह के गाने जिन्होंने गाए और हमें नचा दिया है। तो सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने का ये सफर क्या था, कैसा था और क्यों था?
1: देखिए, सुषमा श्रेष्ठ एक बाल गायिका की बतौर एक बाल गायिका ही जानी जाती थी। पता है मंदाकिनी जी, मैंने जब वो गाना गाया था ना, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, तब मैं 18-20 के बीच, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन चोपड़ा साहब की जिद थी कि नहीं, मुझे तो सुषमा ही चाहिए। रविंद्र जैन जी ने बुलाया था,
0: तो जब
1: बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि ट्रांसमिशन हुआ क्यों। मुझे इतना अड लगता था ना मंदाकिनी जी, मुझे बहुत अटपटा सा लग रहा था कि क्या है, मम्मी को अंदर बुलाना चाहिए, वो सब रबिश। इतनी बड़ी मैं ना, बहुत अड लग रहा था मुझे, तो इसका कुछ तो करना चाहिए, पर क्या करें समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि हमारी हमारे परिवार में, हमारा जो घर, जिस जिन संस्कारों से मैं बड़ी हुई, हम बिल्कुल ना वैसे फिल्मी नहीं है, बहुत सीधे साधे लोग हैं, मिडिल क्लास, और मुझे गर्व है इस बात का। अभी भी मैं मिडिल क्लास ही हूँ, वो दादर का घर ही मुझे पसंद आता है, शिवाजी पार्क। खैर, तो इसके बाद 10 साल का एक बहुत लंबा एक गैप पाया, क्योंकि ना मैं बच्चों में मेरी गिनती हो रही थी ना बड़ों,
0: और ये दौर बड़ा मुश्किल होता है कलाकार के लिए,
1: बहुत मुश्किल। फिर शादी भी हो गई, मेरा बेटा पैदा हुआ बड़ा, उसके बाद मेरा एक दौर जिंगल्स का शुरू हुआ, रेडियो स्पॉट्स, है ना, नाथन अंकल हुआ करते थे, वैद्यनाथन जी, जो फिर डैडी के बहुत अच्छे दोस्त, वो मुझे बुलाने लगे। करते करते फिर दिन में 5-6 जिंगल्स, 6-7 जिंगल्स, में जिंगल क्वीन, मैं, कविता दीदी, हम मिलकर कुछ वो गाती थी, कुछ मैं। करते करते वक्त बीतता गया, फिर एक दौर आया, आपको अगर याद होगा, कवर वर्जन्स का।
0: जी बिल्कुल,
1: है ना,
0: बिल्कुल,
1: कवर वर्जन्स गाने लगी। तो जब पहला कवर वर्जन का की रिकॉर्डिंग तो खत्म हो गई, वो गणपति के भजन से, पर पता कैसे थे, ये सिंधी जो कम्युनिटी है ना, वो तो सालों से, मुझे लगता पीढ़ियों से उनके यहाँ पे ये चलन है कि वो लोग फिल्मी गानों पर ही, ये जैसे मेरे स्कूल में एक लड़की थी जब मैं 8वीं 9वीं में थी, वो भी सिंधी थी, तब वो गाना चला था झुमका गिरा रे, तो वो मुझे सुनाती थी कि हम लोग जा रहे हैं, वो बाबा जी का जो लंगर होता था उनका, तो मैं भी गाऊंगी। कौन सा गाएगी तू, मैं पूछ, अरे वो रे झुमका गिरा रे ना, उस पर ही, सतगुरु आए हैं हम लोगों को समझाने, सतगुरु। तो ये तो उनका एक सिस्टम ही था, है ना। तो उन लोगों ने ये आइडिया इसमें डाल दिया, टिप्स कंपनी वालों ने, वो भी सिंधी, कि हम फिल्म, वो ही हम करेंगे फिल्मी गानों पे, हम गणपति के भजन, जैसे रमैया वस्ता वैया, तो उस पे किया मोरया गजानना, मोरया गजानना, सुख दे सकल जना, ऐसे
0: जी।
1: अब वो कैसेट उसके रिलीज के से जरा पहले उनकी जितनी टीम थी, जो भी, उन सबको ऐसा लगा कि अब तो सुषमा श्रेष्ठ नाम देने से कहीं लोग ये ना समझे कि ये बच्चों के गानों का एल्बम है।
0: जी
1: होता है, हमें ये पता नहीं चलता मंदाकिनी जी, पर वो लोग तो मार्केट स्टडी करते हैं ना, तो क्यों ना हम तुम्हें एक नए तरीके से इंट्रोड्यूस करें। सुषमा श्रेष्ठ इस नाम को हम नहीं रखेंगे, तुम्हें एक नया नाम, नए इमेज के साथ इंट्रोड्यूस करते। तो पूर्णिमा नाम मैंने ही सजेस्ट किया था, क्योंकि ये मेरे जन्म पत्रिका
0: जी,
1: उसमें
0: जी,
1: मेरा नाम पूर्णिमा है, तो मैंने कहा पूर्णिमा कैसा रहेगा, सबको अच्छा लगा। अब सिर्फ वाद विवाद इस बात पे हुआ कि पूर्णिमा श्रेष्ठा रखे या क्या, तो वहां मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन लिया कि नहीं, क्योंकि वो चाह रहे थे पूर्णिमा श्रेष्ठा, क्यों, बाकी जो टीम था उनका, कि सुषमा श्रेष्ठा, पूर्णिमा श्रेष्ठा, एकदम से क्लिक हो जाएगा।
0: हाँ, हाँ।
1: पर ठीक है, अब ईगो हासिल जहाँ आ गए उसका तो कोई इलाज ही नहीं मुमकिन
2: हाँ,
1: है जी।
2: हाँ.
1: तो रमेश तो मेरा भाई है, जो रमेश तौरानी जी हैं,
2: जी.
1: मैं कई सालों से उससे राखी बांध रही। मैंने कहा छोड़ सुषमा छोड़, पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करने का, जो है बाबू अपन ऐसे ही करेंगे। तो पूर्णिमा नाम वैसे करके उन्होंने बहुत, मैं कहूंगी टिप्स ने उस वक्त इतना मुझे, मतलब स्क्रीन में 2 पेज का कवरेज इंट्रोड्यूस उन्होंने ही मुझे, अपनी पहली फिल्म उन्होंने जो बनाई थी बाहरों की मंजिल, राम लक्ष्मण जी का म्यूजिक था वो गाना। अगर आपको मिले प्लीज बजाइए गाना, अमित दा के साथ गाना था, उत्तम भैया ही अरेंजर थे
2: जी।
1: तुम ताना ना ताना तर तर ये दिल है दीवाना।

0: भी हमें उन दिनों की याद दिला दे जब नई नई पूर्णिमा गायिका
1: जी
0: के रूप में हमारे सामने आई थी।
1: जी
0: बहुत समय बाद हमें पता चला था कि अरे ये तो सुषमा श्रेष्ठ है जो पूर्णिमा के नाम से गाती है। तो बाल गायिका से वयस्क गायिका के रूप में खुद को दोबारा स्थापित करने में सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या थी?
1: अपनी एक जगह बनाना, क्योंकि मैं जब आई मंदाकिनी जी तब मुझसे पहले 4-5 सिंगर्स एस्टेब्लिश्ड हो चुकी थी। अनुराधा दीदी, कविता दीदी, अलका, साधना, तो मुझे अपनी एक पहचान बनानी।
0: बिल्कुल,
1: तब मैंने कहा ना, वो बचपन से ही वो खेला कर रहा था मेरे दिमाग में, और मैंने सोचा बहुत स्ट्रैटेजिक एक मूव था ये, एक ऐसा नहीं है कि पर चांस हो गया। मैंने सोचा कि आशा जी के गाने तो मैं गाती ही हूँ, तो आशा जी, शमशाद बेगम जी और गीता दत्त जी को, उनकी तीनों की स्टाइल्स को मिलाकर मैंने कोशिश की कि मैं अपनी एक स्टाइल
0: बनाऊ।
1: एक हद तक मैं कामयाब रही उस।
0: बहुत हद तक आप कामयाब रही, एक हद तक नहीं। आपने कहा ना कि जो बचपन में आपने गाना गाया था उस टोन को आपने ध्यान रखकर अपनी उस आवाज को बनाए रखा,
1: जी
0: जो तू तू तू तू में हमें दिखाई दी थी, है ना? और उसके बाद आपके हर गाने में लगभग वो एक गले की एक अलग सी आती है, जैसे मैं क्या कहूँ, और वो बहुत अट्रैक्ट करती है कि ये पूर्णिमा जी है, ये पूर्णिमा है।
1: ये बात मैं, मुझे सुनकर आज बहुत अच्छा लगा। मंदाकिनी जी, ये अबू साहब ने, उस्ताद ने सिखाया था कि आप कितने भी मतलब रागधारी कराओ, कुछ भी करो, बस आवाजों में वो एक आवाज जिसे आप पहचान सको कि ये फला की आवाज है, वो आवाज जो पहचान जाता है आपकी श्रोता, आपके श्रोता
0: जो भी
1: उस आवाज को पहचान ले, तो आप समझ लो कि आप कामयाब
0: सफल हो गए हैं।
1: तो हाँ, इसमें मैं कहूंगी कि मैं कामयाब रही हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि मेरी आवाज कहीं भी पहचानने में आ जाती है,
0: एक जो गले में एक अलग रेंज आपकी आती है उन गानों को गाने में,
1: जी
0: वो पूर्णिमा ही गाती
1: हूँ,
0: वो पूर्णिमा ही गाती है।
1: ये बात मैं मानती हूँ, नहीं तो कुदरत मुझे माफ नहीं करेगा।
0: बिल्कुल, तो एक चाइल्ड आर्टिस्ट की जो मीठी आवाज से लेकर 90 के दशक के कमर्शियल ट्रैक तक आपकी आवाज के टेक्सचर में जो बदलाव आया था, उसे आपने कैसे साधा था, ये थोड़ा हम जानना चाहेंगे।

0: मैच्योर एज इन आपको मतलब एक बाल गायिका से मैच्योर सिंगर?
1: हाँ।
0: मंदाकिनी जी, मुझे लगता है मेरी आवाज कभी मैच्योर हुई ही नहीं, और शायद वो ही मेरा एक यूएसपी है
1: जी। लेकिन वो कमर्शियलाइज होती थोड़ा सा,
0: हाँ,
1: एक अलग तरह से मोल्ड हो गई।
0: मैं कहूंगी आवाज में एक गहरापन तो नहीं बोलूंगी, एक ब्रॉडनेस आई।
1: यस, चुलबुलापन जो आवाज,
0: हाँ, वो एक वक्त के साथ आता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा चुलबुलापन तो पहले भी था, लेकिन पहले क्या संकोच करती थी, संकोच बहुत करती थी, क्योंकि बड़े दिग्गजों के साथ काम किया, ये तो एहसास था कि भाई ये कौन है। हालांकि ये एहसास नहीं था शायद कि ये कौन है, ये नहीं था, पर ये नहीं,
1: वो बाल मन था,
0: है ना। लेकिन जहां तक आप अगर मेरे वॉइस का अदरवाइज टेक्सचर की बात करेंगे, तो अभी अभी भी मैंने एक गाना गाया है एक मराठी फिल्म के लिए,
1: जी, जी।
0: उत्तम सिंह जी, उत्तम भैया का म्यूजिक है उसमें, कब्बशी फिल्म का नाम है। तो मुझे मुझे गर्व ही होता है इस बात का कि मुझे कॉल कर कर के लोग ये कहते हैं कि तुम तो अभी भी 30 साल की तुम्हारी आवाज लगती
1: जी।
0: तो टेक्सचर आज सच नहीं बदला, हाँ, लेकिन क्या होता है उम्र के साथ हमारा शरीर जैसे फैलता है ना, तो हमारे वोकल कॉर्ड्स भी तो फैलते हैं
1: जी।
0: तो वो थोड़ा सा फैलाव, थोड़ी सी गहराई और जरूर आ गई आवाज में। यस, और चुलबुलापन आप जिसे कह रहे हो ना मंदाकिनी जी, वो तो बहुत एक सोची समझी साजिश थी, प्रोफेशनल साजिश थी
1: जी,
0: कि भाई
1: जी।
0: मुझे ये करना पड़ेगा अगर मुझे अपनी एक अलग पहचान करनी
1: बनानी है तो।
0: जी,
1: तो एक ऐसा प्रश्न जो मेरे मन में आ रहा है कि क्या कभी पूर्णिमा सुषमा सेठ से बात करती है जब उसे पीछे छोड़ आई है और बहुत आगे आ गई है, बहुत आगे, तो ये दोनों सखियां क्या बात करती होंगी?
0: सुषमा से पूर्णिमा यही कहती है कि तुम पहले पूर्णिमा क्यों नहीं बनी तुम अगर पहले पूर्णिमा बनती तो तुम पंचम दा को एक अलग कैसे बोलूं, मुझे वो शब्द नहीं
1: जी,
0: आ रहा
1: जी,
0: पर
1: जी, एक अलग रूप से जी पाती
0: उनके संगीत को,
1: हाँ।
0: संगीत को। यस, क्योंकि मैं आज जितना उनके संगीत को समझती हूँ, शायद वो जो मुझे समझाना चाह रहे थे, सिर्फ उनके संगीत को नहीं, बहुतों के, जिन जिन लोगों के साथ मैंने काम किया।
1: सुषमा से पूर्णिमा का जो सफर है, यानी क्या हुआ तेरा वादा जैसे इमोशनल गीत से लेकर तारा, ये जो एनर्जेटिक और डांस ट्रैक का जो गीत है, ये सफर आपके लिए कितना अलग था वहां तक पहुंचने का?
0: वैसे म्यूजिकली अगर आप पूछें तो अलग नहीं था, अगर आप निजी तौर पर पूछें तो बहुत कठिन, बहुत जिल्लतें सहनी पड़ी, बहुत कैसे बोलो पछाड़ खाई। वो लोग जो एक वक्त सुषमा श्रेष्ठा के साथ काम करने के लिए तड़पते थे, वो सुषमा श्रेष्ठा से आंखें चुराने लगे, है ना। हाँ, ये भी देखा है, ये दौर भी देखा है, मतलब देखकर अनदेखा सा करना, है ना, क्योंकि मेरे आगे बहुत से, मेरे पीछे वाले मेरे आगे निकल चुके थे, है ना। तो हम कभी अगर साथ किसी स्टूडियो में जिंगल गा रहे हैं, या अगर ऐसा इक्का दुक्का कोई गाना मुझे मिल गया और हम साथ गा रहे हैं या साथ मिले वो सिंगर हम सिंगर, तो मुझसे बात ना करना, उन्हीं से बात करते रहना, क्योंकि वो ज्यादा कामयाब थी उस वक्त, है ना
1: जी।
0: तो ये सारी जिल्लतें सही, लेकिन एक बात बोलू मंदाकिनी जी, बुरा लगकर भी मैंने उसमें से सीख सीखी
1: जी,
0: क्योंकि बचपन में भी ये था कि जब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पहला गाना जब गाया तो एक वो आर्टिस्ट हैं जिनसे जिनसे इसी तरह का बर्ताव सहना पड़ा कि बच्चे गा रहे हैं, वो पहचान करा रहे हैं सब लोग के, तो उन्होंने हमारी तरफ देखा भी नहीं
1: जी।
0: लेकिन मैं इतनी सेंसिटिव थी तब से, और अब जब मैंने ये सब कुछ सहा पूर्णिमा बनने से पहले, तो अब एक कसम खाई थी कि मेरे बाद आने वाले बच्चों के साथ मैं कभी ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी,
1: बिल्कुल,
0: मैं हमेशा उनकी पीठ थपथपाऊंगी, उनको बहुत प्यार दूंगी, और वो कुछ भी हो पर उनके होने का एहसास
1: उनको
0: उन्हें दिलाऊंगी,
1: बहुत
0: जरूरी,
1: एक बड़ा मन ही ये बात
0: वो बहुत
1: कह सकता है कि मेरे साथ जो बीता मैं आगे आने वाली पीढ़ी के साथ वैसा बिल्कुल नहीं करेंगे। पूर्णिमा जी, एक गीत और सुन लेते हैं आपके पास।
0: शाम है धुआं धुआं।

आरजू झूठ है कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

0: का
1: तो पूर्णिमा बनते ही पहला गाना यही था, तू तू तू तू
0: पहला
1: तारा।
0: तो वो था तुम ताना नाना
1: जी
0: ताना,
1: जी
0: फिर आया बरसात में जब आएगा सावन का महीना। ऐसा है मंदाकिनी जी, आप पूछ रही थी कि सुषमा श्रेष्ठा से पूर्णिमा तक का जो एक सफर मेरा, वो 10 साल जो मैंने बेकारी में बिताए,
1: जी
0: तो वो ऐसे बोले बेकार नहीं जाने दिए। वो 10 साल मैं बहुत सोचती थी और बहुत स्ट्रेटजीज करती थी कि मुझे, पर पता नहीं क्यों मुझे ये एक खुद एतमादी थी हमेशा से कि मैं फिर से आऊंगी।
1: जी
0: दिस इज नॉट द एंड, मैं आऊंगी, किसी ना किसी तरह मुझे एक मौका फिर से मिलेगा जरूर। क्योंकि मेरी तो पूरी जिंदगी ही एक आप अगर कहें तो एक अजूबा ही रहा है ना।
1: जी
0: पिताजी के देहांत के बाद 11 अप्रैल को उनकी उनका देहांत हुआ, 12 अप्रैल को मेरा एक शो था बहुत बड़ा, वहां जाकर एक 10-11 साल का बच्चा जाकर गाए और ऐसा गाए कि लोगों को रुला दे, है ना। तो ये तो एक एक कुदरत का करिश्मा ही है। मेरी पूरी जिंदगी ही, मैं हमेशा कहती हूँ, एक करिश्मा रहा।

0: तो मैं जानती थी कि कुदरत इतनी आसानी से तो मुझे लुप्त नहीं होने देगा, है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: सही कहा।
0: तो उसके बाद मैंने माँ का गाना जब गाया, तब इतना मैं पॉलिश्ड नहीं थी, इतनी पॉलिश्ड नहीं थी, मेरे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। लेकिन उसके बाद वो गाना डेविड धवन जी ने सुना कहीं, और उन्होंने जब मांग की कि मुझे ये सिंगर चाहिए मेरे फिल्म के लिए, तो तुतु तारों के लिए बुलाया गया,
1: बिल्कुल।
0: है ना। तो उसमें फिर मैंने तुतु तु तु तु तारा के वक्त मैंने थोड़ा और अपने आप को पॉलिश करने की कोशिश की। हालांकि गाना पहले रिकॉर्ड हुआ था, वो मैं हूँ गांव के गोरे बाबू रंग लहरे वाला, मुझको भी चलना सिखला, वो वाला। तो उसमें मैंने सोचा कि जूही जी के लिए है, तो उनका थोड़ा सा वो एंग्लिसाइज टोन है ना, तो आप अगर ध्यान से गाना सुनेंगे ना, तो मैंने वो एक्सपेरिमेंट वहां
1: जी
0: करके,
1: जी
0: मैं हूँ गांव के गोरे बाबू रंग लहरे और गीता दत्त जी का स्टाइल, जरा मुझको भी चलना सिखा दे तू, तो वो बहुत कामयाब
1: कामयाब
0: रहा।
1: हुआ।
0: फिर दूसरा गाना तुतु तारा आ गया, उसमें और थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो कर दो हमें माफ, तुम कर दो ना, वो सब, तो वो कामयाब हुआ। तो
1: जी
0: मैंने सोचा अब इसी इसमें इसी को पकड़ के हमको चलना है।

0: हर एक सिंगर के अपने प्लस माइनस पॉइंट्स होते
1: बिल्कुल
0: हैं ना, कोई माने ना माने।
1: हाँ हाँ
0: मैं समझ गई थी कि मेरा प्लस पॉइंट, मेरा यूएसपी है मेरा, मेरे एक्सप्रेशंस। मैं गाने में जो एक्सप्रेशंस देती हूँ और दे सकती हूँ, वो शायद ही कोई दे सके।
1: जी
0: सॉरी, मैं
1: नहीं
0: खुद से ये कह रही हूँ आज,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन इतने सालों बाद इतना तो जायज है। तो बस मैंने उसी पे काम किया। वो मेरा जो एक स्ट्रेंथ मेरी थी, मेरा प्लस पॉइंट था, उसी को लेकर मैं आगे चली। फिर तो बहुत अच्छे गाने मिले। तू मेरा हीरो नंबर वन बजाइएगा जरूर, शाम है धुआं धुआं,
1: बात है, क्या
0: वो तो
1: बात।
0: मेरा सबसे ऑल टाइम फेवरेट, और मेरे श्रोताओं का भी। चने के खेत में, चने के खेत में मुझे बताया गया कि माधुरी जी के

0: इस गाने को वो डिलीट नहीं कर सकती हैं अपनी जिंदगी से और अपने परफॉर्मेंसेस,
1: बिल्कुल सही कहा
0: है ना।
1: आपने। और
0: ये गाना उनके करियर का एक अहम हिस्सा है, जैसे मेरे मेरे करियर का भी। तो बस फिर गाने मिलते गए मंदाकिनी जी, फिर मैं
1: आगे बढ़ते गए और हम लोगों का दिल आप जीतती रही। और देखिए ना, हीरो नंबर वन,
0: जी
1: बीवी नंबर वन, मैं तो रस्ते से जा रही
0: बापरे
1: थी,
0: बाप,
1: है ना, कुली नंबर वन, मतलब गोविंदा और करिश्मा कपूर की जो जोड़ी पर्दे पर दिखाई देती है।
0: हाँ एक अजीब बात है कि
1: हाँ,
0: करिश्मा को मेरी आवाज,
1: गजब
0: इनफैक्ट
1: गजब।
0: काजोल को भी, वो मिस्टर लोभा लोभा, मुझे ये बताया गया कि अजय देवगन जी ने काजोल से पूछा कि तुम श्योर हो तुमने नहीं गाया ना
1: क्या
0: ये
1: बात
0: किसी
1: है।
0: और ने गाया ना, तुम पूर्णिमा जी ने गाया ना, तुमने तो
1: हाँ,
0: खुद नहीं गाया, मतलब इतने वो
1: हूबहू,
0: एक्सप्रेशंस,
1: हाँ हूबहू
0: मैं खुद भी मतलब शौक में
1: जी।
0: हूं।
1: और उसके बाद हीरो नंबर वन का गाना सुनना,
0: हाँ
1: कितना
0: बाप
1: तो,
0: रे,
1: मतलब उस गाने के बाद तो अगर पैर नहीं थिरके तो बेकार है, वो आदमी इंसान ही
0: उसमें भी
1: बेकार है।
0: देखिए करिश्मा
1: हाँ
0: का एक एक अजीब, एक उनका कैसे बताऊं मैं, बोलने का एक तरीका ना, वो सिर्फ मैंने, कुछ लोगों ने मुझे चिढ़ाया भी उस पे, पर वो कमबख्त जानते ही नहीं है कि मैंने क्या किया है, छोड़िए।
1: जी
0: खैर, तो सोना कितना सोना, तो ये म्यूजिक डायरेक्टर्स नहीं सिखाते हमें, वो हम पर छोड़ देते हैं,
1: जी जी जी
0: सुन ये जैसा तेरा मन, हे सुन जरा सुन क्या कहते हैं दीवाने दिल की धड़कन, तुम मेरा तुम मेरा तुम मेरा, हाँ तुम मेरा हीरो नंबर वन।
1: क्या बात
0: तो ये
1: है।
0: सब हमारे इनपुट्स होते
1: जी
0: हैं,
1: बिल्कुल।
0: हीरो तुम मेरा हीरो, ये हमारे इनपुट्स होते हैं, सब सब मिलते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, सिंगर, इवन हमारे साजिंदे, तब जाकर एक गाना बनता है।
1: लेकिन एक गायिका या गायक के खुद के जो IQ है उसका जो
0: बहुत कम,
1: है ना, वो होता है कि वो जिस हीरोइन के लिए गाना गा
0: यकीनन
1: रही है
0: यकीनन
1: उसे पकड़े, मतलब
0: यकीनन,
1: लगता है कि करिश्मा कपूर ही गाना गा रही
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: बिल्कुल,
1: ये चीजें सबसे बड़ी गायिका को, एक कलाकार को आगे तक
0: यहाँ
1: ले जाती है।
0: कुदरत कुछ साथ देता है,
1: हाँ
0: पर कुदरत भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो खुद से कुदरत की तरफ अपना कदम
1: तो
0: बढ़ाते हैं,
1: आप
0: ये
1: कहें
0: मेरा
1: तो यही
0: मानना।
1: गाना सुन लिया जाए, थोड़ा थिरक
0: बिल्कुल,
1: लिया जाए,
0: प्लीज
1: हमारे
0: प्लीज
1: श्रोता भी थिरक लेंगे। तो
0: प्लीज
1: आइए सुनते हैं।

0: आज पूर्णिमा पूर्णिमा के नाम से जानी
1: बहुत
0: जाती है।
1: बहुत मुश्किल है मंदा किनी जी, यहाँ
0: बहुत
1: सेकेंड इनिंग्स मिलना, सेकेंड इनिंग्स, थर्ड इनिंग्स अभी भी गा रही हूँ।
0: जी
1: यहाँ तो आप आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और
0: सही
1: आज
0: कहा
1: ये
0: आपने।
1: सोशल मीडिया में मैं बिल्कुल ही एक्टिव नहीं हूँ, मुझे होना भी नहीं, मुझे पसंद नहीं, फिर भी आप जैसे लोग इतनी इज्जत से बुला रहे हैं।
0: जी
1: जिस फिल्म का मैंने जिक्र अभी किया,
0: जी
1: मराठी फिल्म का कब्बशी, उसकी दो लाइंस में महाराष्ट्र के मराठी ऑडियंस तुमच्या साठी अगदी खास हे गाणं मी गाती आता, नवीन मजेत पिक्चर आहे कब्बशी, त्याच्यातलं दिसला बाई दिसला मला शोधून सापडला
0: वाह।
1: कुठला।

0: चुकला छुमंतर।
1: क्या बात है, क्या
0: तो
1: बात है।
0: ये गाना मंदाकिनी जी, उस डायरेक्टर वैभव का जब कॉल आया, मैंने मना कर दिया। वो बोले उत्तम सिंह जी म्यूजिक देंगे, हमको वही फ्लेवर चाहिए, दिल तो पागल है। और बस मुझे यही था कि मैं जब फिल्म डायरेक्ट करूंगा आप ही से गवाऊंगा। पर मैंने कहा देखो भाई, अब मेरी उम्र 60 मैं क्रॉस कर चुकी हूँ, अभी सितंबर में मैं 67 पूरा करूंगी। अभी
1: जी
0: ये 1 साल पहले रिकॉर्डिंग हुई थी, तो मैंने कहा कि अब मैं उस सुर में नहीं गा सकती हूँ, मेरे सुर मैंने नीचे किए हैं, और उत्तम भैया से मैं इतनी बेबाकी से नहीं बोल सकती कि भैया आप मेरे सुर में कंपोज कीजिए, इतनी बदतमीजी मैं नहीं करूंगी। बात वहीं खत्म हुई। फिर एक हफ्ते वो फोन करते रहा, मैंने मना किया। फिर कुछ 10-15 दिन के बाद फोन बजा और उसने कहा आपसे कोई बात करना चाह रहे हैं। तो उत्तम भैया आए लाइन पे, बोले बेटा बाजा मेरे पास। वो मुझे हमेशा बेटा ही कहते, बेटा बाजा मैंने है, देखा मैं बजा बाजा, मैं तुझे कॉम्पोजिशन सुना रहा हूँ, तू मुझे बोल तेरा सुर क्या है, अब हम उसी सुर में ट्रैक बनाएंगे, पर गाना तो तुझे ही है। सवाल ही नहीं कि हम किसी और से ये गाना
1: गवाली,
0: गवाएंगे।
1: क्या
0: तो ये
1: बात
0: कितनी बड़ी बात है, ये
1: जी
0: अहो भाग्य मैं
1: जी
0: कहूंगी,
1: जी
0: ये किसको मिलता है कि ये गाना आपका है, इसे और कोई टच नहीं करेगा। तो उन 100 गानों में वो एक गाना अगर मेरा है जिसे कोई छू नहीं सकता या नहीं छुएगा,
1: ये बड़ी बात है,
0: तो इससे बड़ा भाग्य क्या हो
1: क्या हो
0: सकता है
1: सकता है।
0: मंदाकिनी जी।
1: नहीं
0: वो
1: बिल्कुल
0: सारे 100 गाने एक तरफ और ये मेरा एक गाना एक तरफ
1: बिल्कुल सही
0: है
1: कहा।
0: ना।
1: तो एक मराठी गाना सुनिए जरा
0: जी,
1: ये।
0: मेरे बचपन में जब सुषमा
1: हाँ
0: श्रेष्ठा के नाम
1: जी
0: से, उस वक्त के लोग जरूर याद रखते होंगे, श्रीनिवास खरे जी हमारे दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर मराठी के, और शांता शेलके जी दिग्गज लिरिसिस्ट, उन्होंने लिरिक्स लिखे थे और खड़े साहब ने, तो मेरा बाल गीत सबसे पहला एल्बम एचएमवी ने,
1: जी
0: उसका एक गाना, उसके कई रिमिक्सेस बने हैं, पर आज सबको बोलूं कि ओरिजिनल मेरा
1: जी
0: है।

0: किलबिल किलबिल पक्षी बोलते।
1: बहुत सुंदर, क्या बात है।
0: तो मराठी गाने, बस मराठी में तो मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ आई की वजह से, बहुत ज्यादा। लेकिन लैंग्वेजेस में कभी दिक्कत नहीं आई, ये ईमानदारी की बात है।
1: अब जब आगे हैं हम अन्य भाषाओं के
0: जी
1: आपके गाए गीतों पर, तो पूर्णिमा जी आपने कई भाषाओं में गाने गाए, जैसे कि
0: जी
1: बंगाली,
0: जी
1: नेपाली,
0: जी
1: मराठी, भोजपुरी, असमिया, हरियाणवी और गढ़वाली भाषा में भी
0: जी
1: आपने
0: जी
1: गाया।
0: बिल्कुल।
1: इनमें किस भाषा के गीत ज्यादा आपके लिए चैलेंजिंग थे, और साथ ही अलग अलग भाषाओं के उच्चारण, यानी जो डिक्शन आप करते हैं, और इमोशन को एक गायक के रूप में ढालने में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि
0: मंदाकिनी जी, मैं फिर दोहराती हूँ कि जिसको कुदरत बनाना चाहता है वो उसे एक अलग ढांचे में ढालता है। मुझे लगता है मैं बचपन से एक अलग अलग ढांचे में ढल के आई हूँ। मुझे कभी मुश्किल नहीं हुई किसी भी भाषा में गाने के लिए, कभी नहीं। मैं साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में मैंने कितने जिंगल्स किए, और हिंदी में ऑफकोर्स लिखती थी, और जो उनके इंटोनेशंस हैं लैंग्वेज के उन्हें मैं मार्क करती थी, पर एक दो टेक में ही ओके हो जाता था। मुझे कभी नहीं मुश्किल हुई, पता नहीं कैसे, क्या मैं नहीं, इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है,
1: जी, गॉड
0: पर
1: गिफ्ट।
0: ये गॉड गिफ्ट, ये एक गॉड गिफ्ट मेरी आई को था। वो हर भाषा भाषा को ना एकदम से उसमें मोल्ड हो जाती थी। तो

0: आई से जैसे आवाज मिली वैसे ये भी गिफ्ट मिला होगा। मंदाकिनी जी सॉरी, लेकिन मुझे ना मेरा एक और गाना याद आ रहा है।
1: मराठी?
0: मैंने जब रिमिक्स की बात की ना,
1: हाँ
0: नहीं हिंदी गाना, उस गाने का भी रिमिक्स बना और एक किसी ने गाया, पर वो गाना एक्चुअली मेरा है। ये जेंजी क्राउड को पता पड़ना बहुत जरूरी है।
1: जी
0: ऊंची है बिल्डिंग, टाड़ा टाड़ा टाड़ा, लिफ्ट तेरी बन है, टाड़ा टाड़ा टाड़ा, कैसे मैं आऊं, टाड़ा रा रा रा रा रा रा, आजा आजा आजा बैंड बाजा। तो ये ओरिजिनल तो मैंने गाया था
1: जी, अनु मलिक के साथ
0: बिल्कुल जुड़वा फिल्म के लिए, है ना,
1: जी।
0: पर वो रिमिक्स से मुझे याद आया।

0: पूर्णिमा बनने के बाद आपने बहुत सारे संगीतकारों के साथ काम किया,
1: जी
0: तो पुराने संगीतकारों के साथ काम करना और फिर से नए संगीतकारों के साथ काम करना, इनमें क्या अंतर महसूस किया?
1: मैंने जैसे मदन मोहन जी से के साथ या नौशाद साहब के साथ, दादू पंचमदा के साथ, वसंत देसाई जी सबके साथ काम किया। जैसे वो सिखाते थे, जिस तरह से वो समझाते थे, वैसे ही आनंद मिलन ने समझाया, वैसे ही अनु मलिक ने समझाया, वैसे ही राजेश रोशन जी ने समझाया। जतिन ललित, उनका एक बहुत बेहतरीन गाना गाया था, डरने है तू धड़कन भी तू, हो मैं जानू आई लव यू, वो ही सब। देखिए क्या होता है, फर्क सिर्फ माहौल में हुआ। माहौल ऐसे रिकॉर्डिंग करने का तरीका, उस वक्त ये था कि भाई लाइव म्यूजिशियंस हैं।
0: अब और सिंगल ट्रैक रिकॉर्डिंग होती थी पहले,
1: बिल्कुल बिल्कुल। और क्या होता था मंदाकिनी जी, फर्क ज्यादा मुझे अब महसूस हो रहा है, यानी 90s के बाद का जो दौर आया। और मुझे, मैंने जब एनालाइज किया तो मुझे लगता है उसका एक ही कारण हो सकता है, हम भी जब तक गाते थे भले हम ट्रैक्स पे गाते थे, लेकिन हम जितने हम सिंगर्स आए थे या जितने हम म्यूजिक डायरेक्टर्स हमारे आए, उनके सबके जो एक उनका जो एक बैकग्राउंड था बहुत सॉलिड था, नींव उनकी हम सबकी बहुत सॉलिड थी,
0: बेसिक्स बहुत,
1: हम सब म्यूजिकल बैकग्राउंड्स को बिलोंग करते थे, करते हैं, है ना। अब के बच्चे, बुरा लगता है उनके लिए, सच में बुरा लगता है। एक गाना 10-10 बच्चों से गवाते हैं, उन बच्चों को बेचारों को मालूम ही नहीं कि ये गाना मेरा रहेगा भी कि नहीं, है ना। अब आप बोलोगे कह रहे तुम, अरे कैसे मना करेंगे, हर कोई चाहेगा ना कि भाई चांस मिल रहा है, कैसे ना बोल। अब पहले ये होता था, स्पेशली जब 70s और 80s तक भी एक हद तक हम रिकॉर्ड करते थे मंदाकिनी जी, तो आप सोचिए कि पूरे रिकॉर्डिंग रूम में कम से कम 70-80 लोग म्यूजिशियंस, फिर सिंगर्स कैबिन

0: या तो मैं अकेली सोलो सिंगर कोई भी, या हम दो, है ना। तो कम से कम आप सोचिए कि, और फिर अंदर कॉन्सोल्स में लोग बैठे, तो एक कम से कम, नहीं, तो 80-90 लोगों की पॉजिटिविटी उस गाने के साथ जुड़ी है।
1: माहौल वैसे होता
0: माहौल
1: था, वो
0: क्यों
1: गर्माहट।
0: क्यों? क्योंकि अगर एक ने गलती की तो फिर शुरुआत से गाना शुरू करना
1: रह
0: पड़ेगा।
1: जाएगा।
0: तो सब लोग इतने चौकन्ने होकर काम करते थे कि हमसे कोई गलती
1: गलती
0: ना
1: ना
0: हो,
1: हो जाए।
0: कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वो चौकन्नापन, वो पॉजिटिविटी, एक गाने में सोचे ना सबकी पॉजिटिविटी कि दिस इज इट, ये टेको के होना चाहिए। तो वो पॉजिटिविटी जो हम देते थे ना, उसकी सिर्फ कमी मैं आज महसूस करती हूँ।
1: आज जो तकनीकी बदलाव आ गए हैं गानों की धुन पर,
0: जबकि
1: जो एक
0: बच्चे
1: बहुत असर
0: बहुत मेहनत
1: अच्छे
0: से
1: आ रहे
0: काम
1: हैं।
0: करते हैं, मैं बहुत सराहना करती हूँ उनकी, जो लिमिटेड उनको, इनफैक्ट मुझे लगता है आज के जिस माहौल या दौर में वो काम कर रहे हैं, वो हमसे भी ज्यादा मुश्किल है।
1: जी
0: अगर वो बोलेंगे भी कि नहीं हमको गाना फिर से करना है, तो भी उनको ऐसे देखते हैं लोग, मुझे मालूम है कि ये क्या बोल रहे हैं, पंचिंग का जमाना है, क्या पूरा गाना गाने पे
1: तुला हुआ है,
0: तुला हुआ है। अरे यार वो वर्ड पंच कर दो, छोड़े ना यार, कहा भी मैंने देखा है।
1: मतलब संगीत की ये हालत
0: हाँ
1: अगर हो जाएगी तो एक नया
0: तो
1: सिंगर
0: वो
1: क्या गाएगा,
0: पॉजिटिविटी आएगी
1: वो
0: कहां
1: सीखेगा
0: से,
1: कहां
0: है
1: से
0: ना।
1: आगे के लिए।
0: टुकड़ों में थोड़ी ना पॉजिटिविटी, सकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो टुकड़ों में थोड़ी ना बटी
1: जी
0: जाएगी,
1: जी जी
0: है ना।
1: जी
0: मुझे कमी सिर्फ ना मेहनत में कमी है, ना उनकी नियत, शायद हो सकता है नियत में, ईमानदारी में थोड़ा सा ऊंच नीच हो, वो भी मैं बोलूंगी बिकॉज ऑफ द सिचुएशन टुडे, आज का जो माहौल, जिस माहौल में ये बच्चे काम कर रहे हैं,
1: रातों रात स्टार बन
0: इतना
1: जाना।
0: कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, क्या करेंगे वो।
1: जी, वही
0: तो हमें
1: बात है।
0: सराहना करनी चाहिए बच्चों की, जितना हो सके उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, और हो सके तो उनको अच्छी सीख दो भाई
1: जी, ताकि आगे चलकर एक
0: उनको।
1: उनका एक
0: हाँ
1: करियर जो बनता
0: हर बार
1: है।
0: उनका उस्ताद बनने की कोशिश मत करो ना, ये बात गलत है। हमें अच्छा लगता था उनकी उम्र में जब हम थे, हम वो जो हमारा वक्त था, हमें नहीं अच्छा लगता था कोई उस्ताद बनने की कोशिश अगर, लेकिन हमारा तरीका अलग था उसको जताने का, इनका तरीका अलग है, क्योंकि आज वक्त बदल गया है। तो बदलते वक्त के साथ जो बदले अपने आप को, वो एक्सेप्ट करके बदले, मुझे लगता है समझदारी उसी में
1: जी,
0: है
1: एक
0: ना।
1: गाना सुन लिया जाए।
0: कौन सा बताइए।
1: आप बताइए, आपकी पसंद चल रही है। हमें तो आपके सभी गाने पसंद हैं।
0: अकेला तू मिला ले राजा, आए हैं दिन बहार के, अकेला तू चुरा मैं राजा, जाए ना दिन ये प्यार के, मिसलो वलो तेरी आंखों का जादू, मिसलो वलो तेरी। उसने जैसे उसको ब्लेंड किया ना, मेरी आवाज में इतना मुझे दर्द हो रहा है आज की, पत्ती आ रही है मेरी आवाज में, मतलब थोड़ी थोड़ी फट रही, मैं अपने श्रोताओं से माफी चाहूंगी इसके लिए,
1: नहीं, बिल्कुल
0: पर आज का ये मौका मैं
1: नहीं,
0: गंवाना नहीं
1: और हम
0: चाहती।
1: भी मौका नहीं गंवाना चाहते, तभी तो आपकी पसंद का ये गीत हम सुनते हैं।

0: जाए।
1: तो पूर्णिमा जी, आज तो हम आपकी बातों का और आपके गानों का रसा स्वादन कर रहे हैं और हमारे श्रोता भी। अब बस हम ये जानना चाहते हैं चलते चलाते कि आज भी क्या आप फिल्मों में गा रही हैं, एक्टिव हैं और लाइव स्टेज शोज तो आप कर ही रही हैं, तो आगे आने वाले आपके नए प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं?
2: फिलहाल तो वैसे कोई खास नहीं है। ये जो मैंने अभी जिक्र किया जिसका मराठी फिल्म का, उसमें मैंने अभी गाया। और स्टेज शोज तो बहुत करती हूँ, बहुत। और अगर मैं बहुत ईमानदारी से बोलूं तो मुझे स्टेज शोज करने में ज्यादा मजा आता है, पता नहीं क्यों। इसका मेरे पास कोई आंसर पूछेंगे तो कोई आंसर नहीं
1: जी।
2: पर मुझे लगता है वो मेरे ऑडियंस के साथ वन टू वन होना और मैं परफॉर्म करती हूँ स्टेज पे तो मुझे बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है।
1: वहाँ पे कौन सी फरमाइश आती है सबसे पहले, क्या सुनना चाहते हैं उस वक्त?
2: शाम है, धुआं धुआं, कम से कम चार बार गाना पड़ता है।
1: युवा दर्शक होते होंगे वो भी इस गाने को सुनना पसंद करते
2: हैं। बिल्कुल, और तू मेरा हीरो नंबर, पर शाम है धुआं धुआं ज्यादा, और तेरा मुझसे है पहले का। बस खास तो कुछ नहीं कर रही हूँ, गा रही हूँ बस,
1: यही खास है।
2: यही खास है मेरे लिए, तो यही खास है
1: जी।
2: इसके अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं जिंदगी में, है ना। और ना जब कोई पूछता है कि आप अभी भी गाते हैं, ये सवाल मुझसे करते हैं लोग।
1: अच्छा,
2: उनसे मैं कहना चाहूंगी कि ये हम लोग जो है ना, हम लोग शापित गंधर्व हैं, है ना। हम इसे ऊपर से लेकर आए हैं, तो ये कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि भाई 60 साल के बाद आप रिटायर हो जाओगे। ये तो हमारे, मुझे लगता है हमारे रगों में खून कम और संगीत के सुर ज्यादा बहते हैं
1: जी।
2: तो ये हमसे उसी वक्त शायद ये सुर अलग होंगे जब चिता की आग जलेगी
1: जी।
2: तो ये सवाल प्लीज मत पूछा कीजिए किसी भी कलाकार से।
1: पूर्णिमा जी, एक गीत और सुन लेते हैं आपकी पसंद,
2: प्लीज। चने के खेत में,
1: अरे
2: 18 बरस की कुंवारी कली थी।

0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो पूर्णिमा जी, और मैं तो कहूंगी सुषमा श्रेष्ठा जी भी,
1: अरे पूर्णिमा श्रेष्ठ जी,
0: आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत आभार।
1: तो आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे श्रोताओं को मेरा सादर नमन। बॉम्बे टॉकीज इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिद्धल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

प्रस्तुत है छाया गीत। छाया गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूजा नारानिया का नमस्कार। खत और कलम लिए बैठे हैं, सोच में डूबे हुए कि क्या लिख दें उन्हें दिल का हाल। पर कलम जैसे ही खत की ओर बढ़ती है, लफ्ज जैसे हवा में कहीं तैरने लगते हैं। कैसे उन्हें खत में कैद करें, कैसे उन्हें लिख भेजें दिल का हाल। ये हवाएं अपने साथ ले उड़ती हैं और हम गुम हो बैठते हैं उनके ख्यालों में।

सारे का बुलबुला जब अचानक फूट पड़ता है तो याद आता है कि लिखने बैठे थे दिल का हाल, पर अब तक एक शब्द भी नहीं लिख पाए। दूरी है जो परेशान कर रही है, तो क्या दूरी का ये एहसास लिख दें, या यूं लिख दें कि बे इंतहा मोहब्बत है तुमसे, अपनी मोहब्बत का इजहार ही लिख दें। तुमसे हुई हर मुलाकात याद आती है, तुम याद आते हो, क्या उन मुलाकातों का हसीन ख्याल लिखते हैं।

बार बार सोचते हैं कि तुम्हें क्या लिख दें, कैसे लिख दें, कहाँ से शुरू करें। दिल में तुम्हारे लिए इतना सारा प्यार है कि कोई

भी शब्दों से पूरा ही नहीं कह पाएगा। मन करता है कि इस खत में अपना पूरा दिल ही रख दें, तुम्हें बता दें कि तुम्हारे बिना हर दिन कितना अधूरा है, हर शाम कितनी बेचैन है, हर रात कितनी खाली है। सिर्फ तुम्हारा नाम ही लबों पर हर पल रहता है। इस खालीपन में जब भी कलम चलाने लगते हैं तो सारे शब्द चुप्पी की चुनर ओढ़ लेते हैं और सिर्फ लिख पाते हैं तुम्हारा नाम। लिखे जो

देखो ना, खत हमेशा साथ देने के लिए राजी हो जाता है, पर कलम पता नहीं क्या हो जाता है, इसे साथ ही नहीं देती। फिर बस खत को देखते हैं और मन ही मन तुमसे बातें करते रहते हैं। शायद प्यार ऐसा ही होता है, जहां सबसे ज्यादा कहने वाला दिल ही सबसे ज्यादा चुप हो जाता है। अब दिल में तुम जो रहने लगे हो, तो आंखें खुली हो या हो बंद, सिर्फ तुम्हें देखते हैं, तुम्हें पूछते हैं।

जानते हो, अब तो दुनिया की हर छोटी सी खुशी भी तुमसे जुड़ गई है। कोई भी बात हो, तुम्हारा जिक्र आते ही मन खिलखिला उठता है। कोई भी गीत सुनते हैं तो तुम्हारी याद उस गीत के साथ जुड़कर उसे और भी खूबसूरत बना देती है। कहीं ठंडी हवा चलती है तो लगता है जैसे तुम्हारा स्पर्श पास से गुजरा है। चांद में भी अब तुम ही नजर आते हो तो मैं ऐसे सोचते हुए होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। कई बार लगता है कि काश तुम सामने होते तो शायद कुछ कह नहीं पाते हम, बस तुम्हें देखते ही रहते।

कितना प्यारा है ये प्यार का रिश्ता। इसमें खुशी भी होती है, दर्द भी होता है, दूरियां होती हैं तो पास होने का खूबसूरत एहसास भी होता है, शिकवे शिकायतें भी होती हैं तो माफी का खास अंदाज भी होता है, इंतजार भी होता है तो मिलने की गुदगुदी भी होती है। एक अदृश्य डोर से बंधे दो दिल एक अटूट विश्वास के रिश्ते में अपना संसार बसाने लगते हैं। इसलिए कभी अगर तुम्हें कोई खाली खत मिली तो उसे खाली मत समझ बैठना।

समझ लेना, जो तुम्हें लिख नहीं पाए हम, उस खाली खत के हर खाली कोने में प्यार लिखा पाओगे, हर धड़कन धड़कती पाओगे, हमारा इंतजार का हर लम्हा पाओगे, और सबसे ज्यादा सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा पाओगे।

0: छाया गीत का आज का सफर आपने तय किया पूजा नरानिया के साथ। छाया गीत के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम तराने नए पुराने।

0: प्रस्तुत कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।
0: इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं लम्हे फिल्म के गीत से, जिसे गाया है इला अरुण और लता मंगेशकर ने बोल आनंद बख्शी के संगीत शिव हरी का।

अभी आपने लता मंगेशकर और इला अरुण को फिल्म लम्हे में सुना। लाल सिंह चड्ढा लीजिए अब इस फिल्म का गीत सुनिए अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज में। बोल अमिताभ भट्टाचार्य के संगीत प्रीतम का।

0: गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ दिलीप भारती पर।
1: अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी का गाया पतंगा फिल्म का गीत। शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है इंदिवर ने।

कुर्ता है पजामा तंग तंग है, अपनी अदा है तेरी अपना ही रंग है, अपनी अदा है तेरी अपना ही रंग है, अपना ही रंग है।

तो एक मौका अपने पास आने का, दीजिए तो एक मौका अपने पास आने का, नाम नहीं लेंगे आप और कहीं जाने का, नाम नहीं लेंगे आप और कहीं जाने का, और कहीं जाने का।

गया, दिल मेरा तेरा हो गया। तोड़ा रुक जाए चित्त

और अलग रोचल को सुना फिल्म थी रुस्तम तर्ज बनाई थी जीत गांगुली ने तो लिखे थे मनोज मुंतशिर ने। अब सुनिए जाने अनजाने फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई चंका जयकिशन ने।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
4: नमस्कार।
3: अमित, जैसा कि हम सब चाहते हैं, हमारी सरकारें प्रयासरत हैं कि किसानों के लिए कम लागत में ज्यादा उत्पादन और मिट्टी की सेहत मजबूत बनाए रखने के लिए उर्वरा शक्ति बरकरार रहे, साथ ही रासायनिक उर्वरकों का कम से कम प्रयोग जैव विविधता को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। और इसके लिए विकल्प है कि हम जैविक एवं प्राकृतिक खेती करें, जो किसानों के लिए और हम सबके लिए बहुत ही लाभकारी होगी।
4: बिल्कुल, आपने सही कहा भाई, जैविक खेती का सीधा सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य से है।
3: और आज हम इसी विषय पर बातचीत भी सुनवाएंगे किसान भाइयों को, और साथ ही हम चर्चा करेंगे MSP पर, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर।
4: और भाई, कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं का मनोरंजन भी कराते हैं, वहीं मौसम का जो पूर्वानुमान होता है वो भी उन तक पहुंचाते हैं।
3: वाकई में बहुत अनमोल जानकारियां आज हम लेकर आए हैं, साथ ही हम अपने जो कृषि वैज्ञानिकों की कृषि सलाह है, जिसे सुनकर हमारे किसान भाई बहन अपनी खेती बाड़ी के लिए अलर्ट हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं, उन सलाहों को भी आप सभी से साझा करेंगे।
4: बिल्कुल प्रतिमा, आपने सही कहा, और कार्यक्रम में कोशिश होती है कि हमारे किसान भाई बहनों तक वो बात जरूर पहुंचे जो सरकार कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देना चाहती है, और कोशिश करती है कि हमारे किसान भाइयों को समय पर उनकी जो खेती बाड़ी है, जो फसल है, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता रहे।
3: बिल्कुल सही कहा, और हम आज इस पर चर्चा भी कर रहे हैं कि भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। किसान भाइयों, खेती में किसान की मेहनत, समय और संसाधन तो लगते ही हैं, ऐसे में उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी उद्देश्य से सरकार प्रमुख कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित करती है। MSP वो घोषित मूल्य है जिसके लिए आधार पर निर्धारित फसलों के लिए सरकारी खरीद व्यवस्था संचालित की जाती है।
4: बिल्कुल प्रतिमा, और किसान चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, जो परिश्रम करता है उसके परिश्रम का परिश्रमिक उसको मिलना चाहिए।
3: और सरकार हर वर्ष विभिन्न फसलों के लिए MSP की घोषणा करती है ताकि किसानों को अपनी उपज के मूल्य से जुड़ी जानकारी पहले से मिल सके।
4: और कार्यक्रम किसान वाणी तो निश्चित रूप से उद्देश्य यही लेकर के चलता है कि हमारे किसानों तक जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, जिसका लाभ हमारे किसान भाई बहन ले सकते हैं, उसकी जानकारी पहुंचती रहे।
3: बिल्कुल, और हम किसान भाइयों से यही कहेंगे कि अपनी फसल तैयार होने के बाद उसे बेचने से पहले अपने क्षेत्र में उपलब्ध सरकारी खरीद केंद्र, खरीद की तारीख, पंजीकरण प्रक्रिया और गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी जरूर ले लें।
4: और जब ये जानकारी हमारे किसान भाइयों को होगी तो उन्हें उपज का सही दाम मिले, और यही कार्यक्रम का उद्देश्य है कि उत्पादन का जो लाभ हमारे किसान भाइयों को मिलना चाहिए, जिससे लागत मूल्य कम हो, उत्पादन बढ़े। तो मित्रों, बिल्कुल आप इसका लाभ उठाएं, न्यूनतम समर्थन मूल्य को जानें और कार्यक्रम किसान वाणी को भी लगातार सुने।
3: और साथ ही मैं एक बात अमित और कहना चाहूंगी अपने किसान भाइयों से कि अपनी उपज की तौल, भुगतान और खरीद से संबंधित रसीद अथवा आवश्यक दस्तावेज भी सुरक्षित रखें।
4: बिल्कुल प्रतिमा, और अब कार्यक्रम में समय है अपने श्रोताओं के लिए एक ऐसी जानकारी साझा करने का जिसमें वैज्ञानिक विशेषज्ञ या डॉक्टर्स की सलाह हमारे किसान भाइयों तक पहुंचती है, और कोई ना कोई ऐसी जानकारी जरूर होती है कि जिसका लाभ उठा करके हमारे किसान भाई बहन अपने कृषि जीवन को उत्तम बनाते हैं।
3: बिल्कुल अमित, सही कहा तुमने। आज हम जो बातचीत सुनवाएंगे उसका विषय है जैविक एवं प्राकृतिक खेती किसानों के लिए लाभकारी कैसे।
4: और भाई, इस पर

0: जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शिवाधार मिश्रा, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से।
1: तो आइए सुनते हैं ये बातचीत।
2: किसान भाइयों नमस्कार। आप अपनी खेती से अधिक उत्पादन लेने के लिए बार बार खेती में अधिक से अधिक उर्वरकों का प्रयोग करते रहे हैं, और जब हम किसी भी मृदा में ज्यादा से ज्यादा उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो एक बार तो उसका उत्पादन बढ़ता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो कम होने लगता है और स्थिति ये आ जाती है कि आप चाहे जितना उर्वरक डाल लें लेकिन उत्पादन स्थिर हो जाता है, और यहाँ तक कि धीरे धीरे कम होने लगता है, मृदा का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, और जो आप उर्वरक डालते हैं वो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं उसके पार्टिकल आपके खाने में भी आते हैं, जिससे मानव स्वास्थ्य भी खराब होता है। और इसकी वजह से देश में जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, और ये जैविक खेती और प्राकृतिक खेती किस तरीके से किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है, इसके बारे में आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर शिवाधार मिश्रा जी को, जो कि प्रधान वैज्ञानिक रह चुके हैं सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि ये जैविक और प्राकृतिक खेती दोनों अलग अलग हैं या इनमें अंतर क्या है?
3: जैविक खेती और प्राकृतिक खेती थोड़ा ही अंतर है, उद्देश्य दोनों का एक ही है कि मानव स्वास्थ्य है, मृदा स्वास्थ्य है, पर्यावरण स्वास्थ्य है। लेकिन अंतर इतना है कि जैविक खेती में उत्पादों को हमारे किसान भाई बाजार से भी खरीद सकते हैं। बहुत सारे जो इनपुट्स हैं जो हम खेती में प्रयोग करते हैं, बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स होते हैं कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, और भी बहुत तरीके के प्रोडक्ट हैं जो बाजार से खरीदते हैं और उसे अपने खेत पे तैयार करना संभव नहीं होता है। लेकिन जो हमारी प्राकृतिक खेती है वो पूर्णतः प्राकृतिक है। इसमें जो भी इनपुट्स होंगे वो सारे के सारे हमारे खेत में ही तैयार होंगे और उनको हम अपने खेत में प्रयोग करें। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बाजार पर निर्भरता जो है वो बिल्कुल नहीं है प्राकृतिक खेती में, जबकि जैविक खेती में हम बाजार पर भी निर्भर रहते हैं।
2: यानी प्राकृतिक खेती में जो भी आपके खेत में उत्पादन होता है या जो भी आपके मृदा में उपस्थित पोषक तत्व है उन्हीं का ही प्रयोग होता है।
3: जी।
2: तो डॉक्टर साहब, जब बात जैविक और प्राकृतिक खेती की होती है तो निश्चित तौर पे हम बात करते हैं पर्यावरण की।
3: जी।
2: तो क्या यह पर्यावरण हितैषी है?
3: बिल्कुल, ये दोनों पर्यावरण हितैषी हैं। रासायनिक खातों के लगातार प्रयोग से हमारी जमीनों की उपजाऊपन कम होने लगा है और वो उतना उपज नहीं देती जितना पहले देती थी। कारण यह है कि हमारे किसान भाई ज्यादा से ज्यादा तीन या चार पोषक तत्व प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और कभी कभी जिंक भी प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन पौधों को तो 16 पोषक तत्व चाहिए। उन 16 पोषक तत्वों की पूर्ति पौधे जमीन से लेकर करते हैं जो कि जमीन में पहले से उपलब्ध है पोषक तत्व, और उन पोषक तत्वों की लगातार चूंकि पौधे ले रहे हैं, बाकी चीजें तो आप दे रहे हैं लेकिन ये चीजें जमीन से जा रही हैं, तो जमीन की इसको कहते हैं माइनिंग, हमारी जमीन की एक तरीके से माइनिंग हो रही है और जो उसका दोहन हो रहा है जमीन का, तो इस तरीके से धीरे धीरे हमारी भूमि है वो कमजोर होती जा रही है, हमारी खेत कमजोर हो रहे हैं क्योंकि बाकी पोषक तत्व तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व जिन पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं उनकी कमी होती जा रही है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो संतुलन है पोषक तत्वों को वो सारा का सारा बिगड़ जाता है, और इससे जो हमारे उत्पाद तैयार होते हैं उनमें भी संतुलन बिगड़ा हुआ होता है, किसी में कोई चीज कम है किसी में कोई चीज ज्यादा है, तो इससे क्या होता है कि जो हमारे मानव शरीर में जब जाता है तो वहां भी संतुलन बिगड़ जाता है। अब दूसरा पहलू ये है कि जब हम जैविक स्रोत प्रयोग करते हैं खेत में, तो जैविक स्रोतों की खूबी यह है कि वो पौधों से या पशुओं से प्राप्त अवशिष्टों से बने हुए होते हैं।
2: जी, जैसे गोबर की खाद
3: और भी कई तरीके की खादें हैं, हरी खाद भी है जो सिर्फ पौधों से ही होती है। तो इसमें क्या होता है कि पौधे चूंकि 17 तत्व लेते हैं तो 17 के 17 पोषक तत्व पौधों के टिश्यू में या पौधों के अवशेषों में उपलब्ध होते हैं और उसी मात्रा में लगभग होते हैं जिस मात्रा में उनको आवश्यकता होती है। तो हम पुनर्चक्रीकरण कर रहे हैं, वही चीजें जो हमारी जमीन से निकल रही हैं उनको हम जमीन में पुनः प्रवेश करा दे रहे हैं, और वो भी बड़ी संतुलित मात्रा में जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है उन्हीं को हम प्रकृति को प्रकृति का चीज उसी अनुपात में दे रहे हैं और अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं। जो उत्पाद हमारा तैयार हो रहा है उसमें भी संतुलन है, जो जमीन में जा रहा है वो भी संतुलित है। तो यही है प्राकृतिक खेती और जैविक खेती का मूल मंत्र।
2: जी डॉक्टर साहब, जैसे इसमें बायो उर्वरक जैसे रेडियम हो गया,
3: जी हाँ,
2: तो ये किसमें आता है?
3: जितनी जीवाणु युक्त खादें हम जिन्हें कहते हैं या बायो फर्टिलाइजर कहते हैं,
2: जी
3: बायो फर्टिलाइजर भी हमारे जैविक खेती में आ जाता है। तो जैविक खेती में क्या है कि बायो फर्टिलाइजर

0: कई तरीके के कवक हैं, फंजाई जिसको कहते हैं, कई तरीके के बैक्टीरिया हैं, कई तरीके के और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम सूक्ष्म जीव कहते हैं
1: जी।
0: तो इन सबकी खूबी क्या होती है, ये वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर और जमीन में दे देते हैं। वायुमंडल में तो नाइट्रोजन है ही है, जो काम हम रासायनिक खादों में मशीनों के द्वारा फैक्ट्री द्वारा वायुमंडल से ही खींचते हैं, वही चीज जमीन में हमारे ये सूक्ष्म जीव वही काम कर देते हैं। और एक तरीके के होते हैं जो फास्फोरस को घुलनशील बना देते हैं जो पौधों के लिए उपलब्ध हो, बहुत से ऐसे हैं जो पोटास को घुलनशील बना देते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो जिंक को घुलनशील बना, तो कई तरीके के सूक्ष्म जीव अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं और कई काम कर रहे होते हैं, जबकि हम रासायनिक खादों से कुछ ही पोषक तत्वों की पूर्ति कर पाते हैं। तो जैविक खेती में इन बायो फर्टिलाइजर्स का भी बहुत महत्व है, क्योंकि ये जैविक खेती में उपयोग है, प्राकृतिक खेती में इनका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इनको तैयार करने के लिए हमें बहुत अच्छी लैब चाहिए। लेबोरेटरी किसान भाई रख नहीं सकते, तो जाहिर है कहीं ना कहीं किसी लेबोरेटरी पे निर्भर रहना पड़ेगा, वहां से खरीदना पड़ेगा।
1: तो जिस प्राकृतिक खेती की बात होती है उसमें गाय के गोबर गोमूत्र की बात होती है, तो उसका प्रयोग किस तरीके से होता है?
0: गाय के गोबर से, गाय के घी से, गाय के दूध से, गाय के दही से, गाय के छाछ से और गाय के मूत्र से, इस सब से मिला के हम विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाते हैं प्राकृतिक खेती के लिए, जैसे जीवामृत, घन जीवामृत, ये पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। इसके अलावा पंचगव्य भी बनाते हैं, इसके अलावा हम अस्त्र शस्त्र नाम से कई हैं प्रचलित हैं अलग अलग क्षेत्रों में, कि उसमें क्या करते हैं, गाय के गोबर और मूत्र के साथ में हम कई जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन या जो घास पात है उनका करते हैं, तो उनको मिला के वो हमारे पेस्टिसाइड का काम करते हैं, जो खेत में कीड़े मकोड़े बीमारियां उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो सब कुछ हमारे गाय से और हमारी जमीन से जो पैदा हो रहा है उसी से बना के तैयार कर देते हैं और सारी इनकी पूर्ति करते हैं। अब इनकी खासियत ये है, जैसे जीवामृत, घन जीवामृत, ये जब जमीन में जाता है तो ये पहले से ही इतना एनरिच्ड होता है, इतना ज्यादा उसमें प्रचुर मात्रा में सूक्ष्म जीव होते हैं कि वो जाके बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं, और जमीन में जो उपलब्ध पहले से ही सूक्ष्म जीव है उनसे मिलके और तेजी से पूरे जो संगठक पोषक तत्वों के हैं, जो कई ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, उसको तोड़ के और जो पौधे जिस फार्म में लेते हैं ना उस फार्म में ये बदल देते हैं और पौधों को सुगमता से सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो एक बहुत अच्छा चक्र है जो प्राकृतिक चक्र, और जैविक खेती के थ्रू हम जा सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर के थ्रू जा सकते हैं, तो ये है हमारा जैविक खेती और प्राकृतिक खेती का मुख्य अंतर।
1: तो डॉक्टर साहब, ये तो अंतर की बात रही, और जैविक खेती प्राकृतिक खेती ये दोनों मिलकर के पर्यावरण को किस तरीके से संरक्षित करें?
0: जी बिल्कुल सही बात है, जब पर्यावरण की बात आती है तो हम इनकी तुलना हमेशा रासायनिक उर्वरकों से या रासायनिक खेती से या जो वर्तमान में खेती हो रही है रसायनों से।
1: जी
0: अब आप खाद को ही लीजिए, हम यूरिया डीएपी और इस तरीके की खादों को प्रयोग करते हैं, तो ये क्या होता है, जमीन में डालते ही तुरंत इनमें जो भी तत्व है वो जमीन में आ जाता है और पौधे तुरंत तो नहीं ले सकते, पौधों को धीरे धीरे जरूरत होती है। तो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की जो अवयव है जो हम अप्लाई कर रहे हैं, इनपुट्स कर रहे हैं, उनमें धीरे धीरे जैसे पौधों की आवश्यकता उसी आवश्यकता अनुसार पोषक तत्व रिलीज होते हैं, जबकि इसमें तुरंत हो जाते हैं। अब तुरंत रिलीज हुए, पौधे ले नहीं पाए पूरा का पूरा, अपटेक हो नहीं पाया, जो बच गया वो या तो बरसात के पानी के साथ बह के बाहर चला जाता है, और अगर ज्यादा पानी जमीन में जा रहा है तो वो ग्राउंड वाटर को भी हमारे प्रदूषित कर देगा। इसी तरीके से बहुत सारी केमिकल हम लोग यूज करते हैं, दवाइयां जो हर्बिसाइड है, जो घास पात मारने के लिए इंसेक्टिसाइड है, फंजीसाइड है, मतलब कई तरीके के जो दवाइयां प्रयोग करते हैं, उनका कहीं ना कहीं से अवशेष रह जाता है या अवशेष हमारे वायुमंडल में, हवा में, पानी में और जमीन में, तीनों को प्रदूषित कर देता है, तीनों की गुणवत्ता घटती है। जबकि जैविक खेती में और प्राकृतिक खेती में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो कि ज्यादा दिन तक टिकता हो, और कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं जो हानिकारक हो। तो भूमि, जल, वायु तीनों को हम शुद्ध रख के और पैदावार ले सकते हैं, अच्छे उत्पाद ले सकते हैं।
1: जब रक्षा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और उसके साथ साथ आपकी मृदा का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पानी भी स्वास्थ्य रहेगा, और जब हम प्राकृतिक या जैविक खेती करते हैं तो उसका असर मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है।
0: मानव स्वास्थ्य पे जो असर है वो एक तो सीधा सीधा है प्रत्यक्ष रूप से,
1: जी
0: जो उत्पाद जैविक खेती और प्राकृतिक खेती से आएगा वो एकदम केमिकल फ्री होगा
1: जी,
0: और दूसरे उसमें संतुलित मात्रा में सब कुछ पोषक तत्व उपलब्ध होंगे जो कि नेचर में होते हैं
1: जी।
0: तो एक तो ये तो प्रत्यक्ष रूप से आपको फायदा हुआ कि आपने बैलेंस न्यूट्रिशन आपके पेट में जा रहा है
1: और आपके स्वाद में भी फर्क पड़ा,
0: तो जाहिर है खाने की रुचि बढ़ जाती है, पाचनशीलता बढ़ जाती है, सब कुछ बढ़ जाता है
1: जी।
0: दूसरा जो अप्रत्यक्ष रूप से यह है कि जब हमारे हवा, पानी, भूमि सब प्रदूषण रहित होंगे, स्वच्छ होंगे, तो हमें अच्छी हवा मिलेगी, सांस मिलेगी, पीने को अच्छा पानी मिलेगा बिना प्रदूषित, और जमीन मिलेगी, तो हमें कहीं से केमिकल से एक्सपोजर नहीं होगा। दोनों तरीके

0: इसे मानव स्वास्थ्य पे प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से दोनों तरीके से लाभ ही लाभ है।
1: डॉक्टर साहब बिल्कुल, जब आप लाभ की बात करते हैं, क्योंकि जब फसलों पर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पे उसमें लागत भी लगती है
0: जी,
1: और अगर वो प्राकृतिक या जैविक खेती अपनाते हैं तो उनकी लागत में भी तो कमी आती है।
0: प्राकृतिक खेती और जैविक खेती, इसमें निश्चित ही लागत कम लगती है क्योंकि सारे उत्पाद या तो सस्ते हैं या हमारे खुद के उपलब्ध किए हुए होते हैं
1: जी।
0: हमें जो आज के समय में इतनी महंगी खाद और पेस्टिसाइड आते हैं तो एक बहुत बड़ी लागत का हिस्सा किसान भाई का उसमें चला जाता है, लेकिन जैविक खेती को और प्राकृतिक खेती लिए चूंकि हमें कुछ खरीदना ही नहीं है तो जाहिर है हम अपना खुद तैयार करना है, अपना खुद तैयार करना है तो वो शुद्ध भी है और पैसे भी कम लगते हैं, तो इस तरीके से पूरी लागत देखी जाए तो इसमें कम होती है। लेकिन हमारे किसान भाइयों को एक बड़ा भय रहता है कि जैविक खेती से और प्राकृतिक खेती से उत्पादन कम हो जाता है। जाहिर है कि अगर हम जो अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं पोषक तत्वों का और जितना पर्यावरण सबको नुकसान कर रहे हैं, तो परोक्ष रूप और प्रत्यक्ष रूप दोनों से अगर देखा जाए तो वो हम घाटे का काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम सबको सुरक्षित रखते हुए अपने स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रखते हुए अगर थोड़ी पैदावार कम भी मिल रही है तो इसमें हमारे किसान भाइयों को संतोष कर लेना चाहिए। और आजकल सरकार की इतनी सारी परियोजनाएं हैं और इतने सारे मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म है कि हमारा अगर सही उत्पाद है उनका सही रजिस्ट्रेशन करा दिया है तो आप उन उत्पादों को प्रीमियम प्राइस ले सकते हैं। जितनी आपकी पैदावार अगर कम भी हो जाती है तो आपकी उतनी प्राइस ज्यादा। आज बाजार में आप चले जाइए, अगर कोई सब्जी 10 रुपए किलो बिक रही है और उसको ये बता दो कि इसमें केमिकल भी हो सकता है, इसमें सब कुछ हो सकता है, और दूसरी सब्जी 15 रुपए किलो कह रहे हैं इसमें कुछ नहीं है, ना केमिकल है ना कुछ है, तो कोई भी कंज्यूमर है वो जाके 15 रुपए वाली खरीदेगा, 10 रुपए वाली नहीं खरीदेगा। तो इस तरीके से हमारे किसान भाइयों को फायदा भी है और जो कंज्यूमर है उनको भी फायदा है।
1: कहने का मतलब यह है कि किसी न किसी रूप में आपकी जो आय है वो बढ़ेगी, क्योंकि जब आपके उत्पाद की कीमत ज्यादा मिलेगी तो वो भरपाई हो जाएगी
0: जी।
1: तो डॉक्टर साहब, अगर कोई किसान रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती पे आता है तो कितना समय उसको लगता है उत्पादन को मेंटेन करने में, या जो उत्पाद मिल रहा है वो केमिकल फ्री होने में?
0: इसके दो पहलू हैं, एक तो उत्पादन की बात है और दूसरे स्विच ओवर करने की बात है, मतलब आप इसमें कैसे करें। तो एक लीगल पॉइंट और जो लाइसेंस के हिसाब से अगर देखें जो स्विच ओवर करने के लिए, तो 3 साल का समय पर्याप्त होता है। 3 साल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, रासायनिक खेती से ऑर्गेनिक में आ सकते हैं। पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल माना जाता है, 3 साल तक जैविक करेंगे तभी वो जैविक होगा रासायनिक से अगर स्विच ओवर करते हैं। दूसरा ये है कि जो उत्पाद का स्तर है, जब हम ऑर्गेनिक का शुरू शुरू में डालते हैं तो जमीन में भी चेंज होते हैं, हो सकता है कोई पोषक तत्व कम हो गया हो, ज्यादा हो गया हो, कि आपकी जमीन नेचुरल वाली तो रही नहीं, आप पहले से ही पोषक तत्व जो रासायनिक डालते रहे तो इससे माइनिंग हो ही चुकी है, उसको कन्वर्ट करने में हो सकता है किसी पोषक तत्व की कमी रही हो, तो वो धीरे धीरे करके उसकी भरपाई जब हम लगातार डालते रहेंगे जैविक खादें या जैविक पोषक तत्व, तो उससे उसकी भरपाई होगी, फिर उसी स्तर पर हम पहुंच सकते हैं 4-5 साल में।
1: तो डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई रासायनिक खेती करते हैं वो जैविक और प्राकृतिक खेती करें, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा?
0: मेरा संदेश यही है कि अपने में विश्वास विकसित करने के लिए सबसे पहले अगर आप बड़े किसान हैं
1: जी,
0: तो 1 एकड़ से शुरू करें, 2 एकड़ से शुरू करें, 3 एकड़ से शुरू करें, जैसी आपके पास जोत है
1: जी।
0: और छोटे किसानों से मैं कहूंगा कि सीधे सीधे स्विच ओवर कर जाएं, ये उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा।
1: और जो हमारे बाजार में उत्पाद खरीदते हैं उपभोक्ता, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
0: उपभोक्ता तो सजग ही है, वो थोड़ा सा और ध्यान दे कि हमारे इन किसान भाइयों जो जैविक खेती वो कर रहे हैं उनके उत्पाद को प्रायोरिटी पे ले, और ज्यादा पैसे देने के लिए भी मुझे लग रहा है उन्हें कोई समस्या नहीं आएगी।
1: डॉक्टर साहब, कहने का मतलब हमारा ये है कि जो रासायनिक उत्पाद होते हैं वो चमकीले उस तरीके के होते हैं, और जैविक और प्राकृतिक उत्पाद उतने देखने में अच्छे नहीं होते हैं लेकिन पौष्टिकता से भरपूर होते
0: जी
1: हैं।
0: इसका एक कारण, आप बाजार में जब जाते हैं तो आप जैसे भिंडी ले लीजिए, भिंडी को आप खरीदने जाएंगे तो आप बहुत हरी हरी जो दिखाई पड़ेगी उसमें कोई भी खराब नहीं, सभी अच्छी भिंडी रखे हुए, तो सभी भिंडियां एकदम स्वस्थ दिखाई पड़ेंगी। जबकि आप ऑर्गेनिक वाला देखें तो हो सकता है हल्की पीले रंग की हो सकता है उसमें टेढ़ी मेढ़ी भी हो एक आध, तो आप ये देखिए जो बहुत अच्छा दिखने में होता है कोई जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी अच्छा ही हो
1: जी।
0: तो एकदम एस्थेटिक वैल्यू पे ना जाएं और ये समझने की कोशिश करें। और दूसरी बात, आजकल सरकार ने भी बहुत अच्छे इंतजाम कर रखे हैं, तो जो ऑलरेडी जिन्होंने जैविक खेती का रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो वो अपने लोगो वगैरह भी यूज कर सकते हैं उत्पादों के साथ हमारे किसान भाई, तो किसान डायरेक्ट भी मार्केट में इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं।
1: यानी कहने का मतलब यह है कि

0: साथ साथ अगर मार्केटिंग भी सही तरीके से करते हैं तभी आप फायदा ले पाएंगे।
1: जी
0: डॉक्टर शिवाधार मिश्रा जी, आपने जैविक एवं प्राकृतिक खेती पर बहुत अच्छी जानकारी दी। निश्चित तौर पे आप द्वारा दी गई जानकारी का किसान भाई फायदा उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमारे किसान भाई बहन सुन रहे थे जैविक एवं प्राकृतिक खेती किसानों के लिए लाभकारी कैसे,
3: और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर शिवाधार मिश्रा, प्रधान वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से।
2: बिल्कुल, और अब वक्त है मनोरंजन का, क्योंकि किसान भाइयों को इंतजार रहता है कि भाई आज कौन सा गीत है, लोकगीत है, भजन है, उपदेश है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य से भी जुड़ते हैं और हमारे मन से भी जुड़ते हैं।
3: तो मित्रों आइए आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं एक रागनी।

0: अभी आप सुन रहे थे ये रागिनी।
1: मित्रों, मनोरंजन के बाद हमारी कोशिश होती है कि किसान भाइयों के लिए हम मौसम का पूर्वानुमान दें, जिससे वो अपने कृषि कार्य को समय पर कर सकें। तो बताते चलें कि नई दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में मौसम साफ एवं धूप रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।
0: बहुत सही जानकारी दी। और देखिए, अगर मौसम का हाल उनको पता होगा तो वो अपनी कृषि और तमाम कार्य जो है वो बड़ी सुनिश्चितता के साथ कर पाएंगे। और अभी हमारे किसान भाइयों को इंतजार रहता है कृषि सलाह का, तो क्यों ना कृषि सलाह भी दे दें?
1: जी,
0: वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए सभी किसानों को सलाह है कि किसी प्रकार का छिड़काव ना करें तथा खड़ी फसलों जैसे कि दलहनी फसलों, मक्का आदि व सब्जी नर्सरियों में जल निकास का उचित प्रबंधन रखें। साथ ही हम किसान भाइयों से ये साझा करना चाहेंगे कि इस मौसम में कीटों की रोकथाम के लिए प्रकाश प्रपंच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक प्लास्टिक के टब या किसी बर्तन में पानी और थोड़ा कीटनाशी मिलाकर एक बल्ब जलाकर रात में खेत के बीच में रख दें। प्रकाश से कीट आकर्षित होकर उसी घोल पर गिरकर मर जाएंगे। इसी प्रपंच से अनेक प्रकार के हानिकारक कीटों का नाश होगा।
1: बिल्कुल। और मित्रों, ध्यान रखें कि जो कृषि वैज्ञानिकों की सलाह है, यदि इसका प्रयोग हम कृषि में करते हैं तो निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। वहीं इस मौसम में धान में पत्ती लपेटक कीट के आने की संभावना रहती है। किसान भाइयों को सलाह है कि वे धान के खेत को 2 सेंटीमीटर तक पानी से भर दें। एक रस्सी के दोनों कोनों को दो व्यक्ति खेत के दोनों कोनों पर खड़े होकर पकड़े और इस तरह आगे बढ़े ताकि रस्सी फसल को छूते हुए पत्तियों को झुका दे। इस प्रक्रिया से कीट पानी में झड़कर गिर जाते हैं। इसके उपरांत खेत से पानी निकाल दें और कीटों को एकत्र कर मार दें। वहीं इस मौसम में सरसों साग, पूसा साग वन, मूली, समर लौंग, लौंग चेतकी, पालक, ऑल ग्रीन तथा धनिया पंत, हरितिमा या संकर किस्मों की बुवाई आप मेंढों पर कर सकते हैं।
0: देखिए कितनी अच्छी सलाह है हमारे कृषि वैज्ञानिकों की। और अमित, हमें भी अपने किसान भाइयों के बहुत से सुझावों का, उनकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है कि हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है। तो किसान भाई बहनों, अपने फीडबैक हमें जरूर भेजिए ताकि हमें भी पता चले कि हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगता है। हमारी ईमेल आईडी है feedback@gmail.com।
1: मित्रों, आज के कार्यक्रम किसान वाणी में केवल इतना ही।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है।

0: दिल्ली में आज पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और चार श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12,22,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में लगभग 61% का विस्तार हुआ है और वर्ष 2014 से परिचालन में आने वाली हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने तक के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
1: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए। इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एफएसएल के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाली कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दूतावास ने एमटी काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों से समन्वय किया। सभी को सुरक्षित तट पर पहुंचा दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों ने बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने का आश्वासन दिया है, इससे ऊर्जा की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यूरोप से डीजल की आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध किया था। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू है। एक सार्वजनिक सूचना में नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त ने कहा कि अनधिकृत सभाओं, सार्वजनिक भाषणों, नारेबाजी, जुलूस, प्रदर्शन, धरना और अन्य गतिविधियों पर रोक है।

0: दूसरी बार जीता स्वर्ण पदक, फाइनल में पाकिस्तान को हराया। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में जारी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एशियाई खेलों से, जहां भारतीय एथलीटों ने अलग अलग खेल में अच्छा प्रदर्शन कर देश को आगे बढ़ाया है और देश का मान भी बढ़ाया है। एशियाई खेलों में आज भारत ने 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा खिलाड़ियों का। सबसे पहले आज बात की जाएगी हॉकी पर। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल मैच में मलेशिया के खिलाफ 5-1 से जीत दर्ज करते हुए ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसी के साथ भारत ने लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक का टिकट भी अपने नाम कर लिया है। सुनते हैं इस मुकाबले पर एक खास रिपोर्ट।
1: एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल आ गया है प्रभु। पहली बार हुआ है कि मेन और वुमेन दोनों हॉकी टीम्स ने एक साथ गोल्ड मेडल जीते हो। लॉस एंजल्स वालों स्वागत।

0: फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने दबदबा बनाए रखा। 11वें मिनट में हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए गोल करते हुए भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। हालांकि 14वें मिनट में मलेशिया के शैली सिल्वरियस ने फील्ड गोल दागकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। 23वें मिनट में जुगराज सिंह ने बेहतरीन पेनल्टी कॉर्नर के जरिए भारत को 2-1 से आगे कर दिया। हाफ टाइम के बाद 42वें मिनट में हार्दिक सिंह ने पेनल्टी स्ट्रोक को शानदार तरीके से गोल में तब्दील किया। इसके बाद 54वें मिनट में शिलानंद लाकड़ा ने एक फील्ड गोल दागा और 57वें मिनट में हरमनप्रीत सिंह ने अपना दूसरा गोल पेनल्टी कॉर्नर से करते हुए मलेशिया की उम्मीदों को पूरी तरह समाप्त कर दिया। यह जीत कई मायनों में ऐतिहासिक है। भारतीय टीम ने एशियन गेम्स के इतिहास में पहली बार अपना स्वर्ण पदक का सफलतापूर्वक बचाव किया है। इससे पहले हॉकी टीम ने एशियन गेम्स 2022 का गोल्ड भी अपने नाम किया था। यह एशियन गेम्स के अलग अलग संस्करणों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कुल 5वां स्वर्ण पदक है। भारत ने 1966, 1998, 2014, 2022 और 2026 में खिताब अपने नाम किया था। स्पोर्ट्स कैन के लिए अक्षित वैद्यान।
1: पांच एक से ये जीत दर्शाती है कि भारत ने सिर्फ ये मुकाबला जीता नहीं बल्कि डोमिनेट करके भी खेला है। अगर हॉकी की बात की जाए तो महिला टीम ने भी भारत को स्वर्ण पदक इससे पहले दिलाया था और आज पुरुष हॉकी टीम ने भी देश के नाम एक और पदक किया। हॉकी से चलते हैं कुश्ती की ओर, जहां भारतीय रेसलर ने अलग अलग स्पर्धाओं में देश के नाम कई पदक किए हैं। एशियन गेम्स में भारतीय रेसलर अमन सहरावत ने स्वर्ण, अंतिम पंघाल ने रजत और दीपक पुनिया ने कांस्य पदक देश के नाम किया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: भारत का एक गोल्ड मेडल कुश्ती में और आ चुका है अमन सहरावत। इन्होंने पिछले एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था और इस बार सीधा रंग बदलकर
3: अमन ने रोमांचक फाइनल मैच में वर्ल्ड चैंपियन चोंगसोंग को 11-7 से हराया। अमन का एशियन गेम्स में ये लगातार दूसरा पदक है। पिछले एशियन गेम्स में अमन ने कांस्य पदक अपने नाम किया था। इस प्रतियोगिता में ये भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले सुजीत कलकल ने फ्री स्टाइल स्पर्धा में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में अमन को साउथ कोरियाई पहलवान चोंगसोंग से कड़ी टक्कर मिली। अमन ने इंजरी ब्रेक के बाद अपनी बढ़त को 6-1 कर लिया। मैच के आखिरी मिनट में अमन ने एक बार फिर मुकाबले का रुख पलटा और शानदार लगाते हुए चोंगसोंग के खिलाफ अहम बढ़त बना ली। अमन ने मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन को अपने दांव से पहले पूरी तरह लॉक किया और फिर उन्हें पलटने के साथ ही 4 पॉइंट्स हासिल किए। अमन का ये दांव निर्णायक साबित हुआ और वो फाइनल मुकाबले को 11-7 से अपने नाम करने में सफल रहे। वहीं अंतिम पंघाल ने महिलाओं के 53 किलोग्राम रेसलिंग इवेंट में रजत पदक जीता। उन्हें जापान की कियोका से 1-9 से हार का सामना करना पड़ा। फाइनल में अंतिम पंघाल की धीमी शुरुआत का फायदा उठाकर कियोका ने शुरुआती बढ़त बना ली। पहले पीरियड के खत्म होने तक कियोका ने अपनी बढ़त 2-0 कर ली। अंतिम पंघाल ने मुकाबले में वापसी करने की कोशिश की और कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि उन्होंने कियोका को पैर से नीचे गिराकर 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। हालांकि जापानी रेसलर ने तेजी से भारतीय खिलाड़ी को मैच से बाहर धकेल दिया। अंतिम ने फैसले को चुनौती दी लेकिन उनका रिव्यू सफल नहीं रहा। कियोका ने अंतिम के पैर पर हमला करके अपनी बढ़त 9-1 कर ली और स्वर्ण पदक सुनिश्चित कर लिया। उधर

0: 500 की 86 किलोग्राम कैटेगरी में दीपक ने कांस्य पदक जीता। एक कड़े और कम स्कोर वाले मुकाबले में संयमित प्रदर्शन करते हुए अपने मेडल टैली में एक और मेडल जोड़ा। दीपक ने शुरुआती दौर में 2 पॉइंट्स बनाए और दूसरे दौर में 1 पॉइंट गंवाने के बावजूद अच्छा बचाव करते हुए जीत हासिल की और देश को एक और पदक दिलाया। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स के।
1: तो कुश्ती में भारत ने तीनों ही पदक देश के नाम किए। अमन ने जहां स्वर्ण जीता, अंतिम ने रजत और दीपक पुनिया ने कांस्य पदक जीतकर भारत का झंडा शान से लहराया है। और अब चलते हैं गोल्फ की ओर। गोल्फ में प्रणवी उर्स ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश को स्वर्ण पदक दिलाया है। 4 दिन तक चले इवेंट में प्रणवी व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। सुनते हैं प्रणवी के प्रदर्शन पर ये खास रिपोर्ट।
2: There's the touch and it goes. She gets it. Pranavi Sharath-Urs, even par on the day, 15 under. She finishes overall India's first gold medal winner in golf.
3: Pranavi ne event ke aakhri din even power 70 ka score kiya aur kul 15 under 265 ke score ke saath swarn padak jeeta. Pranavi ne mahila team ko 14 under 546 ke score ke saath rajat padak dilane mein bhi aham bhumika nibhai. Team ki Yin Ruoning aur Singapore ki Shannon Tan ne sanyukt roop se रजत पदक जीता। प्रणवी आखिरी दिन 10 से 3 स्ट्रोक की बढ़त के साथ उतरी थी। प्रणवी ने 6th, 10th और 13th होल पर 3 बर्डी के साथ वापसी की और बढ़त बना ली। आखिर में 18th होल पर इवन पावर स्कोर करके उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला टीम ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 14 अंडर 246 का स्कोर बनाया। इस प्रदर्शन के दम पर भारत ने एशियन गेम्स के महिला टीम इवेंट में रजत पदक जीता। खास बात ये है कि महिला टीम स्पर्धा में एशियन गेम्स इतिहास का ये भारत का पहला पदक है। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विशेष। बेहतरीन प्रदर्शन किया है प्रणवी ने और आज एक और पदक देश को दिलाया। बाकी खिलाड़ियों ने कैसा किया गोल्फ में प्रदर्शन?
4: प्रदर्शन की बात करें अगर प्रशांत, तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है प्रणवी उर्स ने और टीम इवेंट में भी भारतीय टीम ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। अन्य खिलाड़ियों की बात करें तो अदिति अशोक 14वें स्थान पर रही। उन्होंने आखिरी दिन 3 अंडर 67 का स्कोर बनाया और टूर्नामेंट का समापन 2 ओवर 282 के कुल स्कोर के साथ किया। वहीं दीक्षा डागर संयुक्त 23वें स्थान पर रही। उन्होंने 4th दिन 7 ओवर पार का स्कोर बनाया और उनका कुल स्कोर 12 ओवर रहा।
1: जी, इन खिलाड़ियों से पदक नहीं आ सका लेकिन प्रणवी का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा है गोल्फ में। और अब बात करते हैं तीरंदाजी पर। कुमकुम मोहत ने महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। कुमकुम ने शूट ऑफ में येजिन ओह को हराकर एशियन खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। उधर नीरज चौहान ने पुरुषों के व्यक्तिगत रिकर्व इवेंट में धीरज मोहम्मद देवरा को हराकर कांस्य पदक जीता। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
5: सत्रह वर्षीय कुमकुम ने फाइनल में 5-5 से बराबरी के बाद 6-5 से जीत हासिल की। इस जीत से भारत को लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक गेम के लिए इंडिविजुअल कोटा भी मिला, जिसमें कुमकुम और ओह दोनों ने अपने अपने देशों के लिए एक एक कोटा हासिल किया। फाइनल में कुमकुम की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही। ओह ने पहला सेट 29-27 से जीतकर 2-0 की बढ़त बना ली, जबकि दूसरा सेट 29-29 पर खत्म हुआ, जिससे साउथ कोरियन खिलाड़ी 3-1 से आगे हो गई। भारतीय खिलाड़ी ने तीसरे सेट में जोरदार वापसी करते हुए लगातार 3 परफेक्ट शॉट्स के साथ 30 अंक हासिल किए और मैच 3-3 से बराबर कर दिया। ओह ने चौथा सेट अपने नाम किया। हालांकि कुमकुम ने 5वें सेट में धैर्य रखते हुए एक के बाद एक परफेक्ट शॉट्स लगाकर 30 अंक बना लिए, जिससे फाइनल शूट आउट में चला गया। इसके बाद कुमकुम ने डिसाइडर में अपना धैर्य बनाए रखा और परफेक्ट शॉट लगाकर स्वर्ण पदक हासिल किया। उधर नीरज चौहान ने पुरुषों के व्यक्तिगत रिकर्व इवेंट में धीरज बोम्मा देवरा को हराकर कांस्य पदक जीता। 5 सेट तक चले मुकाबले में नीरज ने धीरज को 6-4 से हराया। ब्रॉन्ज मेडल मैच में नीरज ने पहला सेट 29-26 के स्कोर से जीता, जबकि दूसरे सेट में 27-28 से और तीसरे सेट में 28-29 से हार का सामना करना पड़ा। धीरज इस समय 4-2 से आगे थे और उन्हें सिर्फ एक सेट जीतने की जरूरत थी, लेकिन नीरज ने चौथा सेट शानदार तरीके से खेला और 3 बार 10 का स्कोर करके स्कोर 4-4 से बढ़ा। बराबर कर दिया। धीरज ने आखिरी सेट की शुरुआत 8 के स्कोर के साथ की, जबकि नीरज ने 10 का स्कोर किया। धीरज ने सुधार करते हुए दो बार 10 का स्कोर किया और आखिरी सेट में कुल 28 पॉइंट बनाए। नीरज को ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए 19 अंकों की जरूरत थी। उन्होंने अपने आखिरी दो तीरों पर 9 और 10 का स्कोर करके कांस्य पदक अपने नाम किया। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: बेहतरीन प्रदर्शन रहा कुमकुम का हो या नीरज का, आइए सुनते हैं कुमकुम मोहत ने इस शानदार प्रदर्शन पर क्या कुछ कहा।
6: बहुत अच्छा लग रहा है कि ये मेडल जीता है मैंने आज, और जो सोचा था वही हुआ है। ये सपना था एक, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, डोंट सी द रिजल्ट, जस्ट डू योर हार्ड वर्क।
1: और अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत के 212 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान की टीम 192 रन ही बना सकी। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
7: आउट हो गए हैं और ये मैच भारत ने जीत लिया, और इसी के साथ यहाँ आ गया एक और गोल्ड मेडल। भारत ने यह मुकाबला जीत के एक और स्वर्ण पदक हासिल कर लिया है। यहाँ
8: भारतीय पुरुष टीम ने लगातार दूसरी बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। भारत की शुरुआत खास नहीं रही, वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं संजू सैमसंग सिर्फ 2 रन ही बना सके। कप्तान श्रेयस अय्यर 21 और ईशान किशन 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि अभिषेक ने एक छोर पर टिककर शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 28 गेंदों में 3 चौके और 7 छक्के की मदद से 61 रन की शानदार पारी खेली। वहीं उप कप्तान तिलक वर्मा ने बेहतरीन लय बरकरार रखते हुए नाबाद 51 रन बनाए। तिलक ने 3 चौके और 4 छक्के लगाए। उन्होंने शिवम दुबे के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 62 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की और भारतीय टीम को 200 रनों का आंकड़ा पार कराया। 212 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही। साहिबजादा 10 और उस्मान खान सिर्फ 3 रन बना सके। 39 रन के स्कोर पर 3 विकेट खोकर मुश्किल में नजर आ रही पाकिस्तानी पारी को हसन नवाज और शैम अयूब ने संभाला। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 87 रन की साझेदारी की। हसन नवाज ने 96 रन की पारी खेली। अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे ने 2-2 विकेट लिए। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: आइए सुनते हैं ईशान किशन ने पदक जीतने के बाद क्या कहा।
9: When we got here, Olympics was not there for us. We were not supposed to play in the Olympics, but now that we know that we will get an opportunity to play there, I mean, we are very excited. Any of us would want to have a medal from Olympics. Very nice. We gave our best. I think all the batters, especially Abhi and Tilak, Dubey, chipping in, Ayer by doing that partnership, everything, like everyone was doing their best, and I think the result got in our side in the end. It's a big thing. Asian Games, you are the best side in Asia, so it's a big thing for us.
1: उधर न्यू चंडीगढ़ में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 352 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक वेस्टइंडीज ने 25वें ओवर में 2 विकेट पर 173 रन बना लिए हैं। इससे पहले पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। केएल राहुल ने नाबाद 129 रन बनाए, रोहित शर्मा ने 92 और ऋतुराज गायकवाड़ ने 57 रन की पारी खेली। श्रृंखला में भारत 2-0 से आगे है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
10: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहत और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने आज 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और चार श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले चार वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
11: Real GDP grew 7.8% in quarter one of FY.
12: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा।
11: In quarter one, gross NPAs of banks are at multi-decadal low.
10: अवसंरचना विकास पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में लगभग 61% का विस्तार हुआ है और 2014 से परिचालन में आने वाले हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि पीएम मुद्रा योजना के तहत 52 करोड़ से अधिक बिना गारंटी वाले ऋण स्वीकृत किए गए हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौ पालक सम्मेलन में ये बात कही।
13: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
10: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
14: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गौशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12 करोड़ की लागत से केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम होगा। गोपालक सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भेल दशहरा मैदान में ही नए आपराधिक कानूनों पर मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
10: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर श्री अमित शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता हासिल करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों के कुल 288 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
15: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
10: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के सत्यवेदु मंडल की श्री सिटी स्थित एक निजी औद्योगिक इकाई में

0: आज बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और आवश्यक उपाय करने तथा शोक संतप्त परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायल श्रमिक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान विभिन्न विषयों पर सार्थक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि बैठक में लोगों की बेहतर सेवा करने और जन कल्याण के लिए और अधिक प्रभावी ढंग से काम करने पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं कि इस सोच को नए संसद भवन और सेंट्रल विस्टा के रूप में किस तरह साकार किया गया है।
1: सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना भारत के नई दिल्ली स्थित केंद्रीय प्रशासनिक और नागरिक क्षेत्र को नए रूप में विकसित करने की एक वृहद परियोजना है। इसके प्रमुख घटकों में नया संसद भवन, कर्तव्य पथ और एकीकृत केंद्रीय सचिवालय शामिल है। इसका उद्देश्य अत्यधिक कार्यात्मक और उद्देश्यपूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराकर प्रशासनिक दक्षता तथा कार्यकुशलता को और मजबूत करना है। केंद्र सरकार के सभी 51 मंत्रालयों को 10 एकीकृत केंद्रीय सचिवालय भवनों में एक साथ लाने से कर्मचारियों, दस्तावेजों और संसाधनों की आवाजाही सुगम होगी। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नए संसद भवन के निर्माण में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत देश के विभिन्न राज्यों से सामग्री मंगाई गई थी। नए संसद भवन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह केवल एक भवन नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है।
2: ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है।
1: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र सुधांशु रघुवंशी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि नए संसद भवन में देश की कला, संस्कृति और विविधता को दर्शाया गया है।
3: भारत की नई संसद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत उसने भारतीय संस्कृति को पुनः एकमेक करने का प्रयास किया है।
1: पर्यावरण संतुलन सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान के केंद्र में है। इन परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप हरित क्षेत्र में समग्र रूप से वृद्धि होगी। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत रूस संबंधों पर परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉ जयशंकर ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित भारत और रूस के बहुआयामी सहयोग के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति के प्रति भारत के सक्रिय समर्थन का भी उल्लेख किया। यूक्रेन ने रूस के साथ संभावित युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को अब तक मिले प्राप्त 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने कहा कि यूक्रेन ऊर्जा अवसंरचना और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार यूक्रेन संघर्ष के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए बहुत अच्छे हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दूतावास ने एमटी काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों से समन्वय किया। दुबई के युवराज हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने आज भारतीय पायलट स्मिथ के साहस की सराहना की। अस्पताल में कैप्टन से मुलाकात के दौरान उन्होंने संभावित बड़े हादसे को टालने के लिए स्मिथ की प्रशंसा की। बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों ने बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने का आश्वासन दिया है, इससे ऊर्जा की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। अमेरिका ने 50 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक और कारोबारी वीजा पर $20,000 तक की जमानत राशि तय की है। इस व्यवस्था से भारत को छूट दी गई है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल सहित दक्षिण एशिया के कई देश इसमें शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: ये आकाशवाणी है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। और अधिक जानकारी दे रहे हैं प्रशांत कुमार।
4: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती के 57 किलोग्राम पुरुष वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण और 97 किलोग्राम वर्ग में दीपक पूनिया ने कांस्य पदक जीता। अंतिम पंघाल ने महिला 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उधर गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि टीम में रजत पदक हासिल किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
0: कर्नाटक में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए एक उच्चस्तरीय केंद्रीय दल आज बेंगलुरु पहुंचा। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजीत कुमार साहू के नेतृत्व में ये दल 6 अक्टूबर तक सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा। मौसम विभाग ने कल केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, केरलम में कल तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहोद और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने आज 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी किसी स्क्रीन के रहस्य से रहित, मैं भी टाइम पास करने की बात से खड़ा हूँ।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: तुम आओ देखो बताओ, मुझसे मुखातिब होकर बोले अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरसुदार, तो बस सिर्फ दिल बहलानी वर्ष से मैं शुरू हो गया। बहुत कुछ कर लिया राम मखमल के कबीलों में, सुलाऊंगा तुम्हें पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में।

ज्योति प्रकाश दत्ता यानी जेपी दत्ता का जन्म 3 अक्टूबर 1949 को एक पंजाबी परिवार में हुआ। आपके पिता श्री ओपी दत्ता फिल्म निर्देशक और कहानीकार थे, यानी जेपी दत्ता को फिल्मी माहौल विरासत में मिला। तो ये तो शायद उनके बचपन में ही तय हो गया होगा कि उन्हें फिल्मों में ही अपना

जेपी गुप्ता को वॉर फिल्में बनाने में महारत हासिल है और इसलिए उन्हें 1998 में नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम प्रेसिडेंट फिल्म बॉर्डर के लिए सम्मानित किया गया।

रॉबर्ट फिल्म का ये गीत संदेश आते हैं, ये आज भी फौजी भाइयों के बीच ही नहीं उनके परिवारजनों और तमाम देशवासियों के बीच ये गीत बहुत लोकप्रिय है। जेपी दत्ता द्वारा बनाई गई, निर्देशित की गई वॉर फिल्में हैं बॉर्डर, LOC और बॉर्डर 2। जेपी दत्ता ने बंटवारा, यतीम और गुलामी जैसी जो फिल्में बनाई वो भी लीक से हटकर फिल्में रही हैं। जेपी दत्ता द्वारा बनाई फिल्म रेफ्यूजी, इस फिल्म से अभिषेक बच्चन और करीना कपूर ने अपना करियर शुरू किया। रिफ्यूजी में सीमा विवाद को जेपी दत्ता ने बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी फिल्म रिफ्यूजी में पिरो दिया और दर्शकों के सामने एक

Burn us around.

0: फिल्म निर्माता और निर्देशक जेपी दत्ता पर केंद्रित रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत आज के इस कार्यक्रम में आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और चार श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले चार वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
1: Real GDP grew 7.8% in quarter one of FY.
2: वित्त वर्ष 2027 के पहले तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहले तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा।
1: In quarter one, gross NPAs of banks are at multi-decadal low.
0: अवसंरचना विकास पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किया गया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में ये बात कही।
3: कानून

0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुँच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल है। सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर श्री शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब विक्र की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों को कुल 288 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। आंध्र प्रदेश के सत्यवेदु मंडल की श्रीशेटी स्थित एक निजी औद्योगिक इकाई में आज बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और उन्हें आवश्यक उपाय करने और शोक संतप्त परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत रूस संबंधों पर परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉ. जयशंकर ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित भारत और रूस के बहुआयामी सहयोग के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Vasya Williams. Finance Minister Nirmala Sitharaman today said India's economic strength and resilience have been built over the past decade through a combination of fiscal prudence, infrastructure investment, banking reforms, improved delivery mechanisms and consistent reforms. Addressing the 5th Kautilya Economic Conclave in New Delhi, Sitharaman said the government has advanced the national frameworks through GST, Insolvency and Bankruptcy Code and the 4 Labour Codes. She said India had navigated the shocks of the past 4 years with its fundamentals intact, citing 7.8% real GDP growth in the first quarter of fiscal year 2026-27. Real GDP grew 7.8% in quarter 1 of FY27. CPI inflation was about 4.82% in August 2026. And the current account deficit was 0.5% of the GDP in quarter 1. Gross NPAs of banks are at multi-decadal low and foreign exchange reserves stand about $766 billion. Union Home Minister Amit Shah has said once the Bharatiya Sanhita is fully implemented, India's criminal justice system will become the most modern in the world. He said after full implementation of the BNS, cases could be disposed of within 3 years from the registration of an FIR to the Supreme Court. Mr. Shah said this in Bhopal today. In Andhra Pradesh, 4 workers were killed and another was critically injured in a boiler explosion at a private industrial unit in Sri City of Sakivedu Mandal today. The blast occurred inside a factory in special economic zone. 2 workers died on the spot while 3 others were critically injured and shifted to a nearby hospital. 2 of the injured later succumbed to their injuries during treatment. The remaining worker is undergoing treatment in the intensive care unit. Chief Minister N. Chandrababu Naidu expressed shock over the incident. India won 5 gold, 2 silver and 2 bronze medals at the Asian Games in Japan today. In hockey, India thrashed Malaysia 5-1 to defend their men's gold, and the triumph also secured them a direct qualification for the 2028 Los Angeles Olympics. For India, captain Harmanpreet Singh netted 2 goals, while Jugraj, Hardik and Shilanil scored 1 goal each. In men's cricket, India won the gold, defeating arch rivals Pakistan by 19 runs in the T20 final at Mission. Wrestler Anand Singh Rawat claims the men's 57-kilogram gold after edging out North Korea's world champion Chung Song Han 11-7 in a fierce final. Kum Kum Rod won the individual gold medal in the women's recurve archery event. In golf, Pranavi Urs became the first Indian woman to win an Asian Games gold medal in the women's individual title. India also bagged silver at the team event. Wrestler Antim Pankaj sealed a silver medal in the women's 53-kilogram category. Deepak Punia won bronze in the men's 97-kilogram freestyle wrestling event. Archer Neeraj Chauhan got bronze in the men's individual recurve event. With these impressive performances, India climbed to 4th position in the overall medal standings. The country's medal tally has risen to 85, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze medals. Prime Minister Narendra Modi congratulated the men's cricket team on retaining their title at the Asian Games 2026. In a series of social media posts, Mr. Modi said this is indeed a joyous occasion for the nation. He also wished the team members for their future endeavours. Mr. Modi said the 2026 Asian Games have been truly special for Indian hockey. He congratulated the men's hockey team on retaining the Asian Games gold with a commanding victory in the final. The Prime Minister also congratulated Pranavi Sharath also on winning India's first ever gold in women's individual golf at the Asian Games. He congratulated Kumkum Anil Mahal on becoming the first Indian woman to win recurve individual gold at the 2026 Asian Games. The Prime Minister also congratulated Anand Singh Rawat for scripting history by winning India's first ever Asian Games gold in men's 57-kilogram freestyle wrestling event. And with that, we end this news bulletin.

तू मुस्कुरा दे तो मौसम भी बदल जाते हैं, चांद भी रात में कुछ और खुशनुमा रहता है। तेरी बातों में जो ठहराव है वो क्या कहिए, दिल को हर हाल में संभाले रहता है। तेरे होने से मुकम्मल सी लगती है दुनिया, वरना इस दिल में कहां कोई तेरे अलावा रहता है। मैंने मांगा ही नहीं और कोई ख्वाब कभी, तेरा चेहरा ही मेरी चाहत का नजारा रहता है।

अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं छाया गीत। तेरी हंसी छूती है जब मेरे ख्यालों को, दिल मेरा फूल सा खिला रहता है। तेरी आवाज का असर कुछ ऐसा है मुझ पर, दूर रहकर भी तू करीब सा रहता है। तेरी खामोशी में भी सुनता हूँ तेरी बातें, तेरा एहसास मुझ में समाया रहता है। तेरे आने की खबर भर से महक उठती है शाम मेरी, जैसे मौसम कोई खुशगवार रहता है। तेरे होने से सुकून मिलता है इस दिल को, तेरा ख्याल हर लम्हा मुझे थामे रहता है।

सिर्फ हम तो क्या तुम ऐसे हसीन अजीब हम तो क्या तुम ऐसे हसीन।

तेरी आंखों का असर किस तरह बयान करूं। एक नजर थी मगर सदियों की तलाशी मंजिल थी। तू मिला तो मुझे खुद से भी मोहब्बत होने लगी। तेरे आने से मेरे होने की मुझे वजह मिली। तेरे बिन भी तेरा एहसास मेरे साथ रहा, जैसे वीरान मकान में कोई रोशनी की खिड़की थी। हमने चाहा भी नहीं इश्क को इतना गहरा, फिर भी इस दिल में तेरी चाहत की बेकरारी थी।

जो चुपचाप मेरे सामने बैठा रहा उस खामोशी में भी एक मीठी सी शरारत थी। अब न मंजिल की तमन्ना न सफर की फिक्र रही, तेरा हाथ साथ हो हर घड़ी, दिल को बस इतनी ही चाहत थी। न कोई वादा मांगा न कोई कसम तुझसे, बस तेरे साथ की ख्वाहिश ही मेरी इबादत थी। अब जो तू साथ है तो और क्या मांगू मैं, मेरी हर धड़कन भी बस तेरी ही मोहब्बत है।

खत्म चुम या ते आँखें बिछा दूँ करूँ क्या ये मेरे समझ में ना आए बहुत

ऐसी कहानी घड़ी थी मेरी जिंदगी में पलक के नाए

0: पतंग तुम तरुण पाए समझ में बहुत शुक्रिया।
1: तेरी नजर से जो गुजरा तो ख्वाब हो गया, ये दिल भी तेरे इश्क में बेहिसाब हो गया। तेरे कदमों की आंख ने छुआ जब दिल को, सोना सोना सा मेरा घर भी गुलाब हो गया। तेरी हंसी ने मेरी शाम को सवारा यूं, जैसे वीरान फलक पर कोई आफताब हो गया। मेरे ख्याल की बारिश जो बरसी रात भर, हर एक जख्म मेरे दिल का लाजवाब हो गया। तेरे साथ जो गुजरा वो पल ठहर सा गया, वक्त जैसे कोई खूबसूरत किताब हो गया।